आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

0: BBC Radio, 24 hours a day.
1: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या?

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो
0: प्रभात आराधना, हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार।
1: नमस्कार रादाब। राशन वाले चावल की सप्लाई को लेकर कोई बदलाव नहीं लाया गया लेकिन खेपों को मुर्शस तक पहुंचाने में देरी हो रही है। कल दोपहर बाद स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने एक विज्ञप्ति जारी की और कहा कि मध्यपूर्व की जंग की वजह से समुद्री परिवहन पर असर पड़ रहे हैं। फिर भी एसटीसी ने पुष्टि की कि स्थानीय मंडी में सप्लाई के लिए काफ़ी स्टॉक है। ईंधन की कीमतों में नई बढ़ोतरी लाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विकास पर मुर्शस की नज़र है। व्यापार मंत्री माइकल सिक्यून ने पुष्टि की कि दामों के ढांचे पर दोबारा गौर करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बूढ़े कैदियों की हालत पर फिक्र कर रहा है। आयोग ने अपने न्यूज़लेटर में इसका उल्लेख किया। पिछले महीने कार्डिनल मॉरिस पियात की मांग पर एक पहली बैठक लगाई गई। सभी संबद्ध पक्ष एकत्र हुए थे। सबने मंजूरी जताई कि कदम उठाना चाहिए और इस दिशा में एक खास प्रोटोकॉल को अमल में लाया जाना चाहिए। शागो समझौते के सिलसिले में मॉरिशस और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप के नए दावे पर ओलिविए बोंकुल्ट ने नई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर समझौते में कुछ जोड़ना पड़े तो वो करेंगे। शागोस रेफ्यूजीज ग्रुप के अध्यक्ष के मुताबिक एक ऐसा हल तलाशने की ज़रूरत है जिससे सभी पक्ष सहमत हो और किसी का नुकसान ना हो। विदेश में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के सरकारी दौरे पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रीय सलामी से उनका स्वागत किया। चीनी राष्ट्रपति की ये 3 दिवसीय यात्रा है जिसके दौरान व्यापार समझौते को जनवरी 2027 तक बढ़ाया जाएगा जो इस साल के नवंबर महीने में ख़त्म होने वाला था। टैक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईरान के साथ जंग वगैरह पर भी बातचीत होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद उत्तर और सेंट्रल प्लेटू में बादल घिर आएंगे और रह रहकर बारिश हो सकती है। दूसरे इलाकों में मौसम साजगार रहेगा। आज रात के दौरान आसमान साफ रहेगा और मौसम अच्छा रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की सलाह है, खासतौर पर दक्षिण वाली लगूनों में। तापमान, सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 14 से 17, अधिकतम 23 से 26, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और तापमान सामान्य से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आज शाम 6:06 पर सूरज ढल जाएगा।
2: You're listening to RM3 Radio, Mano.

बहजत उल असरार में एक शख्स का वाकया बयान किया गया है जिसे मिर्गी का मर्ज था। रिवायत के मुताबिक हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसके कान में ये कहा जाए कि गौसे आज़म का हुक्म है कि बगदाद से निकल जा। रिवायत के मुताबिक जब ये बात मरीज़ के कान में कही गई तो वह उसी वक्त ठीक हो गया। इस हिकायत को हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामत के तौर पर नकल किया गया है।

मुहतरम सामीन, इन हिकायात से हमें सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि मुश्किल हालात में इंसान को अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करना चाहिए। हज़रत वासे पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी इबादत, इल्म, तक्वा, तौबा और लोगों की इस्लाह से भरपूर थी। हमें भी मुसीबत के वक्त घबराने के बजाय अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना चाहिए। साथ ही जुल्म, डाका, हराम माल और दूसरों के हुकूक तल्फ करने से मुकम्मल इज्तनाब करना चाहिए। औलिया कराम की मोहब्बत हमें नेकी, आजजी और अल्लाह ताला की इताअत की तरफ ले जाए तो यही इस मोहब्बत का हकीकी फ़ायदा है। मोहतरम सामीन, सबाल खैरन करीब ख़त्म होने वाला है। आइए आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। इसी के साथ सबाल खैर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: 94.6 98.2 megahertz Orange Free.
1: Sakar Beats.
2: Sakar Beats.

0: 91 and only station.
1: RM3 Manoranjan Radio.
2: Amari Sathi. आप हमारी साथ है एंड प्रफुल्ल दवेना स्वर्मा मुकायलू हतु आ गीत रामवाणी एल्बम माथी लेवामां आवेलू एंड विद दिस रा रेडियो मनोरंजन पर दर रोज चाले छे आपणो गुजराती गीतोनो कार्यक्रम आवो हमारी साथ है ज्यां अमे तमारा माटे भक्तिनी साथे लईने साथो साथ तमारा माटे फिल्मी गीतो पण वगाड़ीए छे सो चालो आगळ वधी रह्या छीए आपणे पण अने आ नवा अंदाजमां गायेलू गीत पेला अढी अक्षर फिल्म माथी लेवामां आवेलू जेमां स्वर छे खानन मोहननो

अब हमारे साथ है 10:34 बिल्कुल 34 10:34 एंड विथ दिस कहवाय छे ने के लोको कहे छे समय बधु भूलावी दे छे पण समय कोई ने भूलावतो नथी फक्त ए व्यक्ति वगर जीवता शिखवी दे छे यादो आजे पण आवे छे फरक फक्त एटलो ज पड़े छे के पहला आंसू आवी जता हता हवे फक्त आँखों शांत थई जाय छे कारण के समय यादो ने नथी मिटावतो समय तो मिटावे छे बस ये दर्द ने थोड़ू ओछू करी दे छे ये तो बस दुख साथे जीववानी आपने आदत पाड़ी दे छे coming up with the next track mom तने नहीं समझाए मर्षि पंड्या एंड सचिन जिगर ना संगीत निर्देशन में मुकायलू आ गया

दिन भर के लिए हमने निर्णय लिए कि आज हम ऐसा काम पूरा करेंगे, इस योजना को पूरा करेंगे, पर इन सब योजनाओं से पहले भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, गाड़ी भी हम निकालते हैं तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, मैं घर से निकल रहा हूँ, मेरी यात्रा सुखमय हो, मेरी यात्रा में कोई अड़चन ना आए, तो उससे शक्ति प्राप्त करते हैं। सुबह उठते ही हम हाथ जोड़ते हैं कि धन्यवाद प्रभु, आज का दिन हमें मयस्सर हुआ। यह दिन हमने देखा कितने लोग बिस्तर से उठे ही ना होंगे, कितनों की शव यात्रा जा रही होगी, तो प्रभु की कृपा हर समय चाहिए। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, हम मंत्र पाठ भी इसीलिए करते हैं कि हमारे भीतर वे मंत्र एक शक्ति देते हैं, और हमेशा अपने बच्चों को हम कहते हैं कि जब भी मंत्र पाठ करें उच्चारण सही करें, क्योंकि एक ही शब्द के दो दो अर्थ हो सकते हैं। एक शब्द में मात्रा इधर उधर हो जाए, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो इसीलिए गायत्री मंत्र हम सब जानते हैं और उसका पाठ भी करते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि हम जब प्रभु की महिमा का गान करें, उनका आवाहन करें, उनका धन्यवाद करें, तो मंत्र हमारे सही उच्चरित होने चाहिए। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, तीन तत्व पूरी सृष्टि में हैं और मंत्र भी हमें ये बताता है कि यह जो तीन तत्व हैं, रजस, तमस और सत्व, इसमें जो सत्व है वह सबसे अधिक आध्यात्मिक सत्व है और वह हमें शक्ति देता है भक्ति की। तो जब हम अपनी साधना को सात्विक करने लगते हैं तो धीरे धीरे जो वासनाएं, कामनाएं हैं जिन्हें हम तामसिक और राजसिक कहते हैं, वह दूर होने लग जाती हैं और जो उस प्रभु की भक्ति में डूबने लगता है उसके भीतर वह प्रभु उतरने लगते हैं और जब प्रभु उतरने लगते हैं तो संसार के आकर्षण कम होने लगते हैं। आइए सुनते हैं इस भजन को। रंग

शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है शाम रंग से कि शाम रंग में पिया मोरी रंग दे चुनरिया।

श्रोताओं, कुरुक्षेत्र का महासंग्राम हुआ और आज भी हम कहते हैं कि केवल कुरुक्षेत्र में ही महासंग्राम नहीं हुआ, हमारे मन में भी एक कुरुक्षेत्र है और आत्मा रूपी कृष्ण है जो हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन ये जो इंद्रियों की घोड़े हैं ये हमें बहुत भटकाते हैं। तो यदि हम इन अपनी इंद्रियों, पांच ज्ञान इंद्रियाँ, पांच कर्म इंद्रियाँ और फिर उसके बाद मन ग्यारहवां, यदि हम इनको नियंत्रण में रख लें तो दुनिया को जीत सकते हैं। पर इनको नियंत्रण में कैसे रखेंगे? बिना भक्ति के संभव नहीं है, क्योंकि भक्ति का मार्ग इच्छाओं का मार्ग नहीं है। भक्ति का मार्ग त्याग का मार्ग है, साधना का मार्ग है, संयम का मार्ग है। देखिए, जब हम व्रत रखते हैं, चाहे कोई हमारे सामने कुछ भी खाना ले आए, हम नहीं खाते हैं। हम स्पष्ट कहते हैं कि देखो, आज मेरा व्रत है। तो ये शक्ति किसने दी? अन्यथा कुछ भी स्वादिष्ट देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, पर व्रत की शक्ति देखिए, लोग उस समय कहते हैं कि नहीं। इसी तरह से लोग पैदल चलते हैं, पद यात्रा करते हैं, कितना थकते हैं, पाँव में छाले आ जाते हैं, उसके बावजूद भी मन बहुत आनंदित होता है। तो श्रोताओं, भक्ति की शक्ति केवल शरीर में ही नहीं, मन में भी देती है, और भक्ति की शक्ति इंद्रियों को भी काबू करती है। तो क्यों ना हम इस भक्ति के मार्ग पर चलें, प्रभु नाम का जाप करें और शुभ कर्मों की ओर बढ़ें। तो चलिए श्रोताओं, इस भजन के साथ अलका धनपत और यज को अनुमति दीजिए। आप सभी के लिए आज का दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: टाइम चेक दोपहर के 12 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने आज एक प्रेस सम्मेलन बुलाया। मंगल को एक कैब दफ्तर में उत्पन्न घटना का उन्होंने झूठ करार दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव क्षेत्र नंबर 6 में मंगल के दिन वो अपने मतदाताओं से भेंट नहीं करते। उन्होंने कहा कि गए मंगल को वे अपने दफ्तर में एक समझौता तय कर रहे थे। भारतीय उच्चायोग ने आयुर्वेद दिवस के संदर्भ में इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र फिनिक्स में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस साल का विषय आयुर्वेद फॉर ए हेल्थियर टुमारो, वन हेल्थ वन फ्यूचर रखा गया। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर कुकुल ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बूढ़े कैदियों की हालत पर फिक्र कर रहा है। आयोग ने अपने न्यूज़लेटर में इसका उल्लेख किया। पिछले महीने कार्डिनल मोगिस पियात ने की मांग पर एक पहली बैठक लगाई गई। सभी संबद्ध पक्ष एकत्र हुए थे। सबने मंजूरी जताई कि कदम उठाना चाहिए और इस दिशा में एक खास प्रोटोकॉल को अमल में लाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज से यूएफए नेशंस लीग का 5वां संस्करण शुरू होगा। आज मैच खेला जाएगा, 8 मैच होंगे। आज रात 10:45 बजे से फुटबॉल का पहला मैच होगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एयर स्पेस को करीब 45 मिनटों के लिए बंद किया गया। उड़ानों में देरी हुई, वजह रनवे पर एक ड्रोन नजर आया। सुरक्षा के तौर पर फौरन हवाई गतिविधियों को रोक दिया गया। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: On NBC Play and NBC.MU. RM3 Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है और 12:06 गुड आफ्टरनून नमस्कार रेडियो मनोरंजन आर एन 3 पर स्वागत है आप सबों का जहाँ से भी आप साथ दे रहे हैं विनीता का साथ है आपके अपने रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम है सुहाना सफर
2: You're listening RM Free Radio.

0: फौजी कस्में वादों से परे हम निकल आए हैं एक ऐसे मोड़ पर जहां पर बस हमें अगर प्यार की जरूरत पड़े तो हमारे जो लिसनर्स हैं आ जाते हैं साथ देने आपके अपने
1: सुहाना सफर
0: जी हाँ ये है सुहाना सफर जिसमें हम आपका स्वागत करते हैं अगला गाना जो होगा हम कविता अनु के नाम साथ में धान के नाम डैनी रोजा हमारे साथ हैं शर्मिला बुदन नमस्कार स्वागत है रेशमा रामतुला ओके नमस्कार जी हाय प्रेमा हाउ आर यू रविंद्र कमित आपका स्वागत करते हैं एंड यहाँ पर हमारे साथ हैं प्रीति विलाशा और सिया जो कि इस समय CW में काम कर रहे हैं उनके लिए हम गाना डेडिकेट करेंगे तो बाकी जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जो कि टिकटॉक पे हमें फॉलो करते हैं मैं आपको बता दूं कि हमारा टिकटॉक लाइव है आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं और खूबसूरत गीतों की इस लिस्ट में अभी नेक्स्ट गाना जो होगा लीना के नाम डेडिकेट करते हैं जो अभी अभी हमें ज्वाइन किया है मुस्ता खान कैसे हो जी आपका भी हम वेलकम करते हैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और इसी के साथ अभी चलिए जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनका स्वागत है जहाँ से भी साथ

दे रहे हैं सिर्फ मॉरिशस से नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से निकलकर यहाँ पर हमारे इस शो में बहुत सारे लोग शामिल होने को आते हैं तो एक बार फिर थैंक यू और चलिए यहाँ पर गाना जो है हम मालिनी के नाम डेडिकेट करते हैं और आपके पूरे फैमिली के नाम

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

सुहाना सफर, सुहाना सफर। चलिए जी, सुहाना सफर में यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्लीमा, संजय बुधवानी, शाह विहाव, उषा नीना, जो रोशन सिगाओ के लिए गाना मांग रहे हैं, मिस्टर नूरुद्दीन, स्वराज बागन, पराशर विहाव, नजीमा गोबर्धन, लता, पूजा, उनके हस्बैंड दिनेश हरादन के लिए गाना मांग रही हैं, संगीता सुघारी, जो कि 22 को उनका बर्थडे था, 22 को, तो उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और साथ में ये गाना होगा। पर साधना, निवेदी, विनीता दनु, संजीव, जो किस समय हमें सुन रहे हैं, तो साथ में उनकी वाइफ संध्या, उनके बेटे सिद्धार्थ के लिए भी गाना होगा। एंड डेडिकेटिंग दिस वन फॉर अविनाश, माधुरी, और साथ में है विनय कतवारू, ललिता, सरिता, एंड यहाँ पर हमारे साथ हैं जयेश। ओके जयेश, ओके, तो नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए, सभी फैमिली के लिए जो इस समय मॉरिशस में है। अशोक, नमस्कार, गुड आफ्टरनून आपको। संगीता सुखारी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंटीओ, कैसे हैं आप? दीपक सिंह, स्वागत आपका। नेहा, आपका हम वेलकम करते हैं, और साथ में यहाँ पर आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। एंड महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना अशोक की तरह उनके सभी कलीग्स के लिए, और हमारे एक मैसेज भी आए हैं। हेलो मासी, क्या बात है जी, बच्चा जी, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। शैला सिधारी, आपका भी स्वागत है। दुर्गा, तस्लीमा, वनुष्का गदौरी, और साथ में है यहाँ पर गायत्री, गायत्री, कविता परबुशिया, आपके नाम भी, और साथ में ये गाना जाएगा स्विट्स, आपके नाम, सरिता थापा, नमस्कार, वेलकम, स्वागत आपका। शैला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमारे साथ हैं सनी लाहौर से, क्या बात है, बहुत बहुत थैंक यू। किरणपुरी का हम वेलकम कहते हैं, और साथ में ये गाना जो है प्यारा सा डेडिकेट करते हैं सभी के लिए जो इस समय हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं। प्यारा सा मौसम है तो गाना भी तो प्यारा होना चाहिए। ये गाना हम देवी सीताराम के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। विशाल किनु, स्वागत आपका। देविका सोब्रन, हेलो, सलोनी गया दिन, आपका हम वेलकम करते हैं। सन, आपका भी, और पवन, आपका भी वेलकम करते हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा मनीता जी के लिए, कहते हैं सब मंगल, अजी आप हैं तो सब मंगल ही होगा, क्यों नहीं।

0: सफर
1: एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका दुनिया के किसी भी कोने में आप हमें सुन रहे हैं कहीं से भी आप हमें सुन रहे हैं याद रखिए हमारा टिकटॉक जो है रेडियो मनोरंजन का लाइव है RM3 और अगर आप मैसेज करना चाहते हैं 5250620 पे कर सकते हैं बाकी यहां पर नम्रता को अभी हेलो शाहिद इकबाल खान जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वी हैव प्रिया दिनेश गोपी तरुण राम कैसे हो जी सब बढ़िया We have Anushka and Kevin, Yudhish Pulchan, hi. उन्होंने बोला greetings. तो thank you. स्वागत है आपका. निजाम की तरफ से उनकी वाइफ सबीना के लिए एंड वी हैव अवर डियर फ्रेंड रायन जो कि साथ दे रहे हैं हेलो माय डियर चलो जी देविका सुब्रन यहाँ पर साथ दे रही हैं राजेश जूतन हमारे साथ हैं अब्दुल रेशाद को कहेंगे वेलकम एंड जहरीफ हमारे साथ हैं उनका भी हम वेलकम करेंगे एंड नील है मेरे ख्याल से हाय रोशन कहते हैं कि इट्स माय डॉटर्स बर्थडे 18 इयर्स के हो गए हैं अगला गाना उनके नाम एंड शवीना हाय थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी शारदा मुचुराम आपका स्वागत है नमस्ते राजा नवीद कैसे हो आप तो चलिए

ये उनके लिए गाना, और साथ ही में यहाँ पर श्यामा महरानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बंजू ने आपको भी, एंड किरण पुरी कहते हैं हेलो टू ऑल लिसनर्स, वैसे वो कनाडा से हमें सुन रही हैं, थैंक यू। एंड यहाँ पर हमारा अगला गाना कविता अभिलेख के नाम होगा, जी बिल्कुल क्यों नहीं, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। एंड अनामिका जी नमस्कार फ्रॉम पेरिस, हेलो जी नमस्कार फ्रॉम मॉरिशस, देविका कालीचन कैसे हो जी, गुड आफ्टरनून आपको, करुणा राम क्या बात है, रीना शारदा साथ में यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साधना कितारत फ्रॉम यूके, साधना फ्रॉम यूके, हाय साधना जी कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन हमारा, बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर आ गए साहिल, अंजू, राजेश और याशिर हुसैन हमारे साथ, मनवी एंड नीली जयश्री हमारे साथ हैं, वॉचिंग फ्रॉम आयरलैंड, हाय गाइस हाउ आर यू, और चक्रू रेशमा को कहेंगे नमस्कार, अब्रार फ्रॉम लाहौर क्या बात है। ऐसा करते हैं गाना चलाते हैं आपके लिए, ये वाला निशा कौतिक भी हमारे साथ हैं, और साथ में हमारी उमा जुड़ी हुई हैं, और साथ में यहाँ पर जो लोग RM3 रेडियो सुन रहे हैं उनको बिग हेलो, हेलो नंद कैसे हो, बस हमारे गीतों का आनंद लेते चलिए, मुस्कुराते चलिए।

बात का जवाब हाथ से, बात का जवाब बात से, गीत का जवाब गीत से, और गीत का जवाब गीत से।

0: एक ढूंढो मिलते हैं हजारों, लेकिन यहाँ पर तो हजारों के हमारे दोस्त हैं जो समय टिकटॉक पे हमारे लाइव हैं।
1: सुहाना सफर।
0: और जैसे मैंने कहा था कि दुनिया के कोने कोने से निकलकर यहाँ पर हमारे शो में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, टिकटॉक लाइव होता है हमारा। तो नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं फॉर अपाडू फैमिली ऑफ वोश्नुओ। नेक्स्ट गाना जाएगा हॉलैंड से, हमें देख रहे हैं संतोष, नमस्कार, वेलकम, स्वागत आपका। और यहीं पे गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे सविता के लिए। नमस्ते सविता, कैसी हो आप? सब बढ़िया, सब ठीक, चलो नींद, स्वागत है। एंड यहाँ पर अशोक तिलक हमारे साथ हैं फ्रॉम वाक्वा, थैंक यू फॉर लविंग द सिलेक्शन। इंद्र नारायण हमारे साथ हैं, थैंक यू, लगता है इस गाने पे काफ़ी ठुमके लगा दिए आपने। हाँ, आई कैन फील इट। चलो जी, नेक्स्ट गाना होगा हेम के लिए और वहीं पे गाना होगा आपके लिए। और कहते हैं बहुत दिनों के बाद ये गाना सुन रही हूँ, बहुत मज़ा आया, थैंक यू जी, थैंक यू। यहाँ पर नेक्स्ट गाना होगा निज़ाम के लिए, वैसे आपने इनके लिए, इन्होंने आपके लिए गाना मांगा है, तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट गाना जो है हम डेडिकेट करते हैं नील जिश्री के नाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और यहाँ पर नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए, एंड मुझे नहीं पता यहाँ पर बस मैसेजेस ही मैसेजेस हैं, नाम तो किसी ने लिखा नहीं है। सरिता थापा, कैसी हैं आप? रेनियन आइलैंड से रेशमा हमें सुन रही हैं और उनके पूरी फैमिली के लिए। और साथ में ये गाना हम नीता के नाम डेडिकेट करेंगे। और साथ में ये गाना जाएगा राम प्रसाद फैमिली के लिए ऑफ लावोंचो, ये हैं सुनीता जी की तरफ से। गाना होगा आपके लिए रोशनी, आप चलिए आ ही गए तो आप थोड़ी रोशनी इधर फैला दीजिए। साहिल के लिए गाना डेडिकेट करते हैं और साथ में ये गाना कोई तुमसा कहा, ओके चलो थैंक यू सो मच। किरण मंगल आपका, मंगली आपका स्वागत करते हैं। नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर अदिति आयुष एंड हबी पिंकू। आपके हबी का नाम पिंकू है या आप उसको छेड़ते हो? देखा, अभी उनका नाम लेके मुझे उनको छेड़ रही है। अब वो तो सुनेंगे तो बोलेंगे मैंने ही बोला है, लेकिन आपने उनका नाम बिगाड़ा, मैंने नहीं बिगाड़ा। चलो गाना चलाते हैं आपके लिए, एंड ये हैं हेम, वैसे कोटेज से हैं। और माधुरी कहती है हमारे लिए कुछ नहीं, अरे आपके लिए तो ये देखिए ब्यूटीफुल सा गाना। रफी साहब की आवाज में, फिल्म का नाम है सूरज।

0: گستاخی ماں گستاخی ماں
1: RM Free Radio Radio Radio
2: चलिए इसी के साथ रोहित हेमा उनकी मॉम जिनका बर्थडे था उनको हैप्पी बर्थडे जीवासन पेरुमल अनुशानन को संजू केट और एजे का वेलकम करते हुए प्रेमा कायतु को कहेंगे नमस्कार स्वागत है आपका एंड ये

0: खाना सफर खाना सफर।
1: चलिए जी, गुड आफ्टरनून एंड एक बार फिर स्वागत करते हैं और सुहाना सफर में हमारे जो हम सफर उनके लिए भी। चलिए याद करते हैं अभी हम किरण पुरी जी को, और साथ में उन्होंने कहा है कि प्लीज़ आप हमारे पंजाब इंडिया से मिस्टर एंड मिसेज सुशील विज जो कि जलंधर पंजाब इंडिया से हैं उनका स्वागत कर दीजिए। तो हम उनका भी वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। अजी जिलाल, नरेंद्र कुमार, निंदी, काला राम, कारीगर, वैंकूवर कनाडा से सभी दे रहे हैं हमारा साथ। थैंक यू सो मच। मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि दुनिया के कोने कोने से इतने सारे लोग आते हैं हमारे प्रोग्राम में। और साथ में यहाँ रोहित के लिए गाना होगा, वैसे सीता सताना और वानी वेलन के लिए गाना होगा। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के लिए जो 13 साल के हो जाएंगे कल, एंड अभी वो रिवर जोखोपा के यूनिवर्सल कॉलेज में है, अभी तो सुनने रहोगे मुझे क्योंकि अभी तो बच्चा कॉलेज में होगा ना। चलिए तो उनको हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से अतवाल महेंद्र।

कौर के लिए श्यामा डेविड सुशीला सब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी उन सबका हम वेलकम करते हैं। रोशनी थैंक यू, आप बस प्यार की रोशनी ऐसी जलाते रहिए और हम आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर सत्यव्रत महावीर हमारे साथ हैं, विजेश संध्या नमस्कार आपको, अनुषा ननकू जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ पर कविता और बिलक जी, हम आपको यही कहेंगे कि भाई ज़िंदगी में जो है ना कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर ना चाहते हुए भी हमें कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, तो अगर मन से सोचें और दिमाग से सोचें तो कभी कभी दिल जो है धोखा दे देता है, इसलिए कभी दिल और दिमाग के साथ साथ कभी कभी दिमाग यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। सो लाइफ में आप कभी भी कोई भी फैसला करो, मेक श्योर कि दिमाग का यूज़ आप 50% ज़रूर करें, क्योंकि दिल जो वो 100% हावी हो जाता है। एंजॉय दिस वन, 12:50, आशा भोसले, किशोर कुमार और फिल्म का नाम है यादों की बारात।

0: सफर।
1: भाई यहाँ पर हमारे मैसेज पे बहुत सारे लव यू टू भी आ रहा है, तो हम तो बोलेंगे लव यू टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जहाँ तक आपकी गिनती जाती है वहाँ तक आपको लव यू, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। विमला पाडू हमारे साथ है, वी हैव प्रिंस, वी हैव लंबिनी एंड वी हैव वीना गंगाधर, साथ में यहाँ पर हमारे जुड़े हुए आशीष कुमार, राधे राधे आपको, रोशन वनक्कम एंड चलिए बबीता जी नमस्कारम आपको, और रजूल के लिए गाना मांगा जा रहा है और वहीं पे गाना होगा नेहा के लिए, और साथ में ये गाना होगा शोभा जी के लिए फॉर मनोज जो कि ऑनलाइन से साथ दे रहे हैं हमारे, उमेश जयपोल सत्यव्रत की तरफ से आशीष के लिए, एंड गाना होगा लैला मधारन, जेवीना, विमला, मिस्टर विक्की, दीपक, आराध्या, चांदनी हरिराम के नाम जो कि दे रहे हैं हमारा साथ। तो अगले गाने के साथ हम अब बढ़ने जा रहे हैं, कहाँ हम बढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली, समाचारों की ओर जो कि आप सुनेंगे 1 बजे।

0: सफर।
1: तो दोस्तों जैसा हमने आपको बताया कि थोड़ी देर में हम बढ़ने जा रहे हैं समाचारों की ओर, तो ऐसा करते हैं पहले समाचार सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है आपके अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर।

0: West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहा है

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार रजनी से। रजनी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। दुनिया में जहां बहुत से देश लोकतंत्र की दृष्टि से पिछड़ रहे हैं, वहीं मॉरिशस आगे। गैर अंतर सरकारी संगठन इंटरनेशनल आइडिया ने इस साल की अपनी रिपोर्ट में ये बात कही, हमारे देश को कुछ बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त हुए, अतः आम रैंकिंग नहीं बल्कि श्रेणी के अंतर्गत रैंकिंग। कुल 4 है, 172 देशों को लेकर जांच की गई। मॉरिशस अभी भी टॉप 50 में शामिल। क्या मॉरिशन संविधान भाषाई भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षित करता है? जवाब है नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से कल प्रकाशित एक पोजीशन पेपर में इस बात पर जोर दिया गया है। इसमें सुधार लाने की मांग सरिता बुजेती ने सच्चे व्यक्ति की राष्ट्रीय इच्छा व्यक्त की कि राष्ट्रीय सभा में पूर्वी भाषाओं का इस्तेमाल हो सके। आयोग का नेतृत्व सत्यजीत पुले कर रहे हैं और उन्होंने अभी चल रही बहसों के लिए स्पष्ट ढांचे की बात कही। राशन चावल की सप्लाई को लेकर कोई बदलाव नहीं है, लेकिन मॉरिशस में जो खेप आने वाली है ये ज़्यादा समय ले रही है, ज़्यादा देरी से ये पहुंच रही है, इसीलिए ऐसी स्थिति बनी हुई है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की ओर से जारी विज्ञप्ति में ये बात कही गई है कि मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव के परिणामों के चलते ऐसी स्थिति बन आई है कि स्थानीय मंडी में इसकी कमी महसूस की जा रही है। विदेशी समाचारों में यूरोपियन मेडिटेरियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर ने बताया कि आज पूर्वी तुर्की इलाके में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गतिविधियों पर नजर रखने वाली इस एजेंसी ने बताया कि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर लगभग 6.2 मील थी। इतनी कम गहराई का मतलब है कि सतह पर झटके ज्यादा तेज महसूस होते हैं, जबकि उतनी ही तीव्रता वाले गहरे भूकंप में झटके कम तेज होते हैं। तुर्की में लोग घबराए दिखे। रुख उड़ीसा। उड़ीसा के मलकानगिरी में चक्रवात अर्नब ने तबाही मचाई है। लगातार बारिश से उड़ीसा का मलकानगिरी जिला पानी में डूब चुका। बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, कुछ जगहों पर पुलों को भी नुकसान पहुंचा, जिससे कि क्षेत्रों का आपसी संपर्क टूट गया। जानकारी के अनुसार मलकानगिरी में लगातार भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। ओल्ड स्कूल लेन कौंजामल में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री गोइंसामी संजीवी जो राजन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे उनके बेटे श्री आजागैन संजीवी के घर ओल्ड स्कूल लेन कौंजामल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंजामल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 3:30 PM। रुथ रॉयल नोवेल दी कुवैत में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती नलिनी पसन पैदाशी नाम ननू जो नालिनी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके पति श्री आनंद पसन के घर रुथ रॉयल नोवेल दी कुवैत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिपाई की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 2 PM। शांतिनगर रोड बेलमाव में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सावित्री प्रभु पैदाशी नाम सुंतु जो मानती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके पति श्री कृष्ण प्रभु के घर शांतिनगर रोड बेलमाव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कथकोको की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
2: Your news on MBC Play and MBC.MU. RM3 Radio.

0: ना सफर सुहाना सफर
1: चलिए जिंदगी एक बजकर दस मिनट हुए हैं और आप सुन रहे हैं सुहाना सफर रेडियो मनोरंजन आर एम थ्री पर। जितने भी हमारे दोस्त हैं एक बार फिर थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजा है तो थोड़ी देर में वो मैसेज हम पढ़ते हैं। अभी फिलहाल के लिए खूबसूरत गीतों का सफर जारी है तीसरी मंजिल फिल्म के इस गाने के साथ।
2: You're listening to RM3 Radio Man.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: तो चलिए यहाँ पर गीतों का सफर जारी रखते हैं। नेक्स्ट गाना हम सुल्ताना खान के नाम डेडिकेट करेंगे। मिलानी देवी, वानिसा, रोशन, नवीन कुमार, उनकी वाइफ सुनीता के लिए गाना मांग रहे हैं। फसवाई फैमिली, बेबो एंड वी हैव वेदना फ्रॉम कैटरबोन, प्रीति दुखितराम, देविका, रेखा, समारा, सारामा, ओके, अक्षय, रेशमा, मधुबाला, रोशन, सुबी कल और साथ में है देव कुमार कालीचंद। हमारे साथ प्रिया भी जुड़े हुए हैं और विमी को कहेंगे हेलो, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड कभी कभी होता है ना, खूबसूरत पुराने गाने यादें ले आते हैं, तो ऐसे यादों के साथ जुड़ा हुआ है हमारा और आपका साथ। विश्वानी, आपका भी हम स्वागत करते हैं और देविका, आपका भी। चलिए तो यहाँ पर विजया, ओके, जय के नाम गाना हम डेडिकेट करते हैं एंड यही गाना हम नासिम के नाम डेडिकेट करते हैं। यहाँ पर हम सोनी बाई दुखी को कहेंगे थैंक यू सो मच साथ देने के लिए और जय श्री त्रिलोकी, आपके लिए भी गाना डेडिकेट करते हैं। वैसे तो यहाँ पर हमारे साथ शहनाज कनोवा भी हैं, तो सलीमा के लिए भी एंड लीज़ा के लिए भी, केशवराज, गणेश, उनके लिए भी यहाँ पर गाना होगा आपके लिए। वैसे तो हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं। रेशमा, मधु हमारे साथ हैं एंड मीरा फ्रॉम लंदन, हाय मीरा, हाउ आर यू। तो लंदन में भी

0: यहाँ पर हमें सुना जा रहा है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर गाना जो है डेडिकेट करते हैं मिस्टर मिसेज सुशील विज के लिए, बहुत सारा प्यार भेजने के लिए थैंक यू अविनाश की तरफ से। यहाँ पर गाना डेडिकेट करते हैं आपके लिए, लिस्ट बहुत लंबी है मेरे ख्याल से, बहुत ढूंढना पड़ेगा। बबीता बंधु नमस्ते आपको, और शैवी थैंक यू सो मच। यहाँ पर गाना जो है हम डेडिकेट कर रहे हैं दिवेश बिकिया के नाम, जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सेंडिंग यू सो मच लव। एंड वी हैव शील प्रभा गोतिया जो गाना एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ, और अरविंद कैसे हो भाई, स्वागत है आपका।
1: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio. Disco. RM Free Radio. Radio. Radio. RM Free Radio. Radio. Radio.

0: शारण प्रभाकर की आवाज में अरमान फिल्म का ये ब्यूटीफुल सा गाना कैसा लगा आपको?
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पूजा हैं, कहती हैं कि नेक्स्ट गाना उनके नाम डेडिकेट कर लूं, और यही गाना हम नीला रघु के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं काफ़ी सारे लोग, जैसे नीलू जुड़े हुए हैं, रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमबी कैसे हो आप, देविका जी थैंक यू सो मच। और यहीं पे गाना होगा आपके लिए, यहाँ पर नाम तो आपने लिखा नहीं लेकिन प्यार भेजा है, सो इसके लिए थैंक यू। एंड यहीं पे गाना जो होगा डेडिकेट करेंगे हम आपके लिए, नाम यहाँ पर भी नहीं लिखा है, किसी ने भी नाम नहीं लिखा है, क्या बात है, इतने सारे मैसेजेस, सिर्फ हेलो हाय और इंदिरा जी, चलो आपका नाम आ गया। विश्वानी जी बोबासन से हैं, गाना उनके लिए होगा और उनके फैमिली के लिए। कुसुम शिवलाल नमस्कार, स्वागत है। ये वेशना, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम ये वेशना, थैंक यू सो मच। बुझावना नौशाद प्रसाद और शनीशा फ्रॉम एम्स्टरडम, ओ वाव। सुनीता रिया बुधन और तस्लीमा के लिए, वहीं पर रिया बुधन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो उनको कहेंगे वेलकम। यहाँ गाना होगा फॉर मॉम उमिला साकुन। और आकाश हैं फ्रॉम माल्टा, हाय आकाश, हाउ आर यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। एंड महेन सीतल सिनेवासन, ओके सिवासन, वी हैव रोहन रामबन, उनकी मॉम करिश्मा और पापा रॉय, रोशनी उनके

0: हस्बैंड सूरज के लिए गाना होगा वे हैव संगीता कमलेश फ्रॉम कैथरबोन बबीता अनिशा राम तोहल उनके हबी जगदीश का बर्थडे है उनके लिए गाना मांग रहे हैं वहीं पे लंदन से है समांता एन आर्यन लक्ष्मी विशाल संध्या सबका करते हैं स्वागत
1: RM3 Radio.

चलिए तो युद्ध फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग हम संगीता शिवदत्त के नाम डेडिकेट करते हैं. साथ में परी भी आ गई है, मैं ज्वाइन किया. प्रसाद जी हमारे साथ हैं, वो हैं फ्रॉम न्यूजीलैंड.

हेलो जी, कैसे हो जगदीप सिंह? आपके लिए भी गाना होगा अंजू के लिए, जो हम गाना है डेडिकेट करते हैं विहाव वास्तव सुनील सौदागर आकाश उनके मॉम सुबिता के लिए गाना मांग रहे हैं ना। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर सबका वेलकम करते हुए मनीष बुधन जो इससे मैं पोस्ट ऑफिस में काम करूँ उनकी वाइफ रिया की तरफ से, और अंजू माधवी जितेंद सबका स्वागत करते हैं हम चंदा की तरफ से उनके फ्रेंड केविन के लिए, विक्रम दर्शन उनकी वाइफ निशी के नाम, और बस आकाश की तरफ से उनकी मॉम सुबिता के नाम।

0: चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना रंभा जय वीन निकिता साथ में किरण जीतन तुकु के नाम डेडिकेट करते हैं और वीना गंगाधर देवीना और इंदिरा के नाम
1: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर।
1: सनम तुम जहां मेरा दिल वहां। उम्मीद करती हूं कि मैंने कोई मिस तो नहीं किया। रंभा जयविन निकिता किरण नजीतन तुकु वीना गंगाधर देवीना इंदिरा विमला संदीप सिंह साउथ अफ्रीका से सुन रहे हैं। तंजी रो वेहाब सलीम गुलाब और नंदा बालुआ को भी कहेंगे हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। आज उनका बर्थडे है। एन दिव्या का स्वागत करते हैं, वहीं पर जैद हमारे साथ है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे दिव्या वैसे कहती है गाना मेरे खड़ूस के नाम चला दो, और माधुरी कहते हैं कि बस अच्छा लगता है जब आप कहते हैं माधुरी आ गई एक दो तीन करते हुए, लेकिन आप एक दो तीन नहीं करते, आप एक दो तीन चार करती हैं। चलो बहुत सारा प्यार है आपके लिए। एंड यहीं पे गाना होगा फॉर एन, उनके दोनों बेटों के नाम, ना बेटे का नाम लिखा ना खुद का नाम लिखा, कोई बात नहीं। अगला गाना हो जाए आपके लिए, तो यहाँ पर भी एंजल ने गाना मांगा है, हैंसले हेलो वेलकम स्वागत। और साथ में यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा, कहते हैं कोई भी गाना फॉर माई लवली पार्टनर, ये है जैद की तरफ से। अब मुझे कौन सा गाना चलाना है, मैं चलाऊँ अपनी पसंद का गाना तो गाना होगा

ये गाना हम गीता जेडी के नाम डेडिकेट करेंगे जो फ्रांस से साथ दे रही हैं, शशि गंगा दीन जो हमारे साथ हैं, और गाना अविनाश की तरफ से उनके बेटे, ओके नहीं गाना था है मेरे बेटे, ओके मुझे लगा बेटे के लिए गाना है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे साथ हैं सुविधा वेलवेशिया, साथ देने के लिए थैंक यू, एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गाना उषा उथप और रब अपील हेरी की आवाज़ों में।

चलिए भाई अगले गाने के साथ मेरे जाने का टाइम हो गया है। चलते चलते ये गाना हम बिना पेंथिया विनाश की तरफ से उनकी बेटी उजेश बेटी जीविका वाइफ अनुषा के नाम डेडिकेट करते हैं और जमन फैमिली के लिए मीता प्रतिमा गंगा पूजा नाहिद तिलमा सूर्यदेव लीना प्रकाशवती सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय टिकटॉक पे। 80s के गाने को सुनकर काफ़ी सारे लोग जो है इन्जॉय कर रहे हैं। थैंक यू। हाय प्राकी कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड चलिए इसी के साथ अब चलने का टाइम हो गया है, फिर मिलेंगे और अभी के लिए नेक्स्ट गाना आपके लिए।

0: टाइम चेक दोपहर के 2 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार रजनी से। रजनी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले ये खबर लोकतंत्र से जुड़ी। दुनिया में जहां बहुत से देश लोकतंत्र की दृष्टि से पिछड़ रहे हैं, वहीं मॉरिशस आगे बढ़ रहा है। गैर अंतर सरकारी संगठन इंटरनेशनल आइडिया ने इस साल की अपनी रिपोर्ट में इसकी चर्चा की। हमारे देश को बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त हुए हैं, अतः आम रैंकिंग नहीं बल्कि श्रेणी कैटेगरी के अंतर्गत रैंकिंग कुल 4 है और 172 देशों को लेकर जांच की गई। मॉरिशस अभी भी टॉप 50 में शामिल। 50 मॉरिशन तीर्थयात्री कल रात भारत के लिए प्रस्थान हुए। वे चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं। इसके आयोजन में मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन, कला एवं संस्कृति मंत्रालय तथा एयरपोर्ट्स ऑफ मॉरिशस कंपनी लिमिटेड एवं प्रधानमंत्री दफ्तर का सहयोग प्राप्त है। क्या मॉरिशन संविधान भाषाई भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षित करता है? जवाब है नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से कल प्रकाशित एक पोजीशन पेपर में इस बात पर जोर दिया गया है। इसमें सुधार लाने की मांग भी की जा रही है।

0: योग प्राप्त है। क्या मॉरिशन संविधान भाषाई भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षित करता है? जवाब है नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से कल प्रकाशित एक पोजीशन पेपर में इस बात पर जोर दिया गया है। इसमें सुधार लाने की मांग भी की जा रही है। सशस्त्रों का आपसी संपर्क टूट गया। जानकारी के अनुसार मलकानगिरी में लगातार भारी वर्षा के कारण नदी नाले उफान पर है। इस तरह कांकोरकोंडा, कन्याश्रम, MV 96 पुलों के ऊपर 3 से 4 फीट तक बाढ़ का पानी बह रहा है। नचिदतन, मलकानगिरी और काली मेला, मोटू और पोरिया के बीच संपर्क टूट गया। यूरोपियन मेडिटेरियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर ने बताया कि आज पूर्वी तुर्की इलाके में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गतिविधियों पर नजर रखने वाली इस एजेंसी ने बताया कि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। संक्षिप्त समाचार ये बस समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 60 एवेन्यू दी जकारंदास कैथरबोर्ड में, नंबर 60 एवेन्यू दी जकारंदास कैथरबोर्ड में 66 साल के 66 years old के श्री राजेंद्रनाथ भवानीदीन, श्री राजेंद्रनाथ भवानीदीन जो प्रवीण नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर नंबर 60 एवेन्यू दी जकारंदास कैथरबोर्ड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 2:30 PM। ओल्ड स्कूल लेन कांजाबले में 77 साल के 77 years old के श्री गोइंसामी संजीवी जो राजन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे उनके बेटे श्री आजागेन संजीवी के घर ओल्ड स्कूल लेन कांजाबली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांजाबली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 3:30 PM। शुक्र बिन परिवारों के साथ हमारी धीरे हमदर्दी है।
1: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.
4: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
5: स्वागत करते हैं आप सभी का ऐसे विशेष कार्यक्रम में, नाट्य कला कार्यक्रम। हर रविवार को आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करते हैं नाट्य कला कार्यक्रम, जहां पे हम नाटक की दुनिया की सारी बातों को लेकर आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। नाटक की दुनिया की बातें मतलब निर्देशन से लेकर, अभिनय से लेकर, कहानी लेखन से लेकर, जो भी बातें होती है। यह कार्यक्रम खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो नाटक के फैन होते हैं, मतलब नाटक खेलना पसंद करते हैं, थिएटर लवर्स जिसको कहते हैं। या तो आप अभिनय एक्टिंग करते हैं, करना चाहते हैं, या तो आप लिखते हैं, या तो आपका एक ग्रुप होता है, तो इस कार्यक्रम के जरिए आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि कार्यक्रम के अंतर्गत हम उन महानुभावों का स्वागत करते हैं, उन मेहमानों का स्वागत करते हैं जिनका बहुत बड़ा अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होते हैं नाटक की दुनिया से लेकर, और वे लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे साथ साझा करते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मराठी नाटक जो मॉरिशस में खेला जाता है, और इस विषय पर अधिक बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं गुरु जी लिम्बाजी बिवाजी जी और अशोक गोरिया जी, दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों।
6: नमस्कार।
5: और गुरु जी बिवाजी आपसे हम शुरू करते हैं। वैसे आपका पूरा नाम है लिम्बाजी बिवाजी आनंद?
6: आनंद, वैसे लोग मुझे आनंद बोलते हैं।
5: आनंद घर का नाम होता है। और आप एक रिटायर्ड चीफ आर्ट ऑफिसर है, और नाटक के क्षेत्र में, नाटक की फील्ड में आपने बहुत कुछ, बहुत काम किया है। आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं और

0: कई लोगों को, कई ग्रुप्स को आपने ट्रेन किया है, और अशोक जी आप भी, आपने डिप्लोमा इन ड्रामेटिक आर्ट्स किया है रविन्द्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में, आप डायरेक्ट भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, एक दो नाटक भी आपने लिखे हैं, एक दो नाटक लिखते हैं ज़रूर, इसके बारे में हम बात करेंगे। बिवाजी जी आपसे हम शुरू करते हैं, आपका सफ़र, आपकी शुरुआत, आपका स्टार्टिंग फेज नाटक की दुनिया में कैसे हुआ, किस तरह से हुआ?
1: धन्यवाद। मेरा सफ़र इस फील्ड में शुरू हुआ जब मैं बहुत छोटा था, 6 साल से।
0: अच्छा।
1: उससे पहले हम पूरा परिवार के साथ हम जाते थे नाटक देखने, दशावतार डांस ड्रामा। वो मुझे गांव में आर्यता, उसका ग्रुप, उसका नाम था आर्यता दशावतार मंडली। तो इसमें दशावतार डांस ड्रामा प्रस्तुत करते थे, और एक स्पेसिफिक मौका था रिलीजियस फेस्टिवल के दौरान, जैसे गणेश चतुर्थी होता है या दिवाली होता है उसके, और उसके और सेकंडली जब शादी होता है ऑन ईव ऑफ द वेडिंग, मतलब मान लो संडे को हो रहा है, रविवार को हो रहा है, तो शनिवार को रात को वो प्रस्तुत करते थे दशावतार डांस ड्रामा।
0: अच्छा।
1: और वो पूरा रात तक, मान लो 6-7 बजे शुरू होता है शाम को, पूरा रात वो परफॉर्म करते हैं सुबह तक। पूरा मतलब दशावतार, मतलब दश अवतार, 10 इनकॉर्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु।
0: अच्छा।
1: तो उसमें क्या करते हैं, कुछ अवतार इसमें से लेते हैं, अदरवाइज दूसरे स्टोरीज भी लेते लेके उसके ऊपर काम करते हैं। एंड नाउ दशावतार अब एक स्टाइल बन गया है, दशावतार डांस ड्रामा, एक इट्स ए फोल्क डांस ड्रामा, एक स्टाइल बन गया उसका। वो महाराष्ट्र, वो भारत से लाए गए थे, और जैसे हमारे पूर्वज लोग जब यहाँ आए, उन लोगों के साथ जो भी ग्रंथ था, हिंदी वो रामायण या गीता या महाभारत जो भी कुछ लाया था, मराठी लोग वो डांस ड्रामा लेके आए थे।
0: अच्छा। दशावतार
1: डांस ड्रामा। तो कुछ गाँव में वो उसका ग्रुप था, जैसे हमारे आर्यता में था, फिर लेवाल में था, सैचुबिया में था, कसकावल में, ऐसे ऐसे ग्रुप थे।
0: जैसे रामलीला बहुत ही फेमस है, वैसे दशावतार डांस ड्रामा भी फेमस है। अच्छा। महाराष्ट्र में
1: बहुत फेमस है। तो अभी तक कुछ ग्रुप्स जैसे हमारे मराठा मंडी रहे, वो तो करते रहे थे, और अभी दूसरा प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं उसको लेके, मे बी नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर एक कुछ नाटक करेंगे उसके ऊपर।
0: अभी तक चलता है दस अवतार डांस ड्रामा।
1: हाँ, यहाँ मॉरिशस में थोड़ा डोमेंट है, लेकिन फिर से आ रहे हैं।
0: बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। और आपने कहा कि आप 6 साल की उम्र,
1: 6 साल से मैं फर्स्ट टाइम जो उसका डायरेक्टर था वो ग्रुप का, और जो जिसका जो नाटक थे उसका डायरेक्टर हमारे पिताजी थे, श्री अनंता भिवाजी रानी, तो अभी वो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उससे हमने सीखा। उसने मुझे पहली बार स्टेज पे लाया गणेश जी के रोल के लिए। तब से मैं इसी फील्ड में हूँ, और उसके बाद जब कभी कभी रोल मिलता था, कभी कभी उसका कोरस बोलते हैं उसको, या ऑर्केस्ट्रा, सेम जैसे संस्कृत थिएटर में उसका एक मंच होते हैं जहाँ लोग बैठे हुए हैं, वो गाना गाते हैं। ग्रीक थिएटर में भी ऐसा है कि कोरस है, फिर एक्टर लोग आके स्टेज पे बात करते हैं, इनैक्टमेंट करते हैं। तो दशावतार में क्या होता है कि जो ग्रुप है, जो ऑर्केस्ट्रा है, जब एक पात्र आता है स्टेज पे, वो क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न उत्तर होता है कि कैसे लोगों को पता चलेगा कि ये कौन सा कैरेक्टर खेल रहे हैं, कौन सा पात्र खेल रहे हैं। तो वो एक संवाद होता है, वाद संवाद होता है, जो मेन है हरिदास बोलते हैं उसको, जैसे हमारे पिताजी थे, वो उन लोगों को, उनको लोग शंकर हरिदास से पहचानते थे।
0: अच्छा।
1: तो वो जब बैठा होता है, और जो पात्र जो एक्टर आते हैं स्टेज पे, उन लोगों के साथ क्वेश्चन वाद संवाद होता है।
0: अच्छा।
1: कि आपका नाम क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों यहाँ आए हैं। तो ये इंट्रोडक्शन होता है ऑडियंस के लिए, ये कौन सा पात्र खेल रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसे इन्वॉल्वमेंट होके पूरा स्टोरी बन जाता है। हाँ। तो जैसे मैं बोल रहा था, इसमें भी कोरस होते हैं, गाना गाते हैं, इट्स ए होल म्यूजिकल प्ले।
0: इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, दश अवतार डांस ड्रामा। फिर उसके बाद चलते चलते आप फुल लेंथ प्ले में भी आपने काम किया है, फिर आप भारत गए, ये उस समय की का माहौल थोड़ा सा बताइए, किस परिस्थिति सर्कमस्टांसेस सिचुएशन क्या था, आप कैसे गए वहाँ पे, नियुक्त कैसे हुए और वहाँ से वहाँ ट्रेनिंग कैसी थी और वापस आए, किस तरह से आपने अपना सर्व किया?
1: हाँ, तो वहाँ जाने से पहले मैंने, जैसे हम बोल रहा था दशावतार डांस ड्रामा, तो 1978 में ड्रामा अब तब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के नीचे था, तो उन लोगों ने एक डांस ड्रामा तैयार किया था जिसको बेजुकाप में खेला गया था मैदान पे। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि नेशनल ड्रामा फेस्टिवल इन हिंदी इन मराठी लैंग्वेज स्टार्टेड इन 1977। तो उसके ऊपर काम करने के लिए मिनिस्ट्री ने सिलेक्ट किया था मिस्टर पुष्पाजी नारू को। He was looking after the Marathi drama festival.
0: Achha.
1: तो उसके बाद 1978 में हो गया, 78 में उसने और मिनिस्ट्री ने एक वही तो शो जो मैं बोल रहा था बेजुकाप में, वो उसने असेस किया वो खड़ा करने के लिए, और वो वहाँ भी होल नाइट हमने परफॉर्म किया था, राइट। तो वहाँ हमने रामायण का ये किया था, टाई स्टोरी प्रस्तुत किया था, जहाँ मैंने एक मेन रोल किया था दशरथ राजा का। और उसके बाद धीरे धीरे हम देखते देखते जाते थे दशावतार डांस ड्रामा, यो जो भी नाटक है। और जब 77 में जब नाटक शुरू हुआ, हम गए थे सेंट कॉन्स्टेंटिन थिएटर में देखने, वो उसका पहला नाम ट्राफल्गर हॉल था, वो देखने गए थे। फिर 1981 में मैं मिनिस्ट्री में ज्वाइन किया, तब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स था।
0: मुझे
1: चुनाया गया तो मैंने ज्वाइन किया मिनिस्ट्री में, दैट वाज इन 1981। तुरंत उसके बाद मिस्टर वर्मा आ गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से।
0: अच्छा,
1: उसके नीचे काम करने का मुझे इतना बड़ा अवसर मिला है, वो फर्स्ट फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्टेड देयर, मिस्टर वर्मा की, राजकरण वर्मा।
0: अच्छा,
1: वेरी गुड, ही इज चीफ
0: एक्सपर्ट। अभी अभी हाल में ही वो आए थे हमारे कार्यक्रम में, एकदम लंबी दाढ़ी, हाँ, सफेद बाल। हमने कहा कि राजी आप ऐसे ही दिखते हैं, उन्होंने कहा नहीं अभी एक शूटिंग करके आया हूँ इसीलिए लंबी दाढ़ी है, लेकिन 80+
1: 80+
0: हाँ। तो वहाँ पे वो पहले से थे।
1: फिर वो भी एनएसडी से आ गए। फिर 83 में नारू, पुष्पा जी नारू वापस आ गए, फ्रेशली ग्रेजुएटेड फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। उसके नीचे भी काम करने के लिए मुझे इतना बड़ा संधि मिला है। तो धीरे धीरे ऑन जॉब ट्रेनिंग मिला, ग्रुप्स को देखने जा रहे थे साथ साथ, कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे अभिनय करना है, ये सब मैंने इन दो क्या बोलते हैं
0: दिग्गज विशेषज्ञ स्पेशलाइज्ड
1: उन लोगों के साथ सीखा है। फिर 87 में मैं चला गया, वो तब मुझे स्कॉलरशिप मिला आईसीसीआर के थ्रू, आई मीन इट वाज कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर, आईसीसीआर एंड मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मुझे वो स्कॉलरशिप मिला। तब मैंने ज्वाइन किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा,
0: तीन साल वहाँ
1: दिल्ली, 87 to 90।
0: 87 to 90 फिर वापस आप आए और मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया।
1: बिल्कुल।
0: और करते करते आपने रिटायर किया, आप आज चीफ आर्ट्स ऑफिसर, और अभी तक आप ड्रामा को सर्व करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: बहुत ही सुंदर, काफी लंबा सफर था आपका।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: और हमारे साथ अशोक गोया जी भी है, आप मराठी एजुकेटर है और आप नाटक में भी भाग लेते हैं। वही प्रश्न आपसे, क्योंकि आज का विषय, आपका सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मॉरिशस में मराठी ड्रामा का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले आपकी शुरुआत कैसे हुई ड्रामा में?
2: हाँ, मैं 1981 में मेरी शुरुआत हुई है। फर्स्ट प्ले मैं क्रैंक आउट का रोल किया था

0: छोटा सा रोल था
1: पहला ही।
0: तब मैंने सोचा कि मुझे क्यों दिया गया है एक छोटा सा रोल। मैंने देखा कि नाटक मेरे लिए है। मैं सोचा कि मैं बाद में आई विल डू द मेन कास्ट। यही हुआ,
1: सपना था।
0: मेरा सपना पूरा हुआ।
1: और किस नाटक में आपने मेन कास्ट आज मेन एक्टर?
0: बहुत से नाटक में, जैसे एकच प्याला, नच सम्राट, चार वाजून दहा मिनितानी मैंने, और सब प्ले में मुझे बेस्ट एक्टर मिला और बेस्ट प्ले भी मिला।
1: ये सब प्ले जो आप बता रहे हैं, ये सब मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज कंपटीशन में गए?
0: हाँ, कंपटीशन।
1: फिर उसके बाद
0: मैंने MGI में भी भाग लिया था। नाटक नहीं भी, जब हम डिप्लोमा करते थे, डिप्लोमा इन ड्रामेटिक आर्ट्स।
1: जैसे गुरुजी ने उनका सफर किस किस तरह से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, इसके बारे में जरूर बात करेंगे, आपकी ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे 3 साल आपने काम किया है, आपने पढ़ाई की है डिप्लोमा इन ड्रामेटिक आर्ट्स, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: हाँ, इसके बारे में आप भी वहाँ थे, आपको पता है।
1: लेकिन आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे।
0: लेकिन हमारे गुरुजी पुरोहित, दर्शन पुरोहित वहाँ थे। शुरुआत में कुछ कठिन था, क्योंकि हमने सीखा है कैसे नाटक करे जब मैं छोटा था। ऐसे मेरे गुरुजी पाडिया ने, गुरुजी पुष्पाजी नाऊ मिनिस्ट्री तरफ से आते थे, लेकिन कुछ कठिन था। क्यों? कुछ डायलॉग कंठस्थ करना था एक दो दिन में, वो कठिन था, लेकिन वी एंजॉय फॉर 3 years। शुरुआत में जब हम मनाते हैं नया साल, हम नया साल में वहाँ थे, कोर्स थे, चालू थे।
1: अच्छा, अशोक जी डिप्लोमा इन ड्रामेटिक आर्ट्स से पहले का अशोक और इस कोर्स के बाद का अशोक, दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है?
0: दोनों में इतना ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन जब हम सीखते हैं तब जो हम सीखते हैं वो हमारे प्ले में हम प्रस्तुत करते हैं, वहाँ कुछ चेंज आते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं, ज़रूर चेंज।
1: एक्टिंग में चेंज आता है, डायरेक्टिंग में चेंज आती है। आपने लिखा भी नाटक?
0: बहुत ज्यादा प्ले नहीं लिखा मैं, मुझको पसंद है एक्टिंग करना, लिखने में रुचि नहीं है।
1: आपने एक दो तो लिखे?
0: नाटिका लिखी है
1: छोटी छोटी,
0: पैट्रियोटिज्म पर एक प्ले लिखा है
1: छोटी छोटी,
0: बट माई पैशन इज फॉर ड्रामा एक्टिंग।
1: अच्छा,
0: पसंद करता हूँ।
1: आप मराठी एजुकेटर है, बच्चों के साथ आप काम करते हैं।
0: हाँ।
1: तो ये एक्टिंग स्किल आप अपने टीचिंग में किस तरह से इसका आप प्रयोग करते हैं, किस तरह से आप बच्चों को सिखाते हैं?
0: ये एक प्लस पॉइंट है, जब आप एक्टर शिक्षक भी है, पढ़ाते भी है। मैं जब मैं HSC का कक्षा करता हूँ, लिटरेचर है, ड्रामा, देन I am also a teacher and actor also.
1: बहुत ही सुंदर। अशोक जी ने अपने 2 साल के बारे, 3 साल के का जो डिप्लोमा कोर्स, उसके बारे में बातें की। तो गुरु जी, हम जानना चाहें, क्योंकि हम जहाँ तक हम जानते हैं मॉरिशस का जो क्षेत्र है काफ़ी छोटा है, और उस क्षेत्र में एक डिप्लोमा इन ड्रामेटिक आर्ट्स बहुत बड़ी बात है, वो भी ऑनलाइन यहाँ के लोकल लोगों के साथ। लेकिन जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में बात करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट थिएटर स्कूल इन अराउंड द होल एशियन कंट्रीज, वहाँ पे आप आए गए, वहाँ की ट्रेनिंग के बारे में हम जानना चाहेंगे, किन किन लोगों से आप मिले, किस तरह की ट्रेनिंग रही, इंटेंस ट्रेनिंग रही, और किस तरह से बीवाजी NSD से पहले और बीवाजी NSD के बाद में डिफरेंस क्या है?
2: डिफरेंस तो बहुत है। जाने से पहले, जैसे मैं कह रहा था, मिस्टर वर्मा जी के साथ मैंने काम किया और मौका मिला हमको, मतलब एक्टिंग भी करने के लिए। 83 में उसने देवीरासो, श्री देवीरासो में, वो अभी तो लेट देवी रासोमी हो गए, उस उन

0: उसके प्लेस, तीन प्लेस बामा जी ने डायरेक्ट किया था, समाधली, लिंकन सिंह फिनाले और एक, और एक है, और मैं और मिस्टर नारू और कुछ लोग थे मिनिस्ट्री से, उन प्ले में काम किया था, मतलब एक्टिंग में थोड़ा जानकारी था। फिर वहाँ जब पहुँचे तो एनएस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वो तो एक महासागर बन गया हमारी, ऐसे हमको लगा कि हमने जो सीखा है वो तो एक बूंद था समुंदर से, वो तो पूरा एक ओशन हमारे लिए हमने वैसे देखा है। तो तीन साल का कोर्स, फर्स्ट ईयर इट वाज इंटीग्रेटेड, मतलब सब सब सब बच्चों के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए सेम कोर्स था, एक्टिंग को लेके, और एक्टिंग में अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, एक्टिंग को लेके, माय मूवमेंट को लेके, मार्शल आर्ट भी हमने किया, योगा भी किया, फिर थिएटरिकल म्यूजिक, ये सब सीखा फर्स्ट ईयर में। फिर सेकंड ईयर आपको मौका देते हैं वो चुनने के लिए किस फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन करेंगे, या एक्टिंग में करेंगे, या स्टेज क्राफ्ट पे करेंगे, या डायरेक्शन पे करेंगे। तो हमने चुना था, हमने ऑप्ट किया डायरेक्शन के लिए। और डायरेक्शन के लिए बहुत लोगों के साथ, बहुत फेमस डायरेक्टर्स इंडिया से भी हैं, रुबिन दास थे, फिर फ्रिज बेनेविट्स बाहर से, रतन थयम इंडिया से थे, फिर सत्यदेव दुबे, ही वाज फ्रॉम बॉम्बे, ऐसे ऐसे बहुत लोगों के साथ, राम गोपाल बजाज वाज लेक्चरर, वो एक लेक्चरर थे हमारे स्कूल में, उसके साथ काम करने का मौका मिला। तो इतना एक्सपोजर हमको मिला, और हर एक आदमी का एक अलग सा अप्रोच होता है।
1: गुरु जी, आगे बढ़ने से पहले आपने कहा कि आपने डायरेक्टिंग को चुना, एक्टिंग को क्यों नहीं बल्कि डायरेक्टिंग को चुना, ऐसे क्यों?
0: मुझसे पहले नारू ने एक्टिंग में स्पेशलाइजेशन किया, तो मैंने ये चुना कि मैं भी जब आऊँगा हम साथ भी काम कर सकते हैं। अच्छा। एक्टिंग में स्पेशलाइज है, बच्चों को कैसे एक्टिंग सिखाएंगे, वो तो है मॉरिशस के लिए और मराठी लोगों के लिए, तो मैंने ये चुना क्योंकि मैंने भी एक्टिंग किया साथ साथ, क्योंकि ये पैरेलली जब डायरेक्शन करते हैं, पैरेलली आप एक्टिंग भी करते हैं, वहाँ मौका भी हमको मिला है कि कुछ कुछ प्लेस में काम करने के लिए, जैसे शकुंतला था, भावनी भवई था, और सोराभ्रुष्टम, इससे प्ले में हमने काम किया है, लेकिन इसमें इट्स ए लार्जर फील्ड। डायरेक्शन में आप एक्टिंग भी सीखते हैं, आप एक्टिंग भी सीखते हैं, और सब स्टेज क्राफ्ट की जो भी है, डायरेक्शन है, लाइटिंग डिजाइनिंग है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, मेकअप, सब कुछ जो टेक्निकल इनपुट चाहिए प्ले के लिए, तो हम वो प्रेफर किया सीखने के लिए।
1: ये तो दूसरे साल में होता है,
0: वो तो दूसरे साल में, और तीसरे साल में,
1: तीसरे साल में। और इसमें डिसर्टेशन वगैरह होता है?
0: डिसर्टेशन होता है, वाइवा होता है, आप प्रोजेक्ट लिखो, फिर बोर्ड बैठेगा, आपका इंटरव्यू लेंगे, वाइवा भी होता है, आपने क्यों ये किया, आपने क्यों ये प्ले चूज किया, क्यों ये कपड़ा ऐसा पहना, क्यों ये मरून वाला पहना, क्यों ये लाइट क्यों वाइट है, क्यों रेड नहीं है, क्यों ब्लू है, ये सब आपको जानना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए।
1: और वहाँ पे इतने बड़े, जैसे आपने कहा कि महासागर में आप गए, हम छोटे से मॉरिशस की मछली, वहाँ पे महासागर में गए, कोई किसी ने क्वेश्चन नहीं किया आप कहाँ से आए हैं, मॉरिशस देश कैसा है, वहाँ के एक्टर्स लोग कैसे हैं, आपको मौका नहीं मिला मॉरिशस को प्रस्तुत करने के लिए वहाँ पे?
0: बिल्कुल बिल्कुल मौका मिला है। देखो मैं जब गया, मैं तो पहले नहीं था, मुझसे पहले मिसिज कुमार थी, वो भी एन एस डी ग्रेजुएट थे, अब तो वो गुजर चुकी, उसके बाद आ गया मिस्टर बामा, फिर नारू एन वीरामुथु वो भी चले गए थे, वो भी सिक्के आ गए, उसके बाद था मिस्टर रामजवान और वीरामुथु एंड मिस्टर महावीर, फिर स्वामी भी गया था, वो तो वापस आ गया। तो मतलब लोगों के लिए ये नया नहीं था कि मॉरिशस से लोग आके वहाँ सीखते हैं, लेकिन मैं हमारे बैचमेट में उन लोगों को ये मौका मिला है कि मॉरिशस का एक लड़का, एक कोई आया है नाटक सीखने के लिए मॉरिशस से, उन लोगों के लिए कुछ नया था। तो रोज़ रोज उसको हम कुछ कुछ शेयर करते हैं, हमारे मॉरिशस कैसा है, इकोनॉमी कैसा है, हमारे कल्चर कैसा है, कैसे हम हिंदी थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, कैसे हम सीख गए हैं, ये सब प्रश्न आता रहता है।
1: और वहाँ पे जहाँ हम जानते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट पहले तो स्टूडेंट थे, बाद में जाके आर्टिस्ट बन जाते हैं, आपके बैचमेट में कोई नहीं है जो अभी हम उसको हम पर्दे पर देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं?
0: हाँ।

0: मेरे बैचमेट में बहुत सारे लोग हैं. लास्ट टाइम आया था आशीष विद्यार्थी, वो एमबीसी में आया था. फिर उसके साथ मेरा और एक दोस्त है बहारुल इस्लाम, फिर संजय उपाध्याय, संजय शर्मा, ये सब लोग उन लोगों के गांव देश शहर में जाके काम कर रहे हैं अभी. तो कहने का मतलब ये है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बेसिस फॉर ये बहुत लोग इसमें से फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, लेकिन ये तो नाटक जो है ना, इट्स ए बेसिस फॉर फिल्म्स. यहाँ लोग आके सीखते हैं, एबीसीडी यहाँ सीखते हैं, फिर कैसे जाके वो इस्तेमाल करेंगे स्टेज इसके इसके स्क्रीन स्क्रीन पे.
1: एबीसीडी वहाँ सीखते हैं, कंपोजिशन वहाँ करते हैं,
0: वहाँ करते हैं. मतलब अगर आप किसी को देख रहे हैं पिक्चर में, अनुपम खेर हैं या नसीरुद्दीन शाह हैं, ये सब लोग एनएसडी पास आउट हैं. तो यहाँ से सीख के कैसा वो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ, ये देखने को मिलता है पर्दे पे.
1: आपने अपना पूरी यात्रा, पूरा जर्नी आपने हमें बताया किस तरह से वहाँ के कोर्सेज, वहाँ की ट्रेनिंग रही. अभी थोड़े से हम मॉरिशस में मराठी थिएटर के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं.

0: पाठ्यकला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा, नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्यकला।
1: जिस तरह से हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता है, याद दिला दें आपको, नाट्यकला कार्यक्रम आप लोग देख रहे और सुन भी रहे हैं। यह कार्यक्रम एक शोध कार्य की तरह होता है, एक रिसर्च की तरह होता है, क्योंकि हम इतिहास में चलते हैं। इतिहास में शुरुआती दौर कैसा था, लोगों ने किस तरह से नाटक खेले हैं, किस तरह से ट्रेनिंग प्राप्त की गई है, किस तरह से लोग आए हैं भारत से, अन्य देशों से, किस तरह से मॉरिशस में नाटक का विकास होता गया और आज नाटक का जो छोटा सा पौधा था आज बड़ा सा पेड़ बन गया है और अनेक फल देते जा रहे हैं। कुछ फल पके भी हो गए हैं और कुछ फल से भी और पेड़ भी आ गए। हमारे साथ है गुरुजी लिंबाजी बिवाजी जी और गुरुजी अशोक गौरिया जी। आप दोनों नाटक के क्षेत्र में हैं, आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं और नाटक के साथ भी है। और आज हम खास तौर पे विशेष रूप से मराठी नाटक के बारे में बातें करेंगे। गुरुजी बिवाजी, आपसे हम शुरू करना चाहेंगे। आपने अपने बारे में बता दी है, मॉरिशस में मेन नाटकों के बारे में अगर बात करेंगे, इनमें हिंदी है, भोजपुरी है, नाटक है, क्रियोल है, तमिल है, तेलुगु है, अंग्रेजी है, फ्रेंच, बहुत सारी भाषाओं में नाटक खेले जाते हैं। खास तौर पे आज विशेष रूप से मराठी नाटक की शुरुआत के बारे में बताइए, कब हुई थी, कैसे हुई थी, किन सिचुएशन, किन परिस्थिति में शुरू हुई थी?
2: अच्छा, तो ड्रामा फेस्टिवल बहुत पहले से शुरू हुआ, ब्रिटिश काउंसिल ने किए, वो ऑर्गेनाइज करते थे इंग्लिश में,
1: मिनिस्टर ऑफ
2: यूथ एंड स्पोर्ट्स, तब यूथ एंड स्पोर्ट्स, दैट वाज इन 1951। उसके बाद 1952 में फ्रेंच ड्रामा फेस्टिवल भी शुरू हुआ 52 में।
1: ओके,
2: तो 52 से लेके 73 तक जब हिंदी ड्रामा शुरू हुआ, इस बीच में कुछ नहीं हुआ। मतलब लोग करते थे नाटक, लेकिन फेस्टिवल्स नहीं था। ये दो फेस्टिवल्स थे अप टू 73, बस ये दो थे। फिर आ गया इंडिया से
1: मोहन महर्षि
2: जी, उसने वो ड्रामा यूनिट सेटअप किया और धीरे धीरे लोगों को ट्रेनिंग, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग देना शुरू किया।
1: आपको बीच में रोकूंगा। जो लोग आए हमारे इस प्रोग्राम में, दिग्गज लोग, एक्सपीरियंस वाले, उन लोगों ने हमेशा मोहन महर्षि जी का नाम जरूर लिया है, क्योंकि उन लोगों की ट्रेनिंग रही है मोहन महर्षि जी के साथ, आप भी उसका नाम ले रहे हैं। तो वहां से शुरू होकर आगे कैसे बढ़ा?
2: तो वो जब ट्रेनिंग दे रहे थे लोग बाहर के लोगों को और साथ साथ जो मिनिस्ट्री में काम करते थे, जैसे मैंने बोला मिसेस कुमार, वो भी थी, नारू और एक दूसरा बैच भी था जो बाद में ज्वाइन किया, दे वॉज सेकंडेड फॉर एम्प्लॉयमेंट एट दिस मिनिस्ट्री यूथ एंड स्पोर्ट्स। तो वो भाषा पढ़ाते थे स्कूल में, तो जिन लोग मिनिस्ट्री में स्टडी किया होगा, जिन लोग भाषा भाषा जिन लोगों को भाषा भी आता है।

0: कल्चरल एस्पेक्ट्स भी उन लोगों को पता है, तो उन लोगों को चुना के चूज करके उन लोगों को यहाँ बुलाया और ट्रेनिंग दिया. तो ट्रेनिंग करते करते फिर ये सब फेस्टिवल्स उन लोगों ने शुरू किया. तो 1973 में हिंदी नाटक शुरू हुआ. उसके बाद आ गया उर्दू, उर्दू ड्रामा फेस्टिवल, फिर तमिल, तेलुगु और मराठी 1977 में वो शुरू हुआ. तो उसका इंचार्ज था मिसेस कुमार एंड मिस्टर नारू. ये दोनों ने पूरा मतलब जहाँ जहाँ ग्रुप्स सोशल कल्चरल ग्रुप्स थे वहाँ जाके लोगों को वो मोटिवेट किया और इस नाटक में भाग करने के लिए बुलाया, ये रिक्वेस्ट किया. क्योंकि उन लोगों को बताया गया है कि नाटक के थ्रू भाषा और संस्कृति जो भी है उन लोगों को प्रमोट करने के लिए यही बस एक बड़ा बहुत बड़ा मीडियम है.
1: उस समय आपकी उम्र क्या थी?
0: 73 मतलब आठ साल. तो तब मैंने ये नहीं किया, मैंने भाग नहीं लिया था. तो 73 इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन मॉरिशस मराठी ड्रामा फेस्टिवल. तो वो जब अब जब हम बोलते हैं सियाज कॉन्स्टेंटिनोपल थिएटर, उससे पहले ट्रफालगर हॉल था, वहाँ वो नाटक प्रस्तुत करते थे. पूरा हाउसफुल, क्योंकि पहली बार लोगों के लिए, मराठी लोगों के लिए वो एंटरटेनमेंट ऐसा मिल रहा है कि जाके नाटक देखो कैसे लोग इन्वॉल्व इवॉल्व कर रहे हैं स्टेज पे, कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, कैसे डायरेक्शन कर रहे हैं, कैसे क्या लाइट क्या होगा, कैसे कॉस्ट्यूम का होगा, ये लोग जानना चाहते थे. तो ये बहुत लोग रोज हाउसफुल होता था.
1: जब बात कर रहे हैं 1977, तो उस समय मराठी ड्रामा की कहानी कैसी थी? लोकल कहानी थी या फिर भारत की कहानी थी? आप जानेंगे इसके बारे में?
0: हाँ, तो कुछ नाटक बाहर से लेते थे और बहुत सारे नाटक यहाँ मॉरिशस से भी लेते थे. यहाँ मॉरिशस में प्लेराज थे, मतलब जैसे बोल रहा था वो मराठी पढ़ाते थे स्कूल में, वो ही लिखते थे. जैसे हमारे अभी स्वर्गवासी गुरुजी पाडिया, उसने वो नाटक लिखा था वो 1977 के लिए, मिचालो गंगा तीरी. तो उसको मिला था बेस्ट प्ले, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, सब कुछ. दैट वॉज ए लोकल प्ले. और उसके साथ साथ और दूसरे ग्रुप भी थे, जैसे मराठा मंडी था, उन लोगों ने मंत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन वो महाराष्ट्र से लाया गया था. वो स्क्रिप्ट था.
1: उस समय काफ़ी एंट्रीज मिलती थी.
0: शुरू में थोड़ा कम था, मान लो 10 या 15. फिर लोगों को जब पता चला कि नाटक में क्या है, क्या रस है इसमें, तो कुछ साल 25-30 एंट्री भी मिलते थे. ऐसा था.
1: तो इस तरह से नाटक का इवोल्यूशन होता गया. और अशोक जी, आपने भी भाग लिया नाटक में. आप किन किन नाटकों में आपने भाग लिया है, और आज तक अभी तक आपको कौन सा नाटक आपका स्पेशल है, विशेष है, जो अभी तक आप याद करते हैं?
2: जो मैं याद करता हूँ, ये एकच प्याला है. मैंने जैसे कहा था कि शुरुआत में मैं शराबी का रोल किया था, इसमें भी शराबी का रोल मैंने किया, लेकिन मैं पीता नहीं.
0: पिलाते हो?
1: नाटक का रस आप पिलाते हैं?
2: हाँ, नाटक का रस.
1: और
2: ये मैंने 2 बार किया था, और 2 बार हमको बेस्ट एक्टर और बेस्ट प्ले मिला था इसमें. बहुत सुंदर नाटक है.
1: कहानी क्या थी?
2: यहाँ एक लॉयर है, वो एक परिवार है, लेकिन वो ज़्यादा पीते थे. उसने छोटा बच्चा था, उसका बच्चा भी मर गया, क्योंकि वो घर पे आते थे कुछ. उसने उसकी पत्नी को मारा और बेटे को भी मारा, ऐसे.
1: मतलब सोशल मैसेज
2: है.
1: गुरुजी, आपने काफ़ी नाटकों को देखा, काफ़ी नाटकों को स्टडी किया. मॉरिशस में ज़्यादा से ज़्यादा किस टाइप के, किस टेक्निक के नाटक ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं?
0: तो यहाँ जैसे मैंने बोला, बहुत सारे, सिर्फ मराठी में नहीं, बहुत सारे और भाषा में भी बहुत सारे लोग लिखते हैं. वो सोशल प्रॉब्लम्स को लेके या कैसे उसको इम्प्रूव करना है, राइट, ये सब को लेके वो लोग लिखते हैं. हाँ, तो कुछ कुछ लोग बाहर से भी नाटक लेते हैं, कुछ कॉमेडी लेते हैं, क्योंकि नाटक एक ऐसा मीडियम है कि लोगों को एंटरटेन भी करते हैं और एजुकेट भी करते हैं. तो कैसा लोगों को एंटरटेन करना है थ्रू ड्रामा, तो ऐसा लोग लिखते थे. क्योंकि ड्रामा, जैसे मोलियर ने बोला है, ले थिएटर, मैं हिंदी में फ्रेंच में बोल सकता हूँ, ले थिएटर, थोड़ा चेक करके बताता हूँ, थोड़ी है, हाँ, मोलियर ने ये बोला है, ले बुट डे ला कॉमेडी ou tragédie, et de corriger les vices des hommes en les divertissant. मतलब वो गोल है नाटक का कि जो हमारे हमारे सोसाइटी में जो फ्लेओ हैं, जो वाइसेस हैं, उसको कैसे करेक्ट करके, बट थ्रू एंटरटेनमेंट. तो ये सब को लेके कैसे लोगों को मैसेज देना है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है. क्योंकि मान लो अशिक बोल रहा था वो शराबी नहीं, वो पीता नहीं है, तो मान लो वो पीता था, तो मैं डायरेक्टली जाके उसको नहीं बोल सकता हूँ कि अशोक ये गलत काम है, तुम पी रहे हो, क्योंकि वो मुझे बोल सकता है क्या तेरा क्या प्रॉब्लम है, पैसा तो मेरा है. तो ये थीम को लेके मैं नाटक, मैं स्टेज पे जाके ये मैसेज दे सकता हूँ कि ये ठीक नहीं है, ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है. तो उसको मैसेज मिल जाएगा, नॉट डायरेक्टली टू हिम, बट थ्रू ड्रामा.
1: और आप, क्या आपने देखा है वाकई कि सोसाइटी में चेंजेस आए हैं आपके, जितना आपने काम किया आर्ट्स एंड कल्चर मिनिस्ट्री में, लोगों इस समाज में, सोसाइटी में फर्क आया है?
0: बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया. क्योंकि मुझे याद है मैंने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी काम किया है, जहाँ अल्कोहलिक लेडीज थे. तो वहाँ जाके उन लोगों को एक्सप्लेन किया कि मैं यहाँ क्यों आया, और आपका क्या प्रॉब्लम है, पर्गेशन जैसे बोलते हैं उसको, कि आपका प्रॉब्लम क्या है वो बताओ, हम लिख रहे हैं. तो इसके इसके इसके मीडियम से क्या सॉल्यूशन है उन लोगों को इसमें से निकालने के लिए, तो हमने ढूंढा और उन लोगों को लोगों ने स्वीकार भी किया है कि हम क्यों इसमें पड़ गए हैं, उसका सॉल्यूशन है, हम इसमें से निकल सकते हैं. तो ऐसे ऐसे हम सोचते हैं कि नाटक को लेके एक सोशल इविल से हम निकल सकते हैं.
1: मैंने देखा कि मिनिस्ट्री की ओर से बहुत सारे कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर, खास तौर पे स्कूल के बीच में, कॉलेजेस के बीच में, और जो सोशो कल्चरल ग्रुप्स हैं उन लोगों के बीच में खास तौर पे, क्योंकि वही लोग आगे चलकर एक मिसाल, एक एग्जांपल देंगे. तो आप लोग साथ देते रहिए, एक और छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं.

0: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
1: इतिहास के बारे में हम जानेंगे और इतिहास से सीखकर अपने वर्तमान को हम सुधार सकते हैं और आने वाले भविष्य को भी बना सकते हैं। विल बी द आर्किटेक्चर ऑफ आवर फ्यूचर, अगर हम अपने पास अपने इतिहास के बारे में जाने। हम बात कर रहे हैं थिएटर के बारे में और थिएटर के इतिहास में हम गए हैं। थिएटर, मराठी थिएटर मॉरिशस में किस तरह से उसका एवोल्यूशन हुआ, किस तरह से आगे बढ़ता गया। गुरुजी बीवाजी हमारे साथ हैं और अशोक भी हमारे साथ है। कह रहे हैं कि ना किस साल से, किस 1978 से शुरू हुआ, 1977 से मराठी ड्रामा शुरू हुआ नेशनल स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर द्वारा।

0: और उसके बाद वो बढ़ता गया। आप रिटायर हुए हैं आज चीफ आर्ट्स ऑफिसर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। आपने बहुत कुछ देखा है गुरुजी, बहुत कुछ जाना है। आपसे हम जानना चाहेंगे, ऐसा क्या आपने देखा है हमारे मॉरिशन सोसाइटी में नाटक को लेकर जो अभी तक आपके मतलब दिल में है, दिमाग में है, जहन में है, या फिर कुछ सुधार आप ला सकते हैं, हम ला सकते हैं?
1: ऐसा है कि बहुत लोग नाटक करना चाहते हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं नाटक में, मिनिस्ट्री भी देता है, लेकिन ऐसा हमने फील किया है कि एक एजुकेशन करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, पब्लिक को, कि जाके वो नाटक देखे, घर से निकल जाए आप लोग, क्योंकि हम मानते हैं बच्चों के साथ रहना, ट्यूशन स्कूल से स्कूल में लेके उन लोगों के लाना, फिर ट्यूशन है, फिर आपका काम है, घर में आके खाना बनाना है, घर परिवार को देखना है, लेकिन थोड़ा समय निकाल के वो प्रोत्साहित करने के लिए उन लोगों को, कलाकारों को जाके देखें। जैसे मैंने बोला, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कॉस्ट्यूम, मेकअप, लाइटिंग, ये सब सबको लेके कितना इन्वेस्टमेंट होता है, ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि नाटक को प्रमोट करें, भाषा को प्रमोट करें, कल्चर को प्रमोट करें। तो आपका सहायता यहाँ ये है कि आप उन लोगों को जाके प्रोत्साहित करें, अनकोरेज करें, ताकि वो दूसरा प्रोजेक्ट लेके आ जाए।
0: और नाटक, जैसे आपने कहा कि लोग घर से निकलें, क्योंकि आज के समाज में हम देखते हैं कि नौजवान लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेलीफोन में है, रहते हैं, सोशलाइज नहीं करते हैं। ये एक मौका होता है, नाटक हमारे जीवन में सुधार ला सकता है, सोसाइटी में सुधार ला सकता है, हमारे बच्चों के जीवन में भी सुधार ला सकता है। 42 years आपने काम किया मिनिस्ट्री में, उसके बाद आप रिटायर हुए, तो रिटायर की ज़िंदगी कैसी चल रही है, अभी तक नाटक के साथ जुड़े हुए?
1: देखो, मैंने ऑफिस से रिटायरमेंट ले लिया है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से, लेकिन वो जो जो लगाव है, जो प्यार है नाटक के लिए, अभी तक है, अभी तक जल रहा है। तो मैं 2023 में ऑफिस से रिटायर हो गया, उसके बाद काम करता रहा, वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट के साथ काम मैंने किया, मैं और मिस्टर वर्मा ने एक वर्कशॉप भी लिया था, फिर एक प्ले भी डायरेक्ट किया, महाभारत को लेके, भगवद गीता को लेके वो एक प्ले किया था, फिर उसके बाद वाकवा रंगभूमि
0: कला मंदिर
1: के साथ वर्कशॉप भी किया, डायरेक्शन के ऊपर और एक्टिंग के को लेके, फिर हमारे घर के पास एक मराठा मंदिर है, जहाँ हमने एक मराठा मंदिर और स्कूल वो ये बनाया, तो हर संडे को, हर रविवार को हम बच्चों के साथ काम करते हैं।
0: और कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं, मैं देख रहा हूं समय जाते जाते आप, क्योंकि आज का विषय मराठी थिएटर को लेकर है, तो अंत में जो एक्टर्स, डायरेक्टर्स जो मराठी लिखते हैं, काम करते हैं इसमें मराठी थिएटर में, उन लोगों के लिए क्या संदेश?
1: मेरा एडवाइस ये है कि जो भी आप लिखते हैं, आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उन लोगों को खींचने का ये करो कि क्या बोलते हैं, ट्राई करो, कैसे लोगों को खींच के आप आपके आपके प्ले को देखेंगे, क्योंकि नाटक ऐसा, जैसे मैंने बोला, एंटरटेनमेंट है, एजुकेटिव है, तो जो मैसेज आप देना चाहते हैं सो नाटक। हाँ, तो और बस ये नहीं, एक अपील है पेरेंट्स के लिए, कुछ आप हम मानते हैं आप बच्चों को देख रहे हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के अलावा आप भी बड़े हैं, आप काम के अलावा जो जो जो औरत काम घर में हाउस होल्ड लेडीज हैं, ये सब के अलावा आप क्या कर रहे हैं आपके लिए, तो बैलेंस रखने के लिए आपकी ज़िंदगी में कुछ एंटरटेनमेंट होने चाहिए। एंटरटेनमेंट मतलब काम को छोड़ के कुछ आर्टिस्टिक करो, बस नाटक में नहीं, म्यूजिक जाके सीखो, इंस्ट्रूमेंट सीखो, स्पोर्ट करो, मार्शल आर्ट करो, जाओ स्विमिंग करो, जो भी है, काम को छोड़ के कुछ करो जिंदगी में, ताकि आपकी जिंदगी में एक बैलेंस आ जाए।
0: बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अशोक गुरिया जी, जाने का समय भी आ गया है, आप नौजवानों के साथ काम करते हैं, तो

0: नौजवानों के को लेकर कोई खास संदेश नाटक के क्षेत्र में?
1: मैं ये कहूँगा कि नाटक एक ज़रूरी माध्यम है कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। जब कोई छोटा बच्चा शुरू करेगा नाटक करने के लिए, तब मैं कहूँगा वो ड्रग्स नहीं जाएगा लेने के लिए, वो एक अच्छा इंसान बनेगा। क्योंकि जब हम नाटक करते हैं, फिर हम सिर्फ कैरेक्टर बिल्डिंग करते नहीं, लेकिन हम सीखते हैं कैसे रोल दिलाना, कैसे बोलना, कैसे आप बॉडी लैंग्वेज, हम सब ये सब सीखते हैं।
0: मैं सोचता हूँ कि नाटक जब हम करते हैं तो एक नई समाज का निर्माण हम कर रहे हैं, भविष्य का निर्माण हम कर रहे हैं, न्यू जनरेशन का निर्माण हम कर रहे हैं, इतिहास का निर्माण हम कर रहे हैं। तो बिवाजी जी आप आए हैं, अशोक जी आप आए हैं इस कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, आप ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए नाटक के क्षेत्र में, ताकि हमारे देश के जो नौजवान हैं और हमारे देश में नाटक का जो भविष्य है वो सुखद हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: तो आप लोग साथ देते रहिएगा जरूर, जैसे कि हमने कहा कि नाटक में वो क्षमता है भविष्य का निर्माण करने के लिए, नाटक में वो क्षमता है नई पीढ़ी का निर्माण करने के लिए। आप भी नाटक सीखिएगा, नाटक में भाग लीजिएगा और अन्य लोगों को भी, खासतौर पर नौजवानों को भी आप लोग आकर्षित कीजिएगा। अगले कार्यक्रम तक हमारी ओर से नमस्कार।
3: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा, नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें। रजनी से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। गैर अंतर सरकारी संगठन इंटरनेशनल आइडिया ने इस साल की अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है कि दुनिया में जहां बहुत से देश लोकतंत्र की दृष्टि से पिछड़ रहे हैं, वहीं मॉरिशस आगे बढ़ रहा है। हमारे देश को कुछ बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त हुए हैं, अतः आम रैंकिंग नहीं बल्कि श्रेणी के अंतर्गत रैंकिंग कुल मिलाकर 4 है। 172 देशों को लेकर जाँच की गई, मॉरिशस अभी भी टॉप 50 में शामिल। कृषि उद्योग से जुड़ी संस्थाओं के उच्चाधिकारी फिर से रिजवी में मिले। इससे 8 महीने पहले ही मैनेजमेंट की एक पहली बैठक लगाई गई थी। मंत्री अरविंद बुलेल अब से चाहते हैं कि कार्यक्रमों को अधिक ठोस तरीके से फॉलोअप हो, उद्देश्यों के साथ, इंडेक्स के साथ और मापे जाने वाले नतीजों के साथ। परफॉर्मेंस बेस्ड बजट 2026-2027 के अंतर्गत ये कदम उठाए जा रहे हैं। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे ब्लू इकोनॉमी पर टेक्स्ट की तैयारी, नम इलाके, फॉरेस्ट्री और साथ में कृषि विकास तथा महासागर के साथ जुड़ी कई नई गतिविधियां। 50 मॉरिशन तीर्थयात्री कल रात भारत के लिए प्रस्थान हुए। वे चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं। इसके आयोजन में मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन, कला एवं संस्कृति मंत्रालय तथा एयरपोर्ट्स ऑफ मॉरिशस कंपनी लिमिटेड और प्रधानमंत्री दफ्तर का सहयोग प्राप्त है। विदेश समाचारों में इथियोपिया की सरकार और उत्तरी तिग्रे इलाके पर अधिकार जमाने वाली पार्टी एक दूसरे पर पहले हमला शुरू करने के आरोप लगा रही हैं। इससे फिर से भारी लड़ाई होने का डर मंडरा रहा है। 2022 में टिग्रे में 2 वर्षीय लड़ाई खत्म हुई थी, लेकिन हालिया महीनों में दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर शांति सौदे का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया, धन्यवाद। कुछ ही समय में ये शोक समाचार। ओल्ड स्कूल लेन कांजाबल में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री गोइंसामी संजीवी जो राजन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे उनके बेटे श्री आजागैन संजीवी के घर ओल्ड स्कूल लेन कांजाबली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांजाबली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। शुकमय दुबे इस परिवार के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
2: You're listening to RM3 Radio, Mana.

आप सभी को नमस्कार। कहिए आप सब कैसे हैं। हमें पूर्ण आशा है कि आप सब स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं। आज तकनीक पर साथ दे रहे हैं यूसुफ, हमारी जो प्रोडक्शन सहायिका हैं दीपशिखा और शीतल लुबिन के निर्देशन में ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में यानी कि आज की चर्चा में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका हम लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे दैनिक जीवन में सभी से संबंध रखता है। चाहे हम रोज़ की छोटी खरीदारी करें या कोई बड़ी वस्तु या सेवा करें। हम बात करेंगे कंज्यूमर एजुकेशन यानी उपभोक्ता शिक्षा और कंज्यूमर एम्पावरमेंट यानी उपभोक्ता सशक्तिकरण की। तो एक जागरूक उपभोक्ता केवल ये नहीं जानता कि क्या खरीदना है, बल्कि ये भी जानता है कि कुछ खरीदने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उनका जो अधिकार वो क्या है और शिकायत अगर करना है तो कहाँ पर करना चाहिए, इन सब बातों पर उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में श्री सूरज लाल बिहारी जी हैं जो कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर हैं। आपका स्वागत हम करते हैं, नमस्कार। और इस प्रोग्राम, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हम इस विषय यानी कि उपभोक्ता शिक्षा पर चर्चा करेंगे, तो आपको धन्यवाद।

0: देते हैं कि हमारे इस मंच पर आप आए हुए हैं। और पहला हमने ई खुजब जाने के कि ये जो कंज्यूमर एजुकेशन मतलब कंज्यूमर उपभोक्ता के जो शिक्षा एक का है इतना महत्वपूर्ण है।
1: वास्तव में देखेंगे ये जो एजुकेशन जिन बना जिन करी रजा ये हमने के ग्राहक लोग के सशक्त बनाई लजा यानी कि जानकारी परम आवश्यकता बा हमने के यानी कि जिन कुछ जिनमें बिजनेस जिन बा जिन व्यापार करे होला और खरीदारी करते समय भी जिन ग्राहक बा वो जानी का करे जाते हैं करे कौन चीज खरीदाई जाता है खरीदारी करे और कौन चीज इन्फॉर्मेशन चाहे जान जाए कि आगे खरीदारी करे से आगे हमने के वास्तव जिनमें ईमानदारी जिन बा हमेशा दोनों बगल से हुए जिनमें हमने के ग्राहक लोग के औबेते नहीं करियन जा जिनमें लोग के बस हमने के अभी देख बा जब व्यापारी लोग तक ठगेरा ढेर हो गल बा और हमने के कर्तव्य बा हमने के मंत्रालय एक ही कारण हमने के जिज्ञासों कही ला जा जिनमें सशक्त बनाई ला जा ग्राहक लोग के और खरीदारी करे आगे उस लोग जान जान सा कौन चीज बा उनमें कौन चीज खरीदारी करे के चाहिए आवश्यक सामान बा सरकार बरगर दोनों की ओर से कौन चीज करते हैं जहाँ हमने भी ये सब जान जाए के चाहिए आगे तब सकब जा कुछ खरीदारी करे।
0: तब अगर देखा जाए तो एगो जैसे एगो अवेयरनेस लोग के चाहे मतलब जागरूक करे के लोग के
1: हमने के जैसे हमने के कानून बा हमने के कितना कानून बा तीन को कानून बाई से कैसे हमने के ग्राहक से कब्जा सुरक्षा पहुँचावे तो ये कारण है सब इन्फॉर्मेशन के लिए सब लोग जाए जा बोले हमने के कैसे कैसे बा कौन कानून लागू बा कौन हमने के जिम्मेदारी बा कौन से हमने के अधिकार बा इस पर भी हम लोग सब लोग जा करके हम लोग इन्फॉर्मेशन दे ले जा ग्राहक लोग के सूचना कही ले जा कैसे कैसे खरीदारी भी करे के चाहिए कौन चीज़ ले के चाहिए खरीदारी के बाद में कौन चीज़ देखे के चाहिए आगे तब से कब्जा खरीदारी करे जैमें अच्छा से जिन चीज करत है खरीदे जाए जाना जिनमें ठग आए नहीं जाप सर और बेचे वाला भी अपन नियम आधार से अपन कानून के आधार से हमने के खरीदारी भी करियन जा और बेचे भी बेचे वाला भी अच्छा से बेचारी
0: तो अगर कंज्यूमर लोग के ई जानकारी नहीं होई तो कौन लेपे होता
1: जे नहीं रही जानकारी तो बिन बेच के गो चीज किन दे अब सर तो कर जो इंस्ट्रक्शन बा जो कुछ प्रिकॉशन लेके चाहिए लाइक का लोग के कुछ हो जाए और सेफ्टी प्रोडक्ट भी बा ये सब नहीं देख लें जा और इंस्ट्रक्शन ही पढ़ लें जानी मन से खरीदारी कर दे लें से अन लें सर गाँव चूचो नहीं बा मतलब सब कुछ का हो अब निम लगे आई बा जा बोलबा ऐसे ऐसे बात हमने के इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं मिल बा और नहीं ले लें सर नहीं पूछ ले भी हैं सर तो अच्छा नहीं हो अपनी के बिन भेद के फिर जो खर्चा हो जाला और लॉचिकुआ के नहीं सकता कुछ करे तो ग्राहक लोग के सुरक्षा नहीं सकब जा पहुँचावे ये कारण ये इन्फॉर्मेशन जो बा जितना जागरूकता अभियान जो होला ना हमने के ग्राहक लोग के सुरक्षा भी होला और खरीदारी करते समय और करे से आगे हमने के कपार में दाल दे जा कौन चीज करे के चाहे कौन चीज सोचे के चाहे कौन चीज पूछे के चाहे जिनमें अच्छा से हमने सकब जा खरीदारी करे।
0: तो अच्छा कंज्यूमर लोग के सबसे जरूरी बात कौन चीज चाहे ध्यान में रखे के जब वो लोग अपन खरीदारी कर रहे था कोनो सामान कोनो लॉजिक कौन कौन बात वो लोग के चाहे ध्यान में रखे
1: कि देख बजा कुछ जो खरीदारी करे से आगे हमने के लालवा बा कानून बा सब के दाम चाहिए ऑफिशे हुई के पहला कहूँ भी जाप सा बाजार में सुपर मार्शे में कहीं पर ही हमने के बेचाव होता एगो ट्रेड में मिसा जैसे बुटीक बा हमने के सुपर मौसे बा हमने के जहाँ चाहे बेचाता हो जा हमने के लाफाओं में बा तो हमने के दाम डाले के चाहिए काहे कारण बोल जाए दाम डाले के चाहिए क्योंकि लॉजिक बा जे एगो दम हम नहीं डले हवन तो हम कोई जाए तो दूसर दाम बोली हो के दूसर दाम दे बोल दे बोलन जा तो हमने एगो फेयरनेस नहीं होला हमने के ये कारण हमने के दाम परम आवश्यकता बा हो के चाहिए कानून है और मॉरिशस में हमने के तीन प्रकार के दाम है का तीन हमने के जागरूकता अभियान होला हमने के एगो दाम फिक्से है हाँ एगो दाम फिक्से है जैसे हमने के रोटी बा हमने के गैस बा हमने के आलू प्याज बा ये सब दाम फिक्से है ये सरकार हमने के मार्केट सर्वेलेंस के आधार पर देखी ला जा जितना लॉजिक जो बा जो बेसिक बोल रहा जाए जो घर में घरेलू सामान जो आवश्यकता सामान बा जो आवश्यकता बा हमने के घर में चलावे के हमने के घरेलू सामान के हर सब जितना बा फिक्से बा हमने के जैसे आलू प्याज बा हमने के सब लाखों जिम्मे हुई के चाहिए बबन गैस बा डोमेस्टिक गैस हमने के लाफारिन बा आटा बा ऐसे से कितना हमने के लॉजिक फिक्से बा और दाम फिक्से है ये हमने के सगरों सब कोई जानी ला कितना दाम है रोटी के हमने के कितना कितना ऐसे है ये पहला दाम है ओ दम डाले के चाहिए बोलियन से नहीं फिक्सी नहीं दारब से नहीं दाले के चाहिए जैसे कानून हो आफिशे हो के चाहिए और मैं बोले तो मजा ए एस मोपी जैसे बोई ला जा

0: कर मोटा और जे वैट नील वैट इंक्लूडेड सब डाले के चाहिए पहला फिक्स दाम दूसरा एगो मैक्सिमम मार्कअप हमनी के एगो एगो लॉजिक जितना हमनी के डिब्बा के जो लॉजिक है जो कान फूड है उ सब जितना हमें बा हमनी के मार्कअप बोला जाला मार्कअप का है हमनी के एगो मैक्सिमम प्रॉफिट दे ला जा जैसे कॉस्टिंग विदा करिए कितना कूते होल बा लोग के फ्रेट कितना सब चीज तय पोते होला हमनी के सरकार के तय पोते जब होता ना हमनी के लगे एगो कॉस्टिंग विदा करिए कितना कूते होल बा तो हमनी के यहाँ पर एगो एगो यूनिट है प्राइस फिक्सिंग यूनिट लोग का करे जा वो लोग जा करके दुम्बई में एगो प्रॉफिट दलिए जा जब तय दो प्रॉफिट हो के चाहिए एगो मैक्सिमम प्रॉफिट बोला जाला तब एगो दाम देवल जाला एक से नीचे सेकेंड जा बेचे एक से अलावा आगे एक से ज्यादा नहीं बेचे के चाहिए मॉकअप है आर एगो दाम है वो लिबेरालिजे है यानी कि देख जा कहाँ पर ही प्रमोशन बा हम सकब जा खरीदारी करे तो तीन प्रकार के दाम बा मो इसमें तो ये सब दम पहला ग्राहक लोग के बोले के चाह चाहिए सगरो दाम हो के चाहिए अब दाम नहीं बा तो हमने के चाहिए जाने के जनाई के चाहिए हमने के मंत्रालय है हमने के काम है कितना हमने के ऑफिस है यहीं से हम जा रहे जा भर्ती मोरिस हमने के काम है लेकिन अभी देख जा कितना इस सब अभियान करते हुए हमने के कितना सब सब कोई हमने के कानून के रिस्पेक्ट करत हम जा कात्र में जिस पूछो सकब जा बोले कि सगरो दमवा दालत हम जा
1: अच्छा
0: हाँ ई आवश्यकता बस आवश्यक जितना बेसिक जितना फ्री प्रीफिक्से बा हमने के मॉकअप भी बा और हमने के जन प्राइस जन लिबरलाइज़े बा सब के दाम आवश्यकता बा नहीं रहेला तो हमने के चाहिए जाने के जनावे के चाहिए बस हमने के कॉम्प्लेक्स सकअप जा करे हमने हमेशा बही ले जा एन विच सैंक हमने के हॉटलाइन है
1: 7500
0: हाँ हमने के लाली नॉर्मल फिक्स और हमने के इंटरनेट भी बा हमने के ईमेल भी सकब जा करे हमने के व्हाट्सएप भी सब सकब जा करे सब लेकिन वास्तव पहला हमने के जैसे बोल ना दाम आवश्यकता बा डाली
1: जैसे जानी ला जा सब सामान के प्री अफिशे हो रहेला इतवा तो अगर पे ये करे बखत कोनो ग्राहक से के पता चलल कि ओकर फ्री में गड़बड़ बा तो के कौन चीज चाहे ना करेगी
0: हाँ जब पे ये करत हम जा कारण पहला जैसे बोले थे सब पहला हमने के दाम हो के चाहिए दूसरा हमने के रिसीवा ले के चाहिए हमेशा कहूँ जाप से सुपया मौसे में कहूँ पची किने थे सब कुछ चीज रिसी मांगे के चाहिए और ले के चाहिए बस हाउ रिसीवा में कहा का है बोले जा ले के चाहिए रिसी और वो प्रूफ ऑफ परचेज जैसे बोले जा हाउ में दाम लिखल जाला हम में कुछ गारंटी उची रही तो डाल देवे जा हमने के जो सकेला हमने के क्रेडिट में ले लो युवा कितना डिपोजिट कर लेवा कितना बाप ये करके सब लिखल है इस कारण हमने के रेसी आवश्यकता बा
1: मान लो एगो छोटा सा खरीदारी दोनों पर एक रेसी चाहिए
0: हमने के कागज में लिखा जाए के चाहिए कितना पे कर ले हो आई होप हो के चाहिए तब हवे दमवा जन बा जैसे अब लॉचिकवा सुपर मौसम एक उदाहरण दे ला जा लेकिन सुपर मौसम में गल नहीं जा तो ऑफिशे और बा 100 रुपया हो दमवा यहाँ लाके से मिला तो 100 रुपये पे कर ले हाली हाली दरमा दे ला सर पे कर दे ला सर लेकिन रिसीवा जब लिख रहे हैं देखते हैं सर याद बा कि लॉचिकवा 100 रुपये रह हुआ लेकिन यहाँ 100 रुपये पे कर ले तो नहीं बचा पूरा चोरी होता अभी हमने के नहीं अच्छा बा हमने के तो हई रिसीवा रही तब सब एगो कॉम्प्लेंट करी हम निकल गए हम निक जाकब से देख से कहाँ पर सब एगो फोटो तो निकाल दे एगो जो जहाँ पर 100 रुपया ऑफिस आगे खाओ मैनेजरवा से बातचीत कर सकेला है कर ले वैसे लेकिन है नहीं से नहीं करे के चाहिए लेकिन हो जाला जहाँ तहाँ जे कोई एक्सेप्ट हो जाला सेकेंड जा सौजे कर दे अपन करियन से अच्छे बा नहीं तो हम निक लगे भी सकब जा बोले ई ऐसे हम निके कॉन्ट्रोमोशन जीरे का जो ऑफिसे करल गल बा आज जिन जहाँ पर काशिय में पिए करे थे वह अंतर नहीं हुई के चाहिए बराबर हुई के चाहिए इफेक्टिव हुई के चाहिए ये कारण आग्रह कही रह जा दूसरा चीज हमने के ग्राहक लोग के हमने के प्रूफ ऑफ परचेस और रिसीवा रखे के चाहिए तब सकब जा कानून के हमने के एनफोर्स करब जा सकब जा कॉन्ट्रोमोशन ले हुई जब जब कॉन्ट्रोमोशन पे कर लें से सुधार होला बस ये बोलिए सब भर सक कॉन्ट्रोमोशन के जाए पे करे फिर सक अपन काम अच्छा से कानून के आधार पर मर्यादा के रह जा तो हो हमने के कम
1: ये रेसी जो है वो बहुत बहुत जरूरी है अब ये ऐसा नहीं को प्रूफ रहेला कि सकेला कोई प्रॉब्लम चला तो वो मतलब सके बताए न तो कंज्यूमर के जो हॉटलाइन यानी कि वो लोग शिकायत दर्ज सकेला करे
0: पढ़े के चाहिए तो कुछ खरीदा भी खराबी हो गल बा लौचिकुआ में तो हवे ऐसी वाले करके जेब जा पहला कौन चीज मंगे जा बुची अपनी के जो फ्रीदा हुआ बा।

0: इसमें मांगी पहला जो खोजी जाने के हमारे लगे किन लिया हुआ कि नहीं किन लिया हुआ कौन ची बा गा कुवे बा अब हमनी के पढ़े के चाहिए कौन ची लिखल ग बाऊ में ढेर चीज नहीं कुवे है गाँव अची में हमने बोल गाँव अची में बस अब सौंस डिस्प्यूट हमेशा हम बोलते आ ले जा कि हमने के कानून बा हमने के जो बा वारंटी बोल जा गाँव अची नहीं से भी कहे हमने मोटिया में बोल जा सा गाँव अची लेकिन वारंटी लेकिन वारंटी कौन चीज है वो रिपेयर करी गारंटी में जहाँ तहाँ उन लोग सौजे कर जाओ प्लस लेकिन मोरिस में वारंटी है यानी कि जो कुछ खरीदब जाए ना जो हमने की रेगुलेशन बा जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो खरीदारी करब जा वो देसी नावा नहीं मिली तुहरा हला जाए रिपारेशन वे में जाए तब सकेला दो तीन हला हो रेपिटिशन होता हो खराबी होता तब सेकेंड जाए देवे को दूसर लॉजिक बराबर
1: मान लो कोनो खरीदारी एक जना कर लग और रेसी नहीं ले लग तब भी एगो प्रॉब्लम समस्या पर गल बा अब उस टिकायत कर दाते कौन जो
0: ऐसे सिचुएशन में हमने को भी टेंशन करा हो जाए हमने के करे के कहा से कब जा बोली हम बोली जे रेसी वहाँ नहीं दिल हुई जहाँ तहाँ नहीं देवे लेन जहाँ ट्रेडर वो तो चाहे जाए मांगे के पहला रेसी हुआ रिसीवे के आधार पर हमने सकब जा तोर नाम लेवे तोर सब एगो स्टेटमेंट ले ले जा तो सकब जा कानून एनफोर्स करे सकब जा लाकू पुसीव करे लेकिन रिसी हो के चाहिए कहाँ खरीद ली हो कौन मागाजे में आज लाकू केस विदा करे से आगे हम लोग के जाई ला जा लौकेत कही ला जा कैसे कैसे होल बा सकेला हम आप कर दिए जा एगो बेजाश होला तब सेकेंड जा और प्लस सौजे हो जाला ने तय रिपारेशन कर दियन सर दूसर चीज़ को लॉजिक दियन सर और तो जे में सेकेंड जैसे भी करे लेकिन हमी के हाउ प्रूफ ऑफ पेचेस हो के चाहिए तब तब कहा भाई जा हम के चाहिए जाए के मांगे के देर कोई नहीं खोज जहाँ तक बोले सर नहीं नहीं देवे लन जा तब परे ला हमी के दूसर इंस्टांस विदा करके जहाँ एम्बॉय वो लोग रेसी के देखे लन जा बस एम्बॉय वो लोग के अधिकार बा वो लोग सेकेंड जा रेसी वा के देखे बस ये होवे रेसी के आधार पर जितना बिक्री होला तब वो लोग के बात रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है तो एम ओ ए उल सेकेंड जा जैसी लागू करे जिनमें एनफोर्स करिए जाए जिनमें रेसीवा मिली रेसीवा मिल जाए तो हम निकल के सक बचा हमें लेकिन ये हम के बोलते आवत हैं जा जो किच करी दब जा रेसी हो के चाहिए देख रेसिया में जितना ऑफिशियल बा हवे पहिए होता कि जैसी होता कि कम होता कोनो विचार से हम के रेसी आवश्यकता
1: अब जब रेसी के बाद हम नहीं करते हैं जा अब कबो कबो रेसीवा जब फ्लो रहे लाख मुझे निमन से नहीं लो के लाओ में
0: नहीं हवे चाहिए लिजिब हो के चाहिए
1: लिजिब
0: और एगो लैंग्वेज जो समझे होला एंग्ली फ्रांसे दूसर मौदाओं में दिल से धीरे कोई नहीं समझी लेकिन हमने के चाहिए दाने के रेसी जो बा लिखे के चाहिए लौके के चाहिए निमन से नहीं लौकर था बोलो कर प्रिंटर के जितना किसी सौदे करे के चाहिए नहीं तो जहाँ तक रेसी वहाँ पाली भी होला एक फोटो कॉपी करके रखे के चाहिए फोटो निकाल दो तो सबके पोता देने मुदेल बा सब कोई के फोटो निकाल के रख है सब काम ही आवेला चीज है सब चीज रखे के चाहिए हमने के ग्राहक लोग के ही कर्तव्य बा रेसी देख रखे के चाहिए निमन से दाम देखे के चाहिए तब अपन खरीदारी करे जा
1: अच्छा कैसे एगो व्यक्ति के पता चली कि जो सामान उन लॉजिक के न जा ओ ओ दापरे नॉर्म है मतलब कैसे पता चली
0: हमने के जितना माने जाए को जुजु देखा नहीं जा और जुजुआ में ओकरे चिकेट रहेला जुजुए में एगो चिकेट बा से ए कन्फॉर्मिटी बा हमने के जो कर लाज बा और सब इंस्ट्रक्शन देखे के चाहिए आगे कितना ओकर पीछे देख बा ओकर बात में सब चीज लिखल गल है हई हम निके लगे पैकेजिंग जितना बा हमने के मंत्रालय के आधार पर गिरे ला हमने के लगे तो हमने के ही कारण बोलब जा जोन कुछ खरीदारी करब जा उ में बा कौन कौन फोमिते बा कौन ची बा और हमने के ई चाहे जाने के जितना चीज खरीदारी होला हमने के सेफ्टी प्रोडक्ट बा यानी कि कितना चीज है सब हम निकले के जाए ला जाए एम एस बी एगो एगो सर्टिफिकेट देवे ला कि कन्फर्म होल बा है सब में अच्छा बा तब रिलीज करे जा हमने के बाजार में लेकिन देखिए हमने के जितना दूसरा गाज बा हमने के जितना कितना रंज हो गल हुई हमने के बाद खरीदारी हो गल बा कोई जर गल बा कोई चीज़ खराबी हो गल बा तो जेक नहीं आवेला हमने ब्लॉके कही ला जा हमने के लेपो में वहाँ पर ही हम सब लॉजिक में कितना कितना चीज़ चला बाई में हमने के जितना हमने के ग्लोब बा हमने के एक्सेसरीज़ बा सेवे के हमने के जन बा खिलौना बा हमने के फेराई है हमने के कितना सीमा कितना कितना चीज बा हमने के जो बा सेफ्टी प्रोडक्ट में गिरेला तो हमने के चाहे जाए के MSB एगो टेस्ट होला जे पासे हो गल बा सब टेस्टवा तब जाए ला लेकिन इस जा हमने के जो बा ग्राहक लोग सुरक्षित बा मॉरिशस में कितना इतना लॉजिक जितना

0: कुछ खराबी होगा वही सब टेस्ट करके तब विदा कर जामी के बाजार में। तब जितना लॉजिक बा सोचे के चाहिए हमने के कर्तव्य बा, हमने के देश के जितना नागरिक लोग बा हमने मॉरिशस में न सबके सुरक्षित खातिर हमने सब टेस्ट करी ला जा।
1: अच्छा देखी ला जा बहुत कोई बाजार में सब्जी जिन्हा सब्जी के खरीदारी करे लंजा खरीदारी करे लंजा और कैसे उन लोग के पता चले कि जो बैलेंस से मिजिर लेवे लंजा वो बैलेंस कैलिब्रे कर गल बा कि नहीं कैसे पता चले। हमने
0: के जैसे अभी अभी इनमें कैसे अभी ले चलते रहे ला और बैलेंस जो बा ना अभी अभी जो बा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो गल बा दीक्षा दमवा दुगुनो बगल की बा वो देखेला और हमने के और अवश्य बैलेंस वो खाली जो बेचोला देखेला हमने के चाहिए पूछे के चाहिए मुन गेते हैं कुछ हम देखेला बेचार बा एन किलो लुआ थे सर आधा लीबर होता कि कितना लीबर होता है देखे के चाहिए मन से। और एगो एगो ताक रहेला एगो ताक देखे के चाहिए मेतास एगो सेले बाऊ में तब वो ताक से बाऊ लेकिन हमने के मंत्रालय में गिरेला लेकिन हमने के लीगल मेथोलॉजी बा दूसरा एगो एस्टा एगो यूनिट है उन लोग जितना ऑफिशियल बा जैसे हमने कहीं से कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर उन लोग भी बा उन लोग जालन जा है सब बैलेंस चेक कह लें जा लेकिन भर सब हमने के बैलेंस ताक से हुए के चाहे जिनमें ठगा न जाब सर बस एक लीबर रेब सर जिनमें एक लीबर हुई मिली ऐसे हो के चाहिए कहते हैं सब बोले हम देखी ला बैलेंस को घुमावा देखा सब बोले माना नहीं बा के घुमा दे बोली काहे अम्बेते करब स काहे हमने के एक बोली बर के काहे कमती देब दे के चाहे बराबर। और जितना जैन मॉडल जितना नावा आलाल बा बैलेंस दिख जाए उन लोगों के लगे बा तोरो लगे बा दमवा फीसे हो जाला हुआ कितना किलो ले ले हुआ कितना दमवा बा इन लोगों के बैलेंस भी ताक से होला
1: नीचे के मंत्रालय
0: पूछे के राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे बोला जाए हई हमने के अधिकार कितना हमने के अधिकार बा राइट टू इन्फो पहला पूछे के चाहिए जो कुछ बोलियन से नहीं माने के चाहिए पूछो कोई से इतना होता नहीं बुझाता उतना पुआ बा देखीता तो हर बार हाँ। जहाँ तहाँ हो जाला नहीं नहीं नहीं सो भाई दाल दे लेते को कोई अपन वोलोते से दुगो जस्सी दाल दे जा जिनमें जस्सी मिल जाए कोई ठग देवेला लेकिन हमने के चाहिए देखे के चाहिए कर्तव्य बा देख पूछ इतना नहीं होल बा पको भी नहीं ना होता मौके ला दो नहीं घुमा दे के बता दे तो अच्छे बा अच्छा। पूछे के चाहिए हमने के कोई नेक सबब बोले ऐसे नहीं नहीं चुपचाप नहीं रहे के चाहिए जहाँ बोले के चाहिए बोले के चाहिए पूछे के चाहिए पसी तो और पैसा से खरीदारी करते हो ना सोचे के चाहिए मन से बोलो तब खरीदारी करो।
1: आज की चर्चा इस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए हम जारी रखेंगे और जैसे कि हम आपको बताएं कि 4028085 पर आपके पास कोई सवाल हो या कोई विचार हो आप बेझिझक हमारे साथ पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल एक गीत सुनते हैं।

0: एक बार फिर आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ श्री सूरज लाल बिहारी जी हैं, कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर। जैसे कि हम बोलिए, एक जागरूक उपभोक्ता केवल ये नहीं जानता है कि क्या खरीदना है, बल्कि ये भी जानता है कि कुछ खरीदने से पहले किन बातों की जांच करनी है, और यदि उसके साथ अन्याय हो तो उसका समाधान कैसे प्राप्त किया जाए। इन सारी बातों पर हम चर्चा कर लीजिए। तो आजकल भाई सूरज बिहारी जी, आजकल देखत जात पा कि बहुत पब्लिसिटी सामान के खरीदारी खातिर करल जाता। तो कैसे एगो व्यक्ति के पता चली कि ये सही है या गलत, जो पब्लिसिटी वादा लेता।
1: पब्लिसिटी वाला जो विज्ञापन वो डलते रह जा, जिनमें वो अपन सेकेंड अपन लॉजिक बेचे। लेकिन हम लोग के चाहे देखे के चाहे निमन से, जब एगो एगो एडवर्टिजमेंट डाला चाहे, जो विज्ञापन होता ना, तो नीचे एगो डिस्क्लेमर रहे ला, कुछ कंडीशन अप्लाई, कुछ कुछ दा देवे जा। खाली हवे लाओ नहीं देखे के चाहे, इतना मैं सैकौत होता, मैं सैकौत पूसा होता, निमन से नहीं डाले जा कि मैं सैकौत रूपी कि मैं सैकौत पूसा होता, तो डाले के चाहे निमन से। अब उ लोग के अपन डालत हम जा, भ्रमित कर देवे लन जा। तब लेकिन हम जब जाए थे इसे खरीदारी करे, तब पूछे के चाहिए, हो एडवर्टिजमेंट के आधार पर, हो विज्ञापन के आधार पर हम आल हैं जा खरीदारी करे। जहाँ तहाँ का हो जाला, जब जेब तब उसे स्टोकवा फिनी हो गल बा, निकले डाले उसे जिसका एपिजमोट स्टॉक जब निकाल देवे लन जा। लेकिन इसे हमने के विज्ञापन लोग के लालवा बा, हम निकले के नहीं होला। लेकिन विज्ञापन के डल्ले वन जा, एगो कौजो बा, इतना पेयोज में बा, इतना चाहिए लॉचिकवा मिले के चाहिए। मैं लॉचिकवा फिनी होगल बा, जस्ती होगल बा। लेकिन एगो भाव से विज्ञापन वे के आधार पर गल ही जाए, एगो मिसलीडिंग हो जाए जहाँ तहाँ। तो ये हमने के सोचे कि जैसे मैं जगह हमने के कानून ने से कब्जा आप के करे, लेकिन देखे के चाहिए जो लॉचिकवा मिले था कैसे कैसे बा, सकी दूसरा चीज़ डाल दे प्लस में, दूसरा चीज फोटोवा में बोले सर नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल, फोटो एगो डाल दे बोलन जा, दमा डाल दे बन सा, लेकिन नीचे बोले सर नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल, लेकिन फोटोवा जो बा हवे लॉचिकवा नहीं मिलेगा चाहता। तो ये खातिन विज्ञापन तो डालत आओ कोनो विचार से। लेकिन हमने जब जा खरीदारी करे, तो पूछे के चाहिए जो विज्ञापन में डल्ले हवे बा कि नहीं बा। अब जहाँ तहाँ कुछ गिफ्ट मिलेला, हमने के एगो वाउचर मिल जाला, हो सब भी देता प्रोग्राम कर ले जा। लेकिन हई सब भी देखे के चाहिए ओकर कानून बा, कितना वाउचर हुआ, कितना मुआ है, 3 महीना के, 6 महीना के, नहीं सकब जा बोले कि वाउचर एक्सपीरी है, हई सब के का सब कानून बा। लेकिन हमने के विज्ञापन होता ऐसे ऐसे देख

0: चैनी सा हो मगाजे वहाँ में हो में ट्रेन पे मिसल में गई से खरीदारी करे पूछ हो लो चिकवा कि जुन दल्ले हुआ कहाँ बा हो दमवा में मिले था कि नहीं मिले था कौन ची बा एक से समाचे के चाहिए पहला लेकिन कोनो विचार से विज्ञापन देख करके ठगा जाए नहीं किसी के चाहिए जा करके पूछो लॉचिकवा धर सकेला एफ आई ए कालिते बा सकेला सस्ता बा लेकिन एफ आई ए कालिते वा निमन नहीं बा तो नहीं ले के चाहिए अपन जा धर नियमित ही कहते जहाँ तहाँ हो जाला विज्ञापन भी लेकिन जा करके देख समाचार नियमन से जो कुछ कौजिशों बा कौन ची बा मिली सकेला किन ले बा तो बोले से लिवरेजों बाद में मिली अभी नहीं आल बा बातों में बा भी आवता ऐसा मन ब एक्सेप्टे हो तब खरीदारी करे के चाहिए विज्ञापन डाल दे बच्चन से बच्चा अभी हाँ बा विज्ञापन हुआ बा लेकिन लॉचिक वा दो तीन महीना के बाद में मिली अभी बातों में बा हम डाको आल ऐसे उन्हें डाको हमने के सीए कर दे ऐसा पीए कर दे ऐसा आतान करते ऐसा अब नहीं मिला था लॉचिक वा तो तू एक्सेप्ट हुई लोग ले की ऐसा सोचे के चाहिए नहीं मन से अभी कहते हैं खाली जब खराबी हो गल बा नहीं तो कुछ रंज हो गल बा तब निकले के नहीं सुने करा अब ते सक बजा एगो असहमल हमने के हम निकले के सक बजा सुने करे कौन ची है सब में जाते सब खरीदाए का बोलते हो जाए तू लोग के लोपिनो का बाई में कैसे कैसे बा कानून का बोलता है ऐसा समाज देखे तब कुछ खरीदा
1: और रही बात कोनो कोनो सुपर मार्केट में जब हमने चालन जा तो कैसे हमने जन बजे जैसे सफाई लीजन बा यानी कि जो शेल्स पर रखल डाला और उसका पैकेजिंग में कैसे उसका सेफ्टी तक बच जाने
0: नहीं तो हमने के अधिकार है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट जब से जाते थे सुपर मार्केट में साफ सुथरा रहे के चाहिए एगो मिनिमम हो के चाहिए सब जाते हुआ ऐसे मुख रख लेबा हुआ पर पानी पास गिगल हो तो नहीं अच्छा भाई सब हमने के बात वाह ह सकब जा बोले तो सफा नहीं बानी मन से हमने के डिब्बा जुन बा जुन तो चुन काबोसे नहीं लेके चाहिए सब नहीं लेके चाहिए और हमने के शेल्फ में नहीं डाले के चाहिए उतारे के चाहिए सब में निमन से हमने के एगो अधिकार हमने के लालवा बा राइट टू एन हेल्दी एनवायरमेंट हो बा हमने के लालवा एगो सुपर मार्केट में कोनो चीज सफाई से हो के चाहिए और कालितेवा मैंने सकब जा जाइ तो मुनिसला सौते में जाला सानिते लोग देखे लन जा लेकिन हमने एगो सफाई सकब जा देखे कि सफा बा कि नहीं ये हमने के अधिकार है और सकब जा बोले लिपा खूब सफा करे के चाहिए और बेचे वाला भी सफा करके निमन से गाते हो तो बेचत हो तो खरीदारी करे वाला आए आथाके हो निमन से आकर्षण हो अब सफा नहीं रख ले हुआ तो के जाए खरीदारी
1: कोई नहीं जाए
0: नहीं खरी बस सबको अपन अपन अपन लासौते के अपन जस्ती देखी ले जा ख्याल रखी ले जा इस कारण सफाई अपने सके हो के चाहिए एगो मिनिमम बा चाहिए हमने के हेल्दी एनवायरमेंट लेकिन कालिते पोजुआ में उ निश्चय लासौते जाए लेकिन हम लोग के चाहिए एगो हेल्दी यानी कि एनवायरमेंट हो के चाहिए निमन से सफा साफ सुथरा कर काबू से वो सब नहीं लेके चाहिए
1: सकेला दर्ज करी
0: हाँ सकब जा अब कौन चीज सकब जा कहीं जो एक्सपायरी प्रोडक्ट बा
1: बिल्कुल
0: हमने के शेल्फ में नहीं एक्सपोजी है इस कारण खोले से आगे को सुपर मॉल से काम होला सब जितना गयों के अधिकार बा लोग जाके देखे करें सर जितना एक्सपायरी प्रोडक्ट बा उनमें भी दो प्रकार के है एगो एक्सपायरी प्रोडक्ट और बेस्ट बिफोर प्रोडक्ट देख चक मैं सुबह मौसम जब जाप से ना तो जब आगे बगल बा प्रमोशन में बा आकर्षण कर दे बेलन जा लेकिन जाके कि देखे के चाहिए उठावो देखो कर एक्सपायरी डेट है बेस्ट बिफोर ही तो सकब जा ले और सोचे के चाहिए और लेते बाल में एक महीना में सकब जैसे भी कर दी तो ले लो अच्छा रही आधा दाम तू राज में लेकिन देखब नहीं सकब जैसे भी करे काहे लेब जाके के पीछे देख जो निमन बा और जेकर गाँवी जो जो एक्सपायरी तैसे लंबा बा ऐ सब खरीदारी करे के चाहिए
1: और ऑनलाइन शॉपिंग भी आजकल ये काफ़ी प्रधानता में बा प्रमुख है तो जितना कोई हमने के देखता सुनता वो लोग के कौन चीज बोल स्थिति में
0: ऑनलाइन के जो बा ना ये हमेशा बोलते अभी अभी काम होता हमने के कम होते बा ये लालवा ई कॉमर्स एक्ट होता अभी हमी के बस कि मॉरिशस में लोकल भी बा ऑनलाइन और देश भी परदेश से भी आने लग जा ये कारण हमें कहते सुन कठिनाई हो जाता लेकिन ऑनलाइन के बारे में बोलब जा जो हिया पर जो लोकल होता ऑनलाइन वो लोग के बोले के चाहिए जब लॉचिकवा आन दिलन जा तब पे ये करे के चाहिए इस सकब जा बोले अब हमने के स्वाबा ने सकब जा माना करे कि नहीं खरी के चाहिए ऑनलाइन ढेर कोई के ऑनलाइन अपन सर्विस जिन में अच्छा से निभावत हमन जा एगो लॉचिक पे कर दे नहीं जा और लिवरेजों भी दो तीन दिन में दे देवत हमन जा अच्छा बा लेकिन खरीदारी करे से पहले को पाई जो ऑनलाइन बाबा पूछे के चाहिए कमार लुक से मैं माफ टू माफ जैसे

0: कोई लजा पूछ समाचार मुझ आस्ते हम आपसे लिखने खरीदारी कर ले हाँ मुझ आस्ते खरीदे कर नहीं तो अच्छा बा लॉजिक आन देवे लंजा खरीदे भी बा सब दाम भी अच्छा बा और सब जोन बा ऐसे सब कंपनी में सकबत जा ले भी ये बोल रहे थे घरेलू के यानी मुर्शस्वी के अंदर में जोन होता है लोकल ऑनलाइन ये सकबत जा करे लेकिन ज्यादा जितना पे जैसे पे ऑन डिलीवरी जैसे लिवरेजन होता मिला था तब पे करिए देर कोई पे कर दे आतान हुई थी बा दो तीन महीना हो गल बा लॉजिक बा नहीं मिला बा
1: तो ई में अगर वो लोग की जो शिकायत
0: हाँ, शिकायत वा सकें जा ला पुलिस पे जाए
1: की पुलिस के आप लोग के नहीं
0: वो तो चोरी कर दिया पुलिस वा लॉजिक वा नहीं दिया था जे लॉजिकवा दे दे ले बा लॉजिकवा में कुछ खराबी हो गल बा सब तब सकल जाए हम निकल गया लेकिन उ में भी हो ऑनलाइन के चाहे एगो बीहो हो के चाहे एगो ट्रेड प्रेमिसस हो के चाहे घरेलू से होता घर से करे तब ऑनलाइन नहीं सकब जाए हमनी के पास बा हमनी के जुन बा एगो कारज बा हमनी के लगे सकब जा जहाँ पर बुटीक बेचाव होता जहाँ ट्रेड प्रेमिसस सकब जा जाए जहाँ के रेस्टोरों में और लाकुजिन में सकब से जाए रेस्पेक्ट हुई के चाहिए काप डाले के चाहिए सब डाल लेकिन सकब जा बुटीक में जाए सुपर मौसम में जाए बाजार में जाए लाकुजिन में सकब जा जावे लेकिन घर में नहीं सकब जा जाए ई नहीं सकब है उनके तो रिजाशन नहीं बा ई कारण वैसा जो ऑनलाइन होता जेकर ट्रेड प्रेमिसस बा ओकर लगे ज्यादा सकबा जा ऑनलाइन करे कुछ खराबी हो गल हो कुछ कंडीशन नहीं होता तो हम निकल गए कॉम्पेट करब तो सकब जाए बिहुआ में जाए लेकिन कोई घर में नहीं सके
1: लेकिन एक
0: ऑनलाइन जो खरीदारी होता इस समाचे के चाहिए तो अरे गो बात के प्रेमिसस एगो बेचे वाला गो स्थान बा जे नई बात है सोचे के चाहिए तो लालवा हम निकने सकब जाए फोर्स करी ई लोकल के ऑनलाइन और जिन प्रदेश के ऑनलाइन बा उन लोग के चाहिए देखे के रिटर्न पॉलिसी कितना बा सकब जा घुमावे कैसे बा कौन चीज पे होता अभी एगो कानून लागू कर बाए मोए डाल दे कौन जितना लॉजिक आना छप जा कितना फीस पे करे के बाद वैसे ढेर चीज जो कानून के आधार पर नहीं आने के चाहिए मंगा दे जा तो एम ओ से वे ये करे थे जा कितना कितना लॉजिक जितना मोगिस में ओकर लालवा बा आवे के सकब जा आयात करे तो हो सब लॉजिक आयात
1: तो ये बहुत जरूरी है जांच पड़ताल करे के और तब या वारंटी और गारंटी पर बतियाला तो ये में कौन डिफरेंस बात अंतर बात में
0: हमने के वारंटी जितना बा हमने के रेगुलेशन वारंटी पर बातचीत जैसी कही ला जा कारण पर जितना कुछ खरीदारी कर दे ला जा तो पहला वो जाए रिपारे भी हुई नावा नहीं मिली हमने के हमेशा ही प्रश्न पूछल जाला निक लगे कोनो चीज है कोई खरीदारी कर ले जा खराबी हो गल बा हमरा नावा काहे नहीं मिली बस एक दो दिन से भी कर ले जाए नावा दे के चाहिए तो हमने के कानून में वारंटी बोला जाला वारंटी ई है जो कुछ खरीदारी कर सब और लिखल है एगो पैद में कितना कागज बा हो सब लिखल है सकब जा के एक बरिस में वारंटी बा कौन चीज कुवे करी कौन चीज रिपाए करी कौन चीज पे ट्रांसपोर्ट पे है कि नहीं पे करे है इंटरवेंशन नहीं है कि कैसे कैसे है हमने के और गारंटी में वो जैसे होला वो दूसर दे दे प्लस दूसर बा हमने के जस्ती वारंटी पर है जहाँ तक मिली हमने के गाँव चुका हो कब हो जब एगो एगो एगो प्रॉब्लम वा पेसिस्ते होता हवे प्रॉब्लम वा पेसिस्ते होता दू टू होला रिपेरेशन बा हवे खराबी माने जाए एगो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा ब्लड हमने के जो बाजवे लॉजिक वा निमन नहीं बा तब एगो दूसर लॉजिक मिली ई तब होला लेकिन ज्यादा वारंटी जस्ती अच्छा बा कोनो चीज जब हमने के खराबी हो जाए ना तो हौ लॉजिक वाले करके हमने के वारंटी वाले करके ना जाए के चाहिए हौ जहाँ पर खरीदारी कर लें सर तो वो जा करके एक हमने के 10 दिन एगो अवधि देवल जाला पहला 10 दिन ओके दे के चाहिए लेते हम आगे पारे करे के कुछ खराबी हो गल बा कुछ हमने के मुझे कुछ करे के चाहिए मैं 10 दिन पहला तब वो बोली कि 10 दिन में मैंने होता पीएसवा नहीं बा हियाँ ऐसे एक महीना में 3 महीना से कब जा दे फिर से entre-temps hop de goût de ça des barabar on loan jese boi la ja sak baja sevi kare hai sab lalwa hamni ke e warranty ke aadhar par hai sab kanun hamni ke jitna logic jo kharab bhi ho jala na wo me hamni ke sakab ja protege kare thai sa bas ik khareed le ho ego logic अभी कहते हैं बोई जाए जितना चीज खरीदारी करब से ना ओब्लिगेटो नहीं है वारंटी लेकिन वो लोग देवे ना जा हमने के पूछे के चाहिए जहाँ तहाँ जो लॉजिक में जस्ती पूछे के चाहिए बा गाँवची में मोटिया में बोले गाँवची से मैं बा गाँवची बा इमें हाँ बा तब खरीदारी कर पसी ऑफ द सेल्स में का हो बा हमने के गाँवची बा सुवे कुवे करता है नहीं एगो लॉजिक खरीदारी हो गल बा वो में गाँवची वारंटी नहीं बा वारंटी नहीं बा तो खराब हो जाए तो कैसे हो जाए हमने के खराब हो जाए
1: अभी हम लोग के यूनिट में कैसन कैसन शिकायत दर्ज होता

0: हाँ हमने के लॉजिक जैसे हम पहला प्रश्न जो बोलनी ना बोझे गो पोताब के लिए खरीदारी होल बा तब मेरे के कुछ हो गल बा तब बोले सर नावा दी के चाहिए बोले सर हवे बोले सर एक दिन से भी करें दो दिन तक का ऐसे हो तो हमने के लालवा ई बोल गल बा जाए रिपारे भी करे वो कौन थे जब रिपारे होता ना सब वेरीफाई करता फिर से मैंने जाए फिर से दूसरा नावा भी मिलता आठ बढ़िया से वो वेरीफाई कर के निमन से लपारे वो सब डाल के निमन तब देवा थे जा जस्ट ही अच्छा बा और जितना जब ले वारंटी हुआ में बा कुछ चीज रही तो निश्चित रहे के चाहिए जाकर के छोड़ो बनाइए जा जस्ती ले होता है वो दूसरा ले अब जे निमन से कमवा नहीं करता तब हमने एक लगे शिकायत करे के चाहिए है सब शिकायत इस प्रकार के हमने के दर्ज होला शिकायत आर इस हमने के शिकायत जो लिवरेजो जो बोल दे बोला जाए एगो एगो एवधि है वो जिजू कैजू में मैक्सिमम हमने के दे दे के चाहिए लॉजिक वहाँ लिवरेजो पे ये कर दे चाहे रखे के चाहिए अब जहाँ तहाँ का होला हमारे घरवा नहीं पारे होल बा बोले अब सर रख तोर लगे उम्र से सुफावा नहीं पारे उबला घर हुआ तीन महीना दो महीना हो जाला तब वो कहाँ रखी तब एगो फीस हुआ पी के हो जाला जहाँ तहाँ तो वो रखे के स्टोरेज फी बोले से ना इतना समय के तब तो ये सब नहीं बोले गल बा आगे तो तू कहाँ रख ला इतना दो तीन महीना प्रोविजन कर दे के चाहत बना दे अपन कहाँ पर सुफा रख तब से अभी पारे नहीं हुई बार तोहरे लगे रख सके रख दे एक महीना से जस्ती बोली तो ब्लॉके नहीं करे तो प्लस तब एगो पे करे के चाहिए जहाँ तहाँ सब इस सब लिखा जाए के फरिया दे के जाए निमन से एना फीस आप ये कुछ बा पे करे के बा कि नहीं सक ब रखे तब बाद में बोल दी पे करे के बाद तब का करब सर तो सोचे के चाहिए निमन से जो कुछ खरीदारी होता अपन ले ले के चाहिए और विवेजों खरीदलों के भी जो बेचे वाला भी मैक्सिमम दे दे के चाहिए समय में और ये हम लोग के भी रात्रि में सब विवेजों नहीं लेके चाहिए दिन के देख लौची ओकर कुलिया जो ले ले हवे कुलिया मिलल बा सब वेरीफाई कर निमन से तब ले बा एक जना का कर ले वन जा मॉब किन ले वन जा मॉब कितना मॉब है घर पूरा के मॉब ने किन ले वन जा मॉबल किन ले वन जा तब एक काहे के नहीं सके जा चेक करे ना कैसे बॉल खोला जाए से लेकिन कोशिशों करे के चाहिए अब जब होता कोनो टूटल रही तो का हुई
1: अच्छा
0: एगो कोशिशों लिख द कुछ कागज में सीए करा द एक दू गो बात खराबी हो दे एक बात कितना महंगा बात निकाले थे से कितना बात खराब बात जहाँ तहाँ हो जाला तो हमने के कुछ कोशिशों नहीं कर ले कुछ नहीं बोल ले अब बोल हमने के कुछ करे के तो वहाँ पर का हो तू एगो कागज सीए कर दे रिसीव गुड इन गुड कंडीशन सब गुड कंडीशन में सीए कर दे बोले के चाहे कोने मिशे कनुपुस हमने के जब सेवी हो जा तब निकाले थे सब कुछ खराबी हो तो का हुई तब जहाँ तहाँ हृदय लोग बोल देवेला कुछ रही तब बोलिए वो पुविनी हमने देख सक कैसे रही लेकिन अब नहीं समाच ले हो नहीं कोचो कर ले हो कुछो तब नहीं
1: और कबो कबो ऐसे भी मिलल जाला डिलीवरी आकर करे लन जाए और कोई नहीं बाघ हरी लेकिन आके डिलीवरी कर देवे लन सको
0: तो नहीं लेके चाहिए सुने कर एगो बुजुर्ग बाघरे बोल सर पोसा पोता बला ऊ तो का जानी पोता सीएम पुसु डला देनी सर तीतो नहीं लेके चाहिए बोले के चाहिए जब ले नहीं हव तू नहीं कोई कमर लॉजिक नहीं लेके चाहिए खराबी हो जाला और जहाँ था हमने के कोथा भी बा एगो कोथा कर ले सर एगो काम ऐसे करे के बा इतना दिन में करे के चाहिए कोथा भी हमने लेकिन नहीं है बस कोथा तू आर हव थ्री दवा में कर ले हुई बा तब चाहिए एगो लम दिलवा दिखे के चाहिए कैसे कैसे बा अरे तो रिफंड के भी हमने के एस्टेंस लगे नहीं हमने कुछ सर एस्टेंस करे ला उस मॉल्स क्लेम ट्राइब्यूनल में वो जाकर के सग जा हुआ पर रिफंड के बारे में पैसा मिल हमने पैसा के बारे में नहीं देखी ला जा हमने के वारंटी बा गारंटी बा दाम नहीं बा हमने के एक्सपायरी डेट देखी ला जा उतना पैकेजिंगवा में देखी ला जाए ग्रेजों लिखे के चाहिए और एक्सपायरी डेट लिखे के चाहिए उसमें कौन कंट्री ऑफ ओरिजिन बा है सब हमने के लगे है
1: और जब एक्सपायर्ड वा देखी ला जाते हो पोसे जवा कैसे बा अब आप लोग की
0: हाँ,
1: यहाँ से
0: हमने के ई ई दे बाद हमने के ट्रेडर बेचे होला एक्सपायरी नहीं डाले के चाहिए हमने के जाके जब जो होला एक्सपायरी ना तो हो ट्रेडर वा के नहीं अधिकार नहीं बाई सब निकाल दे के चाहिए बस ये हमने के लगे जब देख चेके कर चाहिए सर एक्सपायरी बा तो गुड्स जब बेचा था वन जा निमन नहीं बा मैम कितनों बोली ना यहाँ को लिखा गल बाऊ में अब जहाँ तक एक्सपायरी नहीं लॉकल आनी मन से तो नहीं लेके चाहिए सब लॉजिक
1: और मानला
0: पैकेजिंग जो बात जितना चीज पैकेजिंग हम निक लगे है और सब लॉजिक वा हो के चाहिए ओकर दाम प्रोजेक्शन ओकर एक्सपायरी डेट ओकर कंट्री ऑफ ओरिजिन एग्रेजो सब हो के चाहिए और हमने के जिम्मेदारी है खरीदारी करते समय सब चेके करे के चाहिए नहीं बा तमिक लगे बोली
1: तो आपके यूनिट जब चाल छेके करे मानना एक एक गो जगह

0: हमेशा वो गलत करेला से पा एक्सपायरी चीज सामान रखे लन जाते आप लोग के कौन चीज
1: नहीं तो हमने के कंट्रोल मोशन ले दे रहे हैं हमने के फिक्स में डालती हुई है पर मेरे दाम ने डबल तो 5000 है पर लॉजिक अब मोटे होला 5000 10000 आरे को गुड्स नहीं मैक्सिमम मार्कअप नहीं बेचता कुछ नहीं है तो जहाँ तहाँ जो हमने के एक्सपायरी के नहीं है हमने के सकब जाए कंट्रोल मोशन ले लिए आर रिपीटे हुए होता ऐसे नहीं है हमने जाइला जा अब जो आग्रह करते हैं जा जितना लोग ग्राहक लोग बा जितना कुछ चीज नहीं अच्छा है बुझाता हमने कहे सो नहीं करा सब नमो नहीं बोला खाली हमने की जानकारी बोल देव कौन बुटीक का कहाँ परी है कौन लौंदवा है हमने जाकर के अपन काम करब जा हमने के जितना कानून बा सकब जा अप्लाई करे कुछ हो रही को तो मोशो के नहीं तो उन लोगों के भी जागरूकता कही ले जा जिकाशो दे ले जा हमने की त्रेदा लोग की कैसे करे के चाहिए कहाँ पर दमो चिके करे के चाहिए कौन दाम में चाहिए बेचे के है सब बोल दे ले जा जब नहीं करे थे जा तब धरा दे ले जा कागज जा पे कर तब उनको सुधार होला ना
0: तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन यूनिट कैसे एक व्यक्ति के सकेला संपर्क रखे के
1: हाँ हमने लगे सकब जा हमने के ब्यूरो ए बैन है सिकम तावा ए बैन सबका जा आवे माना नहीं बा आव हमने के शिकायत सकब करे कुछ सलाह बा एडवाइस बा हमने सकब जा देवे हमने के पहला हॉटलाइन बा N85 94 ऐसे हो खाली है N85 हमने के नंबरो लाइन फिक्स 460-2500 हमने के ईमेल है consumerpu@govmu.org और व्हाट्सएप नंबर भी बा हमने के 5942888888 ऐसा में सगब जा संपर्क करे अरे नहीं सब होता हमने के हर क्षेत्र में बा हमने के सर्कंस्क्रिप्शन में दुगो ब्यूरो काब है काब ऑर्गेनाइजर बा हुआ परी काब ऑफिस हो जो परी जा करके सगब जा
0: कॉम्प्लेन
1: जा करके हो जा परी एगो शिकायत सगब जब बोले समाच तो हमने के लगे विदा करिए हमने के लिए वक्त लेकिन जो तुहर संपर्क करे के तुहर निमोगो भी देगे चाहिए जो कुछ कुछ सलाह खुजे थे हुआ कुछ कॉम्प्लेट कर ले हुआ तुहर निमो अच्छा निमो दिया तब जा कुछ तुहर से बाद में बातचीत हो जाए
0: तो आज की चर्चा से हमने समझने की कोशिश की कि कंज्यूमर होना केवल सामान खरीदना नहीं बल्कि अपने अधिकारों जिम्मेदारियों और विकल्पों के बारे में जागरूक होना भी है तो एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बेहतर निर्णय ले सकता है गलत प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है आज के हमारे अतिथि श्री सूरज लाल बिहारी जी की इन सारी जानकारियों के लिए दिल से गहराइयों से धन्यवाद देना चाहेंगे और जितने लोगों ने हमारा साथ दिया उन लोगों को भी धन्यवाद और साथ में यूसुफ दीपशिखा और शीतल के निर्देशन में ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा गया बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करती इस प्रोग्राम से आप लोगों ने अवश्य लाभ उठाया होगा फिर मिलेंगे नमस्कार

0: आइए सुनते हैं समाचार रजनी के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। मॉरिशस के लिए फ्रांस के नए राजदूत अलेक्सिस लॉये ने आज शाम प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ शिष्टाचार के नाते मुलाकात की। इस पहली मुलाकात की बदौलत दोनों देशों के बीच व्याप्त बेहतरीन संबंधों के बारे में चर्चा करने का मौका मिला। साथ में शिक्षा के क्षेत्र में नई सहयोग संभावनाओं के बारे में भी बातचीत की गई। शिक्षा मंत्री माहेन गंगा प्रसाद ने पिछले मंगलवार 22 सितंबर को सिटीजन एडवाइस ब्यूरो दफ्तर में पेश आए हादसे के शिकार होने की बात का खंडन किया है। आज सुबह फिनिक्स स्थित शिक्षा मंत्रालय की सीट पर प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने इस खबर को फेक न्यूज बताया और उन्होंने इस झूठी खबर के लिए जिम्मेदार लोगों को डीप फेक

की पिछले हफ्ते में सीएबी के लिए कोई दफ्तर नहीं। मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने इस बात का भी ऐलान किया कि वे कानूनी कदम उठाने का इरादा रखते हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की ओर से जब्त गाड़ियों में उपकरणों की चोरी की शिकायत किए जाने के बाद एक पुलिस जांच की जा रही है। एफसीसी के वीडियो सर्वेलेंस कैमरा के दृश्यों को मुका सीआईडी द्वारा सुरक्षित रखा गया है और इन्हें देखा जाएगा। एफसीसी के एक अफसर की तरफ से कल मोका पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज की गई कि शनिवार 19 सितंबर 2026 को 1 बजे और बुधवार 23 सितंबर 2026 को 11:30 के बीच जब्त 9 गाड़ियों में से कई रेडियो उपकरण एवं स्पीकर चुराए गए हैं। इन गाड़ियों को रेजवी में एफसीसी के प्रांगण में रखा गया था। समझा जाता है कि गाड़ियों के अंदर जाने के लिए दरवाजों को तोड़ दिया गया। चोरी के सामानों की लागत के बारे में पता नहीं। ज्ञात रहे कि इलाके में वीडियो सर्वेलेंस कैमरा है। एक निजी सुरक्षा कंपनी के एक एजेंट 24 घंटे गश्त लगाते हैं और साथ ही एफसीसी के द्वार पर ही पुलिसकर्मी तैनात है। दुनिया में जहां बहुत से देश लोकतंत्र की दृष्टि से पिछड़ रहे हैं, वहीं मॉरिशस आगे है। गैर अंतर सरकारी संगठन इंटरनेशनल आइडिया ने इस साल की अपनी रिपोर्ट में ये बात कही। 172 देशों को लेकर जांच की गई, मॉरिशस अभी भी टॉप 50 में शामिल। और विदेशी समाचारों में इथियोपिया की सरकार और उत्तरी टिग्रे इलाके पर अधिकार जमाने वाली पार्टी एक दूसरे पर पहले हमला शुरू करने के आरोप लगा रही हैं। इससे फिर से भारी लड़ाई होने का डर मंडरा रहा है। संक्षिप्त समाचार ये बस समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार। Your news on NBC Play.

सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून, सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, दो घंटों का सुरीला सफर बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां बेल होस सीनियर सिटीजन एसोसिएशन इस खूबसूरत लाजवाब सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 25th September, दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर फॉलो भी कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 25 सितंबर को फ्रॉम नून टू 2 PM बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे

0: वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। 4:13 हो चुके हैं और आज का दिन आप सबका कैसा रहा। मुझे पूरी उम्मीद है आज आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। जो भी थोड़ा सा बचा है टाइम, बस थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और कई लोग इस समय जो घर पर हमें सुन रहे हैं, उनको तो हम यही कहेंगे कि तो आप बहुत लकी हैं, आपको इतने सारे गाने सुनने को मिल रहेंगे। पर जो इस समय काम पर भी हैं और थोड़े से साइड साइड में से गाने सुन रहे हैं, उन सब के लिए इतना ही कहेंगे, बस थोड़ी देर और वेट कीजिए, बस घर पहुंच ही जाएंगे और उसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा रेस्ट करने का। इस समय आपका साथ दे रही हूँ मैं RM3 पर पूनम, और ये टाइम है आप सबका जो कि है 90s के गाने जो कि सीधा जुड़ते हैं दिल से, और दिल से बस इतनी आवाज़ आती है कि ये गाने चलते रहें और कभी ना रुकें, क्योंकि हम सब के कुछ खास दिल के कोने में ये गाने बसते हैं, हमारी कुछ यादों में बसते हैं। तो इंजॉय कीजिए अपने गानों को और साथ में रहिए, हम तो आपके साथ ही हैं। ये है गाना आप सबके लिए।
1: RM3 Radio.

0: faces everywhere, everywhere, everywhere.
1: बचके बचके बचके बचके बचके बचके बचके बचके बचके बचके हकीकत क्या है जानना है जरूरी। रखते हुए चेहरों से दूरी बहुत सी है यहाँ सूरतपुरी। मुख में राम बगल में छुरी, कर लेने दो मुझे बात मेरी पूरी वरना जिंदगी रह जाएगी अधूरी।

4:19 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं दिल से मिले दिल प्रोग्राम के साथ और इस समय आपका साथ दे रही है पूनम। आपको याद है अलीशा चिनॉय और बाली ब्रह्म भट्ट का ही गाना आप सुन रहे थे और इस टाइम में जो मूड हुआ करता था ना, जिस तरीके से हमारे दोस्त साथ जुड़ते थे स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर और सब वो गाने बजते थे और हम डांस कर रहे होते थे, जो स्टाइल हुआ करता था, ड्रेसिंग सेंस हमारी सबकी ज़ीरो ही थी उस समय। मुझे तो नहीं लगता कि हमें इतना ज़्यादा कुछ पता था, पर फिर भी कई बार हम उम्मीद करते थे कि हम अच्छे लग रहे हैं और हम कॉपी करते थे हॉलीवुड मूवीज़ को, बॉलीवुड मूवीज़ भी उन्हीं को ही कॉपी कर रही थी उस समय, पर फिर भी हमने कई बार सोचा कि चलो भाई ये जो टाइम है ये हमारा है और हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। पर आज की डेट में अगर हम वही ओल्ड मूवीज़ में स्टाइल देखें या हम अपनी पिक्चर्स देखें या उस ज़माने की हम अपनी वीडियोज़ देखें, कोई रिकॉर्ड है किसी के पास किसी वेडिंग की, तो हमें लगेगा अरे हम क्या लग रहे थे, ये अच्छे नहीं लग रहे थे। अगर बच्चे देखें तो भी अजीब सा लगता है, बट आप बिलीव मी वो जो टाइम था ना वो हमने इतना अच्छा गुजारा है और जिन्होंने भी उस समय को देखा हुआ है ना उनको एहसास होता होगा कि भाई ये दिन वापस आ जाए और वो गाने वापस आ जाए, वो दिन यादें लोग दोस्त सब कुछ वापस जुड़ता चला जाए। तो पर क्या करें, वापस तो नहीं आता है, हमें आगे बढ़ना है। पर इन्जॉय कीजिए गानों को, बहुत ही प्यारा सा गाना है जुड़वा मूवी का, आपको पसंद आएगा। अनु मलिक और पूर्णिमा ने इसको गाया था, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, बहुत ही अच्छा गाना है, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: चार बजकर 26 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ। इसमें आपको याद है 90s के टाइम में जब मूवीज़ आया करती थी और बस मम्मा पापा कहीं सामने बैठे होते थे, बड़े बुज़ुर्ग बैठे होते थे, तो हमें बहुत डर लगता था, बहुत शर्म सी आती थी कोई ऐसा गाना या ऐसा कोई सीन चल जाए। और उस ज़माने में ऐसे कोई इतना वो तो नहीं होता था, पर फिर भी छोटा सा भी एक सीन आता था ना, हम तो इधर से उधर भाग रहे होते थे और शर्मा रहे होते थे कि अरे कहीं हमारे को कोई देख ना ले कि हम ऐसा कुछ देख रहे हैं। बट फिर धीरे धीरे हमें एहसास हुआ कि ये सिर्फ मूवीज़ हैं, इसमें इतनी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। और उसके बाद जब हमें कोई पसंद आता था या किसी के लिए कोई अलग फीलिंग्स जाग जाती थी, तो हम सोचते थे अरे सच में इतना प्यार, कितना प्यार होता है ज़िंदगी में और हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमको तो सबको डांट फटकार ही मिलती थी मम्मा पापा से, तो वो बोलते थे ये नहीं किया, वो नहीं किया पढ़ाई। फिर एकदम से अट्रैक्शन होता था और एहसास होता था अरे वो जो दूसरा इंसान है उस इंसान का भी तो सिचुएशन ऐसी है। बट पर हमें जब एक प्यार हो जाता ना किसी से, तो वो फीलिंग्स अपने आप पता ही ना जाने किसी के लिए कैसे आ जाती है और एहसास होता है कि हाँ हमारे में भी दिल है। और जब दिल हो और अकेले हो और वो एहसास जाग जाता है, और उसी टाइम में जब कुमार सानू और अलका याग्निक आए और उन्होंने एक अपने गानों का अलग सफ़र शुरू किया और हम लोगों ने एहसास किया सच में प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है और सच में प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ज़िंदगी के लिए। तो चलिए उसी मूवी से अकेले हम अकेले तो मूवी से एक प्यारा सा गाना है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। और जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। 5250620 पर आप मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं आपके दिल की कोई बात, तो अगर हमें लगेगी कि बहुत ही खास और स्पेसिफिक है किसी के लिए तो हम ज़रूर उसके मैसेज पढ़ेंगे। इस वाले प्रोग्राम में हम मैसेजेस कम लेते हैं और फिर भी कोई दिल की बात होगी तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, इन्जॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को।
1: RM3 Radio.

0: 4:35 हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम दिल से मिले दिल के साथ में। और ये तो सच बात है, जब दिल मिल जाते हैं तो फिर और चीज़ों की टेंशन कहाँ रहती है। आपको याद है कि एक टाइम ऐसा आया था जब हमें एहसास हो रहा था कि यार ये जो 90s के गाने हैं ना सुपर्ब हैं, और आज भी हमें मतलब हम ये मानते हैं, इसका इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है कि 90s के गानों का एक ऑरा अलग ही था, सिंगर्स अलग थे, उन्होंने हमें एक डिफरेंट सोचना सिखाया। और पता है कंप्यूटर्स आ गए थे, लैपटॉप्स तो नहीं आए थे बट फ़ोन्स भी उस टाइम तक नहीं आए थे, मतलब घर के ही फ़ोन हुआ करते थे। बट जब किसी की रिंग बजती थी ना और एहसास होता था किसी अपने ने किया, और मम्मी पापा कोई फ़ोन उठा लेता था तो दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती थी और एहसास होता था ये मत फ़ोन कर दे इस टाइम, मम्मा है पापा है। और फिर भी हम ये सोचते थे कि नहीं नहीं थोड़ी देर बाद आएगा। तो ये टाइम जो है अलग ही अनोखा था, और ये जो वाइब थी उस ज़माने की बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय एक मूवी आई थी आपको याद है बॉम्बे, और बॉम्बे में जहाँ पे चित्रा जी ने एक सॉन्ग गाया था कहना ही क्या, क्या बात है, ये गाना इतना दिल के करीब था ना सभी के और सबकी जान निकल जाती थी। चलिए इन्जॉय करते हैं इस गाने को और साथ में आपके साथ जुड़ते हैं आपके मैसेजेस के साथ में 5250620 पर। आपका इंतज़ार है, आपके मैसेज का इंतज़ार है, हम तो यही कहेंगे प्लीज़ आपके दिल में अगर कोई मैसेज ऐसा है किसी अपने के लिए तो ज़रूर भेजिएगा। तब तक इन्जॉय कीजिए इस गाने को।
1: RM3 Radio.

4:42 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिल से मिले दिल के साथ। आपको याद है कि एक ऐसे सिंगर भी हैं बॉलीवुड में थे कह सकते हैं अभी तो, जिनको मतलब दिखता नहीं था पर उनकी आवाज़, जहाँ पर उन्होंने रामायण के लिए बहुत सारे गाने गाए, बॉलीवुड के लिए बहुत सारे गाने गाए और बॉलीवुड में जब भी उन्होंने गाया ना, उन्होंने पता नहीं जैसे दिल ही खोल दिया हो और सबको एहसास दिलाया कि जब गाया जाता है या बोला जाता है उसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन दिमाग के साथ में और आपकी आवाज़ के साथ में दिल का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप किसी से कनेक्ट कर पाते हैं। और आप देखिए जितने भी सिंगर्स हैं उनके गाने हम क्यों इतनी बार सुनते हैं या हर बार जब भी सुनते हैं ऐसा लगता है कि अरे आज तो माहौल बदल गया, आज तो मौसम बन गया, क्योंकि हमने वो जो फीलिंग है उस टाइम की बनाई हुई एनर्जी, चाहे वो राइटर्स ने बनाई हो, सिंगर्स ने बनाई हो, एक्टर्स ने बनाई हो, पूरी मूवी की स्क्रिप्ट ने बनाई हो, कितना अच्छा लगता है वो टाइम को कहते हैं ना कि फिर से दोबारा से जीना, जब हम उस चीज़ को जीते हैं दोबारा से तो एहसास होता है कि हाँ भाई वो गाने और वो कहानियाँ कुछ अलग ही हुआ करती थी। आपको याद है सलमा पे दिल आ गया एक मूवी हुआ करती थी, उसके अंदर रविंद्र जैन और अलका याग्निक ने एक बहुत ही प्यारा गाना गाया था। चलिए इन्जॉय करते हैं इस गाने को और आपको इतना ही कहेंगे, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो धीरे चलाइए, क्या टेंशन है, घर पहुँच ही जाना है, बिल्कुल ट्रैफिक को मत वो करो इग्नोर, क्योंकि ये मिलना ही मिलना है और हम तो आपका साथ दे ही रहे हैं, आप सब हमारा साथ दीजिए। इन्जॉय कीजिए अपने गानों को, फ़ोन को रख दीजिए साइड में, बस अपने म्यूज़िक को इन्जॉय कीजिए और ये गाना आप सबके लिए जो भी इस समय ड्राइव कर रहे हैं। RM3 Radio.

अभी 5 बजने में बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपनी घड़ी बार बार देख रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि कब ये कट टाइम जाए और हम घर पहुंच जाएं। और कई जने होंगे जो ऑलरेडी गाड़ी में बैठे होंगे और बस कह रहे होंगे किसी अपने के पास फटाफट से पहुंच जाए। तो हम तो आपको यही कहेंगे बिल्कुल आराम से पहुंचिए, जिसको इंतज़ार करना है वो आपका आखिरी घड़ी तक इंतज़ार करता है और जिसको नहीं करना होता नहीं करता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं टाइम से पहुंचने की पर पहुंच नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि ट्रैफिक इतना सारा होता है, काम होते हैं और इंतज़ार में भी किसी की जो मज़ा है ना वो बहुत बढ़िया होता है। तो हम तो आपको इतना ही कहेंगे, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और कोई आपका घर में इंतज़ार कर रहा है तो करने दीजिए, और अगर आपको भी इंतज़ार हो रहा है और दोनों तरफ से सेम इंतज़ार है तो अब हम कहेंगे वो घड़ी जल्दी जल्दी ख़त्म हो, आप अपने उस प्यार से मिल पाएँ, चाहे वो बच्चे हों, माँ बाप हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, उनके लिए तो बस इतना ही कहना है कि उनका चेहरा देख के जो प्यार आता है, जो एहसास होता है कि हाँ भाई इनको देखने के बाद ही मैं कंप्लीट होती हूँ या होता हूँ, तो हम तो कहेंगे आपकी जोड़ी सलामत रहे, हमेशा आपका परिवार खुश रहे। इंजॉय कीजिए गाने को, और ये गाना बहुत ही खूबसूरत गाना है। अगर आपको भी मज़ा आ रहा होगा तो ड्राइव करते हुए मैसेज मत कीजिएगा, फिर बाद में जब टाइम मिले ज़रूर मैसेज कीजिएगा 5250600 पर और बताइएगा कैसा लगा था ये वाला गाना। इंजॉय कीजिए इस गाने को। RM3 Radio.

दोस्तों देखते देखते 5 बजने ही वाले हैं, बस कुछ 2-3 मिनट ही रह गए हैं, पर हम आपको कहेंगे अगर आपका भी दिल किसी से मिल गया है इस समय और किसी की याद आ गई है तो याद में रहिए, इंजॉय कीजिए 90s के गाने। और मेरे बाद आपको साथ मिलने जा रहा है संजीव जी का आज की शाम से। मैं लेती हूँ इजाज़त, मैं थी आपके साथ पूनम, और आपको बस इतना ही कहूँगी, खुश रहिए, सलामत रहिए, अपना ख्याल रखिए, और फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में दिल से मिले दिल। और अपना और अपने परिवार का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। RM3 Radio.

0: ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। जय सियाराम, जय जय हनुमान। श्रोताओं, सबों को भाई संजय की ओर से रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हार्दिक अभिवादन है हमारे हफ्तावार सत्संग रामरस धारा में। आज स्टूडियो में उपस्थित हैं चार बहनें जिनका हम हृदय से अभिवादन करते हैं, माला जी, शिवानी जी, सुनीता जी और सोनी जी। जय सियाराम,
1: जय सियाराम।
0: आज के इस सत्संग की का श्री गणेश करते हैं, श्री राम स्तुति, श्री हनुमान स्तुति और सुमेरनी के साथ। जय सियाराम,
1: जय सियाराम।

राम रसधारा रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। श्रोताओं, पिछले गुरुवार को हमने शुरू किया था प्रसंग श्री हनुमान और विभीषण मिलाप का। तुलसीकृत रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान जी सागर लांघने के बाद, अनेकों चुनौतियों को पार करने के बाद, लंका की जमीन पर माता सीता की खोज में लग जाते हैं। गली गली मंदिर मंदिर खोजते हुए हनुमान जी रावण के महल में भी पहुंचते हैं। वहां रावण महाराज सोते हुए दिखे, परंतु मां सीता नहीं दिखी। फिर हनुमान जी को विभीषण जी का मंदिर दिखाई दिया। दीवारों पर राम जी के शस्त्रों के चिन्ह दिखाई दिए और आंगन में तुलसी माता के नवीन पौधे। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी जाकर विभीषण से मिलते हैं और एक दूजे का परिचय करते हैं। अंग्रेजी में कहावत आती है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर, और राक्षसों की लंका में हनुमान जी उस एक सज्जन को ढूंढ ही लेते हैं जो उन्हें सीता मैया का पता बताने वाले थे। जय सियाराम, जय जय हनुमान।

0: पवन तनय संकट हरना मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। श्री राम जी, प्राता लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी का नाम लेते हुए हम उस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं जहाँ पर हम पहुँचे थे गत गुरुवार को, जहाँ पर हनुमान जी विभीषण जी से मिल चुके थे और दोनों के बीच परिचय हो चुका था। श्रीहरि के दो भक्त मिले थे। आगे की कथा हम बहनों के साथ सुनते हैं। जय सियाराम।
1: जय सियाराम।

0: जय श्री राम, जय जय हनुमान।
1: तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा सुनाकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। जब श्री हरि के दो ऐसे भक्त मिलते हैं तो मन का मग्न और पुलकित होना निश्चित था। जय सियाराम,
0: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: विभीषण जी हनुमान जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, मैं यहां वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? एक हनुमान जी जो श्री राम जी से मिल चुके थे और सीता माँ की खोज में निकले थे, और सामने में विभीषण जो माता सीता को देख ली थी और अब श्री राम जी का दर्शन करना बाकी था। भक्ति भी आज कुछ ऐसी स्थिति में है, जैसे दांतों के बीच में जीभा रहती हैं, वैसे ही आज के भक्त पर हर प्रकार का प्रहार होता है। सोशल मीडिया, सुख सुविधा, ऐशो आराम, जो व्यक्ति को प्रभु से दूर ले जाते हैं। लेकिन सच्चा भक्त वही जो इन सबों के बीच में रहने के बावजूद भी उस अपनी भक्ति को डगमगाता नहीं देखना चाहते हैं। जय सियाराम,
0: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: अपनी व्यथा अपनी स्थिति को आगे बढ़ाते हुए विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। विभीषण जी पुलत्स्य ऋषि के वंशज थे, परंतु किसी कारण वे राक्षस प्रवृत्ति के कारण ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे। उनके जीवन में श्री राम जी का आना निश्चित था, लेकिन साक्षात राम जी से पहले श्री राम जी की कृपा हनुमान जी के रूप में उनसे मिलने आई। जय सियाराम।
0: जय सियाराम।

0: जय सियाराम,
1: जय सियाराम। अपनी व्यथा को आगे बढ़ाते हुए विभीषण जी कहते हैं, जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। श्री रघुवीर जी की कृपा उनके कंपैशन ही से किसी के जीवन में कोई संत आता है। हनुमान जी कहते हैं, करें ही सदा सेवक पर प्रीति। ये प्रभु जी का नेचर है कि वे अपने भक्त अपने सेवक पर अपना प्यार अपना स्नेह सदैव निछावर करते हैं। जय सियाराम,
0: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: विभीषण जी की व्यथा सुनने के बाद हनुमान जी अपनी ओर से अपनी कथा सुना रहे हैं और विभीषण जी से कहते हैं, बड़ा कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं, चंचल वानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। इस चौपाई में हनुमान जी अपनी स्थिति सुनाते हैं। मैं तो सिर्फ एक बंदर हूं, लेकिन प्रभु की कृपा इतनी असीम है मुझ पर कि उन्होंने हमें भी स्वीकार किया है। पूरे सनातन धर्म के इतिहास में हनुमान जी वो एक मात्र उदाहरण है जहां एक भक्त अपने प्रभु की कृपा से भगवान बन जाते हैं। जय सियाराम।
0: जय सियाराम।

जय जय सियाराम, जय जय हनुमान। जय सियाराम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, अधम अर्थात अनवर्दी, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में आंसू आ गए। यहां पर समाप्त होता है ये प्रसंग, जिसे हम अगली बार आगे बढ़ाएंगे। जय सियाराम।

0: रसधारा
1: रेडियो मनोरंजन के लेनों पर राम रसधारा प्रोग्राम है संजय और चार बहनों के संग प्रसंग विभीषण हनुमान जी और विभीषण का हम जारी रखते हैं। आज अगली चौपाई हम आपको सुनाते हैं जिसका भवार्थ हम आपको अगले प्रोग्राम में सुनाएंगे। जय सियाराम
2: जय सियाराम।

0: रामरसधारा।
1: सो देवी और सज्जनों, आज का रामरसधारा सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। चलते चलते कल अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तजनों के साथ। थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर सेगमेंट किरण जानकी जी की प्रस्तुति में। धन्यवाद जो मैं उपस्थित चार बहनों को समाप्ति मंत्र और शांति पाठ बहनों की वाणी में। अगली गुरुवार को फिर से मिलते हैं रामरस धारा सत्संग में। संजय भाई की ओर से जय सिया राम।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
1: नमस्ते। हमारी धरोहर में तोहर स्वागत बा। 14 सितंबर एगो ऐसन तारीख है जहाँ पर हर बरिस दक्षिण अफ्रीकी लोग अपन हेरिटेज डे मनावे लंसा, मतलब कि धरोहर के राष्ट्रीय दिवस। ये एगो आम छुट्टी के दिन है और दक्षिण अफ्रीकी लोग खातिर ये एगो बहुत खास समय है अपन संस्कृति मनावे के और ओके प्रोत्साहित करे के। साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीकी लोग के अपन इलाकाई परंपरा और समृद्धि मनावे के भी दिन है। दक्षिण अफ्रीकी देश और दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका देश अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे निचला भाग में पावल जाला। इ देश के विभिन्न इकोसिस्टम भी इमें शामिल बा। इमें बा समुंदर तट, खाई, जंगल और समुंदर। साउथ अफ्रीका के मशहूर जगह के गिनती में वेस्टर्न केप, केप ऑफ गुड होप, केप टाउन और टेबल माउंटेन आवेला। ये सब बहुत मशहूर हेरिटेज साइट है हुआ के, और हुआ पर अनगिनत किस्म के जंगली जानवर भी बा जे लोग खुला प्रकृति में चले लंसा। और इमें शे

0: शेर, हाथी, रिनोसेरोस, हाइना, चीता और लंगूर भी शामिल बा। दक्षिण अफ्रीका के दिलचस्प जानकारी कुछ इस प्रकार से बा। इ देश में 11 गो औपचारिक भाषा बोलल जाला। दक्षिण अफ्रीका के जनता के सामान्य उम्र, उ लोग के जो एवरेज एज है, वो 27 बरिस है और यही दुनिया के सबसे जवान जनता में से एगो है। इ देश के 3 गो मुख्य केंद्रीय शहर के गिनती में केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएम फाउंटेन आवेला और हर एक शहर सरकार के एगो शाखा है। केप टाउन इंसान के दिल के ट्रांसप्लांट करे होला पहला जगह जो 1967 में स्थापित हो रहा और यही देश में दुनिया के सबसे बड़ा हीरा डायमंड भी बा जो 3000 कागा से जस्ती और जेकर वजन 1.3 पाउंड है। दक्षिण अफ्रीका वो अकेला देश है जे अपन परमाणु हथियार प्रोग्राम के त्याग देले बा। लेकिन दुख के बाद बाकी दक्षिण अफ्रीका में HIV के जो दर बा वो दुनिया में सबसे ऊंचा है और इस देश में एक ही गो काम के पगार में सबसे बड़ा असमानता है। मतलब कि एक ही गो काम खातिर अलग अलग इंसान के अलग अलग पगार मिलेला। दक्षिण अफ्रीका में विरासत दिवस कैसे मनावल जाला? इस दिन हुआ कि जनता सैनिक परेड, सामाजिक जुटाव और इस देश के इतिहास पर विशेष प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन करेलन सा जेकर से इस देश के दिलचस्प इतिहास पर अच्छा जानकारी सक पावे। दक्षिण अफ्रीका जोन काला और गोरा के बीच फर्क के अपोथेट के रूप देले रहल, एकर इतिहास में मशहूर अफ्रीकी लोग के विशेष योगदान बा और ई विशेष ई बड़ा हस्ती लोग में हवंजा नेल्सन मंडेला, क्रिस्टिया ओबियानो, डेसमोंड टुटू और गैरी प्लेयर और महात्मा गांधी भी हुए के दौरा करके वापस भारत लौटे बखत मॉरिशस आरलन और मॉरिशस के नक्शा बदले में उनकर ई दौरा बहुत विशेष रहल। गोरा यूरोपीय, काला अफ्रीकी और भारतीय लोग के आबादी होला ई देश के दौरा करला पर भी ई दिन दुनिया भर के गोरा यूरोपीय लोग, काला अफ्रीकी लोग और भारतीय लोग के मिलल जुलल आबादी होला ई देश के दौरा करे पर भी ई दिन दुनिया भर के प्रोत्साहित करेला। मतलब कि ई जोन हेरिटेज डे है एगो मौका है दक्षिण अफ्रीका के ई दुनिया भर के जनता लोग के आमंत्रित करे के ओकर दौरा करे खातिर। और असल में 24 सितंबर के शाका डे नाम देवल कर रहल काहे कि यही दिन जुलू जेकर राजा के नाम शाका रहल उ गुजर गइलन। त 24 सितंबर 1828 के शाका साउथ अफ्रीका के एगो मिला जुला राष्ट्र बनावे में बड़ा भूमिका निभैलन। त ई वजह से ई देश के ई राष्ट्रीय दिवस के शाका डे नाम से भी जानल जाला। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

ग्रामीण समाचार बुलेटिन आपका स्वागत। सुर्खियां इस प्रकार है। भाषा के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने संविधान में संशोधन की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि राज्यसभा में भाषाओं पर विचार कर रही सिलेक्ट कमेटी के सामने पुश्तैनी भाषाओं के समर्थकों सहित सभी नागरिकों को अपनी राय रखने का अवसर मिलना चाहिए। दशकों पुराने कूटनीतिक संबंध और सहयोग के नए रास्ते, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवेंद्र राम गुलाम ने आज दोपहर बाद मॉरिशस में फ्रांस के नए राजदूत अलेक्सिस सिसलॉये से मुलाकात की। दोनों देशों के करीबी संबंधों पर चर्चा हुई और खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर। कई भाषाएं बोलने वाले बच्चों को फ्रेंच सिखाने के नए तरीकों पर लैंस्टिची फ्रांसे डे मोरिस की दो दिनों की कार्यशाला आयोजित। प्रतिभागियों ने प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए पढ़ाने के तरीकों पर काम किया। विदेश समाचारों में भारत के ग्रेटर नोएडा में चलती बस में आग लगने से 9 लोगों की मौत। दिल्ली से मुहब जा रही बस में करीब 45 यात्री सवार, पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन पहुंचने पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत किया। दोनों देशों की 3 दिनों की शिखर वार्ता शुरू होने से पहले अमेरिका ने व्यापार को लेकर बनी अस्थायी सहमति 10 जनवरी तक बढ़ाने की घोषणा की।

नमस्कार और अब समाचार विस्तार से। बरसात का मौसम करीब है, बाढ़ का खतरा कम करने के लिए नालों और नदियों की सफाई कहां तक पहुंची है, इसी पर लैंड रिवर्स अथॉरिटी ने आज पोटलिस नगर पालिका में बैठक लगाई। बैठक में जरूरी मरम्मत के कामों के साथ साथ नालों की सफाई के लिए दी गई राशि के इस्तेमाल पर भी बात हुई। भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, इसके लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश

0: यह बात आयोग ने राष्ट्रीय सभा में भाषाओं के इस्तेमाल पर जारी अपने पोजीशन पेपर में कही। यह दस्तावेज उस शिकायत के बाद तैयार की गई है जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्रियोल मॉरिशियन पर विचार कर रही सिलेक्ट कमेटी के सामने क्या पुश्तैनी भाषाओं की बात भी रखी जा सकेगी। आयोग के अनुसार इन भाषाओं के पक्ष में बोलने वालों समेत सभी नागरिकों को अपनी राय रखने का अवसर मिलना चाहिए। राष्ट्रसभा में भोजपुरी को भी जगह मिले, ये मांग आज दोपहर बाद हिंदू कमांड प्लेटफॉर्म ने एक प्रेस सम्मेलन में उठाई। संगठन ने सरकार से भोजपुरी को सदन की भाषाओं में शामिल कराने को कहा है। ये मांग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से भाषाई अधिकारों पर पोजीशन पेपर जारी होने के बाद सामने आई है। दशकों पुराने कूटनीतिक संबंध और सहयोग के नए रास्ते, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज दोपहर बाद मॉरिशस में फ्रांस के नए राष्ट्रदूत अलेक्सिस लुआई से मुलाकात की। अपनी पहली मुलाकात में दोनों महानुभावों ने दोनों देशों के करीबी संबंधों पर चर्चा की, खास पर शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं देखी गई। क्रिसन सिचा की रिपोर्ट पर विवरण गीता सुनारान।
1: मॉरिशस में फ्रांस के राजदूत का पद संभालने के दो सप्ताह से ही कम समय के बाद अलेक्सी लुआई ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। इस दौरान अर्थव्यवस्था, संस्कृति और खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: Nos deux pays partagent une relation que je qualifierais de singulière tant elle est riche dans plein de domaines, hein, que ce soit le domaine économique, on a parlé un peu du domaine de l'éducation aussi, où j'ai eu l'occasion de participer au lancement d'un programme d'implantation de filières d'excellence bilingue dans 24 établissements scolaires, en fait, à Maurice et à Rodrigue, en présence du ministre de l'Éducation. Donc c'est un sujet très très fort aussi, en domaine culturel. C'était l'occasion... Pour le Premier ministre et moi d'aborder les différentes facettes de cette relation extrêmement riche et qui va continuer à s'enrichir.
1: मॉरिशस और फ्रांस की बहुपक्षवाद के प्रति साझा प्रतिबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान कानून के आधार पर किए जाने का मुद्दा भी इस मुलाकात में चर्चा के केंद्र में रहा।
0: इससे पहले इसकी चर्चा कर रहे थे, राष्ट्रसभा में भोजपुरी को भी जगह मिले, ये मांग आज दोपहर बाद हिंदू कॉमन प्लेटफॉर्म ने एक प्रेस सम्मेलन में उठाई। संगठन ने सरकार से भोजपुरी को सदन की भाषाओं में शामिल करने को कहा है। ये मांग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से भाषाई अधिकारों पर पोजीशन पेपर जारी होने के बाद सामने आई है। रिपोर्ट यचना मिश्रा।
3: हिंदू कॉमन प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय सभा की कार्यवाही में भोजपुरी भाषा को शामिल करने की मांग की। संगठन के सदस्यों का कहना है कि भोजपुरी मॉरिशस की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
4: Nous sommes un pays multiracial, mauricien. La langue principale c'est créole qui nous compte. Mais après créole, c'est Bhojpuri. Dans la campagne surtout, beaucoup de monde cause Bhojpuri. Beaucoup de communautés cause Bhojpuri. Si nous acceptons Bhojpuri là, alors nous avons un vieux de monde capable de comprendre ce qui peut passer dans le Parlement. Nous pouvons laisser l'autorité travailler de toute l'indépendance qui nous a pu faire pression et nous pouvons faire une demande.
3: संगठन ने सरकार से अपील की कि इस मांग पर विचार किया जाए और राष्ट्रीय सभा में भोजपुरी भाषा के इस्तेमाल के लिए उचित व्यवस्थाएं की जाएं।
0: एक ही कक्षा में कई भाषाएं बोलने वाले बच्चों को फ्रेंच कैसे सिखाएं, इसी पर लेस्टिचे फ्रांसे दे मोरिस की ओर से दो दिनों की शिक्षा कार्यशाला आयोजित की गई। प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए और प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं के लिए पढ़ाने के लिए नए तरीकों पर काम किया। इंडियन ऑयल के साथ नई ईंधन आपूर्ति समझौते के बाद पहली खेप मॉरिशस पहुंच गई है। इसे लेकर जहाज थॉमस प्लैंडिड बुधवार को पोर्टलिस बंदरगाह पहुंचा। व्यापार मंत्री भी खेप के आगमन पर वहां मौजूद थे। पेश है ये रिपोर्ट।
1: 10 दिनों की यात्रा के बाद एमएस टॉम स्प्लेंडिड मॉरिशस पहुंचा। इसके नमूने पहले ही जांच के लिए ले लिए गए हैं। गुणवत्ता की पुष्टि होते ही इस खेप को उतारा जाएगा और बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इंडियन ऑयल के साथ हुआ ये समझौता मॉरिशस के लिए ईंधन की आपूर्ति को सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम है। व्यापार मंत्री माइकल सिकियन कहते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में मॉरिशस के लिए

0: दो अच्छे मुद्दे हैं। पहला, जैसे ही युद्ध समाप्त होता है हम फिर से समझौता बातचीत शुरू कर सकते हैं, 30 दिनों की नोटिस देनी है। और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट के 10 महीने बाद हम कह सकते हैं कि दाम ठीक नहीं है, फिर से बातचीत करनी चाहिए।
1: Nous capables aussi de dire voilà, le prix pas correct, nous pensons bien revenir à la table négociation.
0: अगर ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है तो फिलिंग स्टेशन पर इसकी कीमत का सवाल अब भी बना हुआ है। मौजूदा बाजार में बिक रही पिछली खेप के आधार पर किए गए हिसाब से पेट्रोल की कीमत पहले ही 80 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा और डीजल की कीमत करीब 75 रुपए तक पहुंचने का अनुमान था। वहीं 22 सितंबर को दर्ज अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों के आधार पर ये लागत और बढ़ सकती है।
1: प्राइस
0: स्टेबिलाईजेशन अकाउंट की प्रक्रिया 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को रोकती है और 10% से कम की गिरावट को रोकती है। एक समय 60% तक ही रुके थे, क्योंकि जब 36% से बढ़ा था और हम 10% बढ़ा रहे थे तब हम 26% के फासले का सामना कर रहे थे। जमा करने वाले सभी टैक्स वित्त मंत्रालय मॉरिशस की जनता को वापस करता है। पेट्रोल और डीजल का प्रति लीटर 7.20 रुपए जमा होता है और हम सब्सिडी देते हैं। अगर ये 7.20 रुपए हटा देते हैं तब राशन का चावल 56 रुपए से बढ़कर कम से कम 150 रुपए हो जाएगा।
1: Et diesel qui collecté par litre, 7.20 rupees par litre, et nous donne subside. Vous connaissez nous tiens ça 7.20 rupees là qui arrivait? Diri ration pour sortir 56 rupees pour vin au moins 150 rupees.
0: इंडियन ऑयल के साथ हुआ ये समझौता 5 साल की अवधि के लिए ईंधन की आपूर्ति को कवर करता है। वहीं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए जरूरी हैवी फ्यूल ऑयल की आपूर्ति के लिए सहारा एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड ही मौजूदा सप्लायर हैं। सुर्खियों हम इसका उल्लेख कर रहे थे, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो इसके लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने की है। ये बात आयोग ने राष्ट्रीय सभा में भाषाओं के इस्तेमाल पर जारी अपने पोजीशन पेपर में कही है। ये दस्तावेज उस शिकायत के बाद तैयार की गई है जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्रेओल मॉरिशियन पर विचार कर रही सिलेक्ट कमेटी के सामने क्या पुश्तैनी भाषाओं की बात भी रखी जा सकेगी। आयोग के अनुसार इन भाषाओं के पक्ष में बोलने वालों समेत सभी नागरिकों को अपनी राय रखने का अवसर मिलना चाहिए। मीकान पुनापा नायकन, गीता सुनारान।
2: नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की राष्ट्रीय सभा में भाषाओं के इस्तेमाल से जुड़ी रिपोर्ट पिछले अगस्त के अंत में मॉरिशस भोजपुरी इंस्टीट्यूट की सरिता बुधू द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद तैयार की गई। उनका कहना था कि मॉरिशस की पूर्वजों से चली आ रही भाषाओं को राष्ट्रीय सभा में ख्योल मोगुसियों को शामिल करने के लिए बनाए गए सिलेक्ट कमेटी के दायरे से बाहर रखा गया है। उनके अनुसार ये संविधान की धारा 16 का उल्लंघन हो सकता है। अपने पोजीशन पेपर में आयोग ने सबसे पहले कहा कि धारा 16 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। हालांकि आयोग ने सिफारिश की है कि सिलेक्ट कमेटी के अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय की जानी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही ख्योल मोगुसियों से जुड़े काम में देरी नहीं होनी चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष सजीत बुलेल कहते हैं,
3: besoin d'un maximum de mauriciens citoyens du monde qui promouvoir que soit ma langue ancestrale ou autre devine qu'un sens déposé parce que c'est celle corridor de représentation qui est là à part ça pas pour une seconde. Donc pour nous l'emphase c'est interprète le terms of reference de façon bien élargie. Parce que pour beaucoup d'immunes, je peux penser que, comment dire, il y a un risque de marginaliser la langue ancestrale, un contre l'autre. Ça a l'impression là pour dissiper quand nous considérons cette représentation. C'est moi nous peut dire aussi que de fois des pas langage viennent des outils communaux, pas rentre dans sa la trappe là. Langage c'est nos héritages nationaux.
0: औपचारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए आयोग ने बताया कि 89% आबादी ख्योल मोगुसियां बोलती हैं, 8.6% लोग भोजपुरी का इस्तेमाल करते हैं, 5.6% फ्रेंच बोलते हैं, जबकि केवल 1.3% लोग अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, जो संसद की
2: आधिकारिक भाषा है। इसी आधार पर आयोग ने संविधान की धारा 16 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है ताकि भाषा के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोका

0: jan seke.
1: Nou pi invite nou ban desideur politik, l'Etat, vin avèk an amandman du seksyon 16, ke se swa mentenan ou ke se swa apre an eksersis de la Constitution Review Commission, men la seksyon 16 bezwen revizite pou ki le term langaj fè pati den deman prohibisyon kont tout form de diskriminasyon.
0: इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सरकार से ये भी जांच करने को कहा है कि संसद में अंग्रेजी के इस्तेमाल और फ्रेंच के इस्तेमाल की अनुमति संविधान की धारा 1 के अनुरूप है या नहीं।
2: मौसम की चेतावनी मिले तो लोगों को ये भी पता हो कि खतरा कहाँ है और क्या करना है। इसी दिशा में मॉरिशस मौसम विभाग ने 2027 से 2031 तक की अपनी योजना पेश की है। इसमें मौसम के संभावित असर को समझाकर चेतावनी देना और संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां स्पष्ट करना शामिल है। मकसद है खतरे के समय सभी मिलकर जल्दी कदम उठाएं। शेजा जुमन की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
3: भारी वर्षा, अचानक बाढ़, सूखा और समुद्र में जलस्तर का बढ़ना, इन खतरों के चलते मौसम विज्ञान केंद्र अब से केवल निगरानी और पूर्वानुमान तक सीमित नहीं रह सकता है। वाक्वा के मौसम विज्ञान केंद्र से देश के लिए तैयारी और चेतावनी में एक भूमिका निभाने की मांग की जा रही है। बुधवार को सिविल सोसाइटी के ऑपरेटरों को पेश किए गए 2027-2031 की स्ट्रेटेजिक प्लान के सुझावों में से ये एक है। दस्तावेजों में ऑब्जर्वेशंस में सुधार लाने के वास्ते डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्वानुमान और खासकर जानकारियों के प्रसारण की एक नई प्रणाली को लेकर
4: Dans sa prochaine 5 ans là, nous pertenons qu'il pour transformer météo, nos systèmes alertes pour changer, nos façons nous donne nos ban services climatiques pour changer. Par exemple, vous gagnez alerte le téléphone, les pas pour Zistex, peut-être les pour Pictorial, nous appelons ça un impact matrix. Alors ça impact matrix, ça les pour finir dire si qui intensité ce système là, si peut-être pollue peut gagner gros la pluie, vous trouvez pollue les pour en rouge, vous finissez qu'on est OK et dans un grand sens qui pollue pour gagner la pluie. Donc tout ça là, nous pour améliorer, nous peut penser que d'ici 2 ans
3: इसके अलावा इस योजना को अमल में लाए जाने के अंतर्गत विशेषज्ञों के बीच आदान प्रदान को मजबूत करने के लिए साझेदारी के विकास की बात भी शामिल और साथ में फाइनेंसिंग की सुविधा प्राप्त कराने की बात भी।
5: De connaître le temps et le climat, mais de connaître vraiment les impacts pour les différents secteurs. Et donc, il faut travailler ensemble pour connaître qu'est-ce que les services météo doivent les fournir.
3: लेकिन एक चेतावनी काफी नहीं, खतरों का पता लगाना और साथ में जनता को तैयार भी करना है, संस्थाओं के साथ मिलकर कदम उठाना है ताकि हर एक को पता चले कि समय पर किस तरह के जरूरी कदम उठाने हैं।
6: Augmenter cette notion de early warning et aussi augmenter cette notion de community-based early warning, ce sera très important parce que la communauté aussi doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire quand il y a une catastrophe.
7: Avec cette stratégie plan-là, nous pourrons rapprocher les stakeholders et là, en ce faisant, nous pouvons connaître quelles précautions besoin prendre.
3: इसके अतिरिक्त स्ट्रेटेजिक प्लान में उपकरणों का आधुनिकीकरण और मानव संसाधनों में निवेश भी सम्मिलित।
2: सरकारी नौकरी के समय निजी काम नहीं, सरकारी कर्मचारियों की निजी पेशेवर गतिविधियों पर अगस्त में जारी सूचना को लेकर सिविल सर्विस मंत्रालय ने ये स्पष्टीकरण दिया है। मंत्रालय के अनुसार कर्मचारियों के कोड ऑफ कंडक्ट में पहले से ही ये नियम मौजूद है। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कर्मचारियों को अपने काम और ड्यूटी के समय का पालन करने की याद दिलाई गई। सीनियर परमानेंट सेक्रेटरी देवेंद्र गोपाल और सिविल सर्विस मंत्री राज पेंचा को सुनती हैं।
8: Si un fonctionnaire a envie de faire un été private work, suivre procédure. Pas genre de procédures. The bizangaya proposed at accounting officer. It must not be within working hours. Il n'est pas besoin de conflit de travail. Qui fait une retire sa reminder là? Parce qu'il y a une lettre depuis un boss person qui nous attire l'attention pour éviter un abus.
9: Tous les temps, il est comme ça. Au contraire, on connaît quand ça finit de diluer, il est plus pire que ça avant. Avant, il est comme ça, une fois

0: ou un officier du gouvernement ou à plein temps. Ça veut dire que je peux dire qu'il n'y a pas rien. Mais éventuellement, finalement, une requête de la part de l'Union et quelques représentants du service public donnent sa permission-là. La LAN prend consultation avec PIABI et PSC. Problème-là, pas nous qui nous créons. Complète-là, pas nous qui nous créons depuis une mauvaise personne ou bien depuis devant notre institution. Il faut déjà en venir contre nous. Il faut dire quelques personnes qui souffraient de ça. Il n'a pas une mauvaise personne. Une mauvaise personne, il me disait, trouve-lui de l'obligation de dire nous qui pouvons faire.
1: मन में श्रद्धा और चार धाम के दर्शन की अभिलाषा लिए मॉरिशस के 50 श्रद्धालु कल भारत के लिए रवाना हुए। वे चार धाम यात्रा में भाग लेंगे। इस यात्रा का आयोजन मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने कला और संस्कृति मंत्रालय एयरपोर्ट्स ऑफ मॉरिशस कपड़े लिमिटेड और प्रधानमंत्री दफ्तर के सहयोग से किया। याचना मिश्रा और पूजा सुकालू की ये रिपोर्ट पेश है। चार धाम यात्रा जिसे चार पवित्र धाम की यात्रा के रूप में जाना जाता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ से मिलकर बनी है। इसे हिंदुओं की सबसे पवित्र आध्यात्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है। मॉरिशस के इन निवासियों के लिए ये तीर्थ यात्रा विशेष महत्व रखती है।
2: ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हम महादेव सीधे से संपर्क रख सकते हैं और महादेव का आशीर्वाद ले सकते हैं।
3: Plusieurs places intéressantes, spirituelles. Once in a lifetime, nous est important que nous allons faire un religious trip.
4: Monsieur Ricky, ça peut être une réussite pour nous. Il y a tout le monde là-bas, il est un petit peu frais, un petit peu le Kedarnath, ce beauté, c'est la nature, c'est là, ça qui m'a nourri à découvrir.
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की पहल पर आयोजित ये इस वर्ष की तीसरी टोली है।
5: Nous gagnons beaucoup aide, nous commençons par Air Mauritius. Nous gagnons tarif vraiment spécial. Et aussi ministère la santé, tout ça ban bhai behen qui pial yatra, zo gain un vaccin cadeau. L'équipe qui pial les aujourd'hui je peux gagner facilité hélicoptère pour le Kedarnath. Et ça nous dit un grand merci, l'honorabilité Samfol, qui finit de l'un grand coup de main, et aussi, sans oublier, l'ambassade l'aide.
1: Ye tirth yatri agle 8 octobre ko swadesh lautenge. और विदेश की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं, उनमें भारत के ग्रेटर नोएडा में चलती बस में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से महोबा जा रही बस में करीब 35 यात्री सवार थे। कुछ यात्रियों का कहना है कि आग लगने से पहले उन्होंने चालक को जलने की गंध के बारे में बताया था। पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। आशा गोविंद तमन।
6: भारत के उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस पर बुधवार देर रात एक चलती बस में आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में एक महिला और 8 पुरुष शामिल हैं। बस दिल्ली से महोबा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। आग बस के अगले हिस्से से शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में फैल गई। धुएं के बीच यात्रियों ने बाहर निकलने की कोशिश की। बचाव दल ने आग पर काबू पाया और कई यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों का इलाज चल रहा है। एक यात्री की शिकायत के अनुसार आग लगने से पहले बस में जलने की गंध आई थी। यात्रियों ने चालक और कंडक्टर को इसकी जानकारी दी, लेकिन बस तुरंत नहीं रोकी गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। आग लगने की सही वजह की जांच जारी है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है।
1: वेबसाइट ने जानकारी देने से रोका, लेकिन एआई एजेंट ने दूसरा रास्ता खोजा। ऑस्ट्रेलिया सरकार के अनुसार ओपन एआई का ये एजेंट स्वास्थ्य आंकड़ों वाली सरकारी वेबसाइट की कुछ गैर सार्वजनिक फाइलों तक बिना अनुमति पहुंच गया। प्रधानमंत्री एंटोनियो अल्बनीज ने इसे अस्वीकार्य बताया। सरकार का कहना है कि अब तक किसी व्यक्ति की निजी स्वास्थ्य जानकारी तक पहुंचने का प्रमाण नहीं मिला है। घटना की जाँच जारी है। अमेरिका और चीन के बीच तीन दिनों की शिखर वार्ता शुरू हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वाशिंगटन के पास हवाई अड्डे पर खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत किया। लालकालीन और सैन्य सम्मान के साथ हुए इस स्वागत के बाद दोनों नेताओं की बातचीत में व्यापार, टेक्निक

और ताइवान जैसे मुद्दे प्रमुख रहने की उम्मीद है। इसी बीच अमेरिका ने घोषणा की है कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर बनी अस्थायी सहमति 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।

0: मौसम संबंधी जानकारियां इस रिपोर्ट में।
1: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। आज रात और कल सुबह मौसम सुहाना रहेगा। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 और साहिली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 24 से 26 और साहिली इलाकों पर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल दोपहर बाद मौसम सुहाना रहेगा। उत्तर पश्चिम और ऊंचे इलाकों पर बादल घिर आएंगे। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह समुद्र की स्थिति में सुधार आने लगेगा। आज रात के लिए दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 5:57 पर सूरज निकलेगा।

गीता सुनारान की मौसम संबंधी रिपोर्ट के साथ ही ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद हम कहेंगे अपने तकनीकी सहयोगियों लुडोविक और ठावनी को। कुछ ही समय में शोक समाचार। Avenue des Colombes met une camp de masque mais Avenue des Colombes met une camp de masque mais 62 साल के 62 years old की श्रीमती गायत्री जोन की पैदाशी नाम द्वाका जो गायत्री नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के 1 बजे उनके पति श्री दानन जोन की के घर Avenue des Colombes में जिन कांदे मास्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कांदे मास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन at 1 p.m. बासे रोड कैटरबोर्न में 44 साल के 44 years old के श्री अश्विन नक्चेदी जो अश्विन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के 1 बजे उनके घर बासे रोड कैटरबोर्न से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 1 p.m. Le Grand Branch Road, Grand Bois में 63 साल के 63 years old की श्री आनंद कुमार गजाधर जो राजेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती ललिता गजाधर के घर Le Grand Branch Road Grand Bois से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजवेल के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1 p.m. Denon Class Road, Goodlands में 87 साल के 87 years old की श्रीमती दिनमतिया सितुहल पैदाशी नाम बिहारी जो चांदो नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के दो बजे उनके घर Denon Road Goodlands से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआगोज गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2 p.m. महात्मा गांधी रोड पुत्र दो आमलेट में विलेज हॉल के पीछे 71 वर्ष की 71 years old की श्रीमती प्रतिमा रामास्वामी पैदाशी नाम गंडौरी जो अपाप्रत नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के दो बजे उनके बेटे श्री शैलेन रामास्वामी के घर महात्मा गांधी रोड पुथुदो आमलेट में विलेज हॉल के पीछे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2 p.m. आपाजुलेन बासे कैट्रोबोर्ड में 87 साल के 87 years old की श्रीमती तुलसमा बप्पामा पैदाशी नाम बसवाना जो उमा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल शाम 4:30 बजे

बजे कल शाम 4:30 बजे उनके घर आपादुलेन बासैका ट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 4:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिला लीजिए इस वक्त शाम के लगभग 6:30 बजे हैं।

इसी टाइम पर आप लोगों ने कहा कि चलिए उनको भी सुनने का मौका देते हैं। नमस्कार आदाब, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं दिलों की आवाज कार्यक्रम में। कैसी हैं जी, सब ठीक है ना? हम तो यहाँ पर फिट एंड फाइन है। थर्सडे की रात है और यहाँ पर रात की जो शुरुआत है इसका आगाज जो है यहाँ पर हम लोगों को महसूस हो रहा है। और ऐसे टाइम पर बहुत सारे लोग काम से निकलकर घर की ओर जा रहे हैं और फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, और थोड़ा सा हम आराम होकर के ऐसे ऐसे गीत आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं जहाँ पर आपको महसूस होगा एक सुकून। जी हाँ बिल्कुल, हम आपको कहना चाहेंगे कि 6:30 बजे से लेकर के रात के 7 बजे तक नई सोच कार्यक्रम की पेशकश की जाएगी, फिर उसके बाद 7 से 9 बजे तक दिलों की आवाज़ कार्यक्रम। और ऐसे टाइम पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, 402-80-76 पर 402-80-70 पर, या फिर एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं 5250-6200। रात बाकी है और बात भी बाकी है, और ऐसे टाइम पर कुछ पाने के लिए भी हमारे यहाँ अभी जो इच्छा है, जो डिज़ायर है अभी बाकी है।

इस वक्त रात की 6:38 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। रात बाकी है और बात भी बाकी है, और इसी टाइम पर नई सोच कार्यक्रम की पेशकश की जा रही है रात के 7 तक का। हमारा एक ही विचार है जो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसको बहुत ही गौर से इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। अच्छी तरह से सुनना दोस्तों, कभी कभी हम लोग गलत डिसीजन लेते हैं अपनी ज़िंदगी में और ख़ुद को कोसना शुरू करते हैं, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते, कभी कभी एक महीने भी। लेकिन क्या जब हम लोग सही डिसीजन लेते हैं, हम अपने आप को थैंक यू कहते हैं? बस कहते हैं ओ मैं तो बच गया यार, बस हो गया। हाँ वो तो हो गया, लेकिन क्या आपने खुद को थैंक यू कहा? कहना चाहिए मेरे दोस्त, अपने आप को थैंक यू इसलिए कहना चाहिए क्योंकि आपने उस डिसीजन को लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार किया, आपने अच्छी तरह से कैलकुलेट किया, आपने बहुत सारे लोगों की बातों को ध्यान में रख करके ये डिसीजन लिया, तब जा करके आपने ये ठोस कदम उठाया। इसका मतलब ये है एक थैंक यू तो बनता है। पता है जब हम लोग गलत डिसीजन लेते हैं, हम अपने आप को एक मिनट के लिए नहीं कोसते हैं, लेकिन एक महीने तक अपने आप को कोसते हैं। लेकिन जब सही डिसीजन लेते हैं तो खुद के लिए खुद को कुछ नहीं कहते हैं, करना चाहिए। इसी से क्या होता है, खुद पर हमारा जो भरोसा है ना वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और दूसरे जो मेजर डिसीजन है उसको लेने के लिए भी हम और ज़्यादा एंकरेज हो जाएंगे। इसके बारे में सोचिए और आप मुझे बताइए कि आप अपने हौसले को किस तरह से बुलंद करने की कोशिश कर रही हैं। We are talking about the movie of Dora, Shafkat Amanat Ali और Salim Merchant की आवाजों में। This is अभी for you, नई सोच कार्यक्रम रेडियो मनोरंजन की लहरों पर।

जी हाँ दोस्तों, आज हम लोगों ने बात की है कि सर से आप डिसीजन लेते वक्त अपने आप को कोसते हैं या फिर आप अपने आप को थैंक यू कहते हैं। ये कोसना ज़्यादा हो जाता है, थैंक यू कम होते हैं। कभी कभी आप नहीं सोचते हैं कि हाँ थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जब हम एक गलत डिसीजन लेते हैं या फिर जब हम लोगों ने गलती की है, तो हम रोज़ के रोज़ अपने आप को कोसते तो है ही, लेकिन अ काइंड ऑफ रिग्रेट भी होते हैं। यहाँ तक कि खुद को गाली भी देना शुरू करते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि रोज़ ये जो एक्सरसाइज है, ये करने से आप अपने अंदर की जो आत्मविश्वास है, आप उसको तोड़ रही हैं, आप तोड़ते जा रही हैं, और ये करते करते आपका जो विश्वास है वो चकनाचूर हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रही है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इंसान तब डिप्रेशन में जाता है जब उनको लगता है कि गलत डिसीजन लेने से उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नहीं मेरे दोस्त, आपने एक गलत डिसीजन लिया है, इट्स ओके, जिंदगी है भाई, आप तो जिंदा है ना। अगर आप आज अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई है। हाँ, आप हारे हुए हैं, लेकिन दोस्तों आप अभी तक जिंदा हैं। आप अभी तक आपके शरीर में आपकी जो सांस है वो चलती जा रही है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना कि हाँ मैं जिंदा हूं, और अगर मैं जिंदा हूं मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। अगर आज मैं फेल हो गया हूं, इट्स ओके, मैं फिर से रिपीट करूंगा, दोबारा करूंगा, और मैं देखूंगा कि किस तरह से जो दोबारा करने के बाद कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन से फॉर्मूला मैं अपनाऊंगा, तब उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। हाँ कोई बात नहीं, 50 मार्क्स मिले हैं, इट्स ओके, अगली बार मैं 60 मार्क्स को लाने के लिए मैं कोशिश करूंगा, मैं कमाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन कुछ तो करूंगा ना, क्योंकि मैं अभी तक जिंदा हूं। RM3 मैं अभी तक जिंदा हूं, और इसीलिए यहां पर एक सूफियाना अंदाज का एक गाना हम सुनते हैं, तेरी जुस्तजू, रूप कुमार राठौर की आवाज में। ये जो गाना है, सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हम एक अलग दुनिया में चले गए हैं। कभी कभी ना खुद को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इस वक्त ड्राइव कर रही हैं और आप अकेले हैं, एक हल्की सी मुस्कान के साथ ये जो गीत है, आप उसको एंजॉय करते जाइए, अभी आपका साथ देगा यहाँ पर रात के 9 बजे तक। लेकिन दो गीतों के बाद हम बढ़ेंगे दिलों की आवाज़ कार्यक्रम, वेटिंग फॉर यू ऑन 5252506200। फोन कर सकते हैं 1 4 2 4 20 70 पर।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त रात के ठीक 7 बजे हैं।

रिश्तों का जो मांझा है उलझे हुए उसको सुलझाने के लिए हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। रात के 7:04। नमस्कार और आदाब, दिलों की आवाज कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अब भी यहाँ पर आपका साथ देगा रात के 9 बजे तक। अच्छा, सीन ये है कि आप लोगों को हमें फ़ोन करना है उन 4 2 4 2 5 पर। एग्जैक्टली कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहाँ पर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मिल गए हैं, बहुत सारे लिस्ट भी बन करके तैयार हो गई हैं। एक से बढ़कर एक जो गीत है मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं हम डेफिनेटली। और चलिए, आप हमें मैसेजेस भी भेज सकते हैं ऑन 5250620। आप जहां पर भी हैं, किचन में हैं, ड्राइव कर रहे हैं, या फिर काम की से निकल कर घर की ओर जा रहे हैं, या फिर काम की ओर पहुंच रहे हैं, या फिर अभी पहुंच गए हैं, सो हम आपको कहना चाहेंगे स्टे कनेक्टेड, वी रेडियो मनोरंजन।

जी हाँ दोस्तों, इस वक्त रात के 7:42 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी मिले हैं और इस वक्त हमारे साथ कौन है? अच्छा, सिलेक्शन है अभी और अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ पसंद है मुझे, क्या बात है। अच्छा, प्रकाशवती हमारे साथ जुड़ी हुई है बेल्जियम से बाय लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv। देखती रहती हूँ आपको हुनरबाज कार्यक्रम में यूट्यूब पर, वेरी नाइस प्रोग्राम, अच्छा क्या बात है, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, हमारे शो को सुनते हैं। हालांकि आप लोग बहुत ही वतन से बहुत ही दूर है, लेकिन हम वतन बन करके आप मॉरिशन की जो जज्बात है आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, वैलिडेट करते हैं, इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच। पता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं, और जब वे लोग मॉरिशस आते हैं ना तो हमसे मिलने की पूरी कोशिश करते हैं। अ काइंड ऑफ रेंडेवू अपॉइंट

मिनट में लोग फिक्स करते हैं रेडियो के एडमिन के साथ और कहते हैं पता है मैं रत्ना से मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ, मैं अभी से मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तब एडमिन वाले हमको कहते हैं अच्छा एक व्यक्ति आए हैं या फिर एक महिला आई है आपसे मिलना चाहते हैं चाय के साथ कैंटीन में, तो डोंट फॉरगेट टू मीट दैट पर्सन। तब पता चलता है कि ये लोग बहुत ही दूर रहते हैं हमारे देश से, लेकिन जब हमारी आवाज़ उन तक पहुंचती है तब जाकर के उन लोगों को मॉरिशस का एहसास होता है। And of course, we shall bring you down to the memory lane of the golden era. हम बात कर रही हैं दिलीप मंदिर फिल्म के बारे में, जहां पर लता जी की आवाज़ को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो रात है थम सी गई है। You're listening to दिलों की आवाज़ रेडियो मनोरंजन की लहरों पर अभी के साथ।

के साथ और ये गाना स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे दीपक जो मोचिदा के रहने वाले हैं। आपने एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है आपकी वाइफ मोशिनी के लिए। वी ऑल्सो हैव दागन श्वेता रवीश प्रीशा लविशा अपादू फैमिली फ्रॉम खुशनुआ। आपने कहा इट्स जस्ट एन ए वन सिलेक्शन, दिस इज नॉट मी भाई, ये जनता जनार्दन की जय हो।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर में ला लीजिए, इस वक्त रात के ठीक 8 बजे हैं।

जी हाँ दोस्तों, आपका जो चेहरा है वो घूंघट में उलझ गया है, इसीलिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। वेलकम बैक फॉर योर सेकंड आवर ऑफ दिलों की आवाज़ कार्यक्रम अभी के साथ। रात के 8:06 हो गए हैं। मेरी यही तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, थोड़ा सा ठंड रख। मुझे पता है कि फ्राइडे की सुबह की इंतज़ार में लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग अभी तक किचन में इधर उधर कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे की रात।

चलिए इस वक्त हमारे साथ विक्रांत हैं एबेन से। अभी अभी उन्होंने ये ड्यूटी को ज्वाइन किया है। उन्होंने कहा ये जो गाना है सभी दोस्तों के नाम जो इस वक्त नाइट शिफ्ट पे काम कर रहे हैं। पता है नाइट शिफ्ट पे काम करना बहुत ही टफ होता है। तो दोस्तों बोकुआज और ये गाना आप लोगों के नाम।

थोड़ा सा डांस करने का मूड भी हम लोगों ने अपना लिया है। इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच ऐसे सुंदर सुंदर गाने की फरमाइश करने के बाद। हेलो अभी आदाब, नाइस टू लिसन टू यू अभी, थैंक यू सो मच। दिस इज कौन, ये कौन है? रेहाना, मोहतरमा रेहाना फ्रॉम फिनिक्स। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है, उसको हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे दो गीतों के बाद। लेकिन अभी के लिए ये गाना मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इस गाने की फरमाइश की है विनय गोविंद ने, जो इस वक्त कनाडा से हमें याद कर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम क्वेबेक। उन्होंने कहा कि ये गाना उनकी पत्नी गौरी के नाम, यतीश सानवी उनके दो बच्चों के नाम, और उनके जितने सारे फैमिली मेंबर्स हैं, खासकर उनके जो भाई हैं जो मॉरिशस में रहते हैं, उनका नाम है रोशन, उनकी बहनों के नाम और उनके छोटे छोटे प्यारे भांजों और भांजियों के नाम।

जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। वी डू हैव बिरबल, और बिरबल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम दिल्ली। उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब रेडियो मनोरंजन की जो लिंक है उसके साथ कनेक्ट हो गए हैं, और उनके सभी दोस्त उनके साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और वहाँ पर वे लोग हमारे शो को एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पर तो

तब 10 बजने को चल रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर जल्दी वो लोग यू नो हमारा जो 1.5 घंटे का जो एडवांस वहाँ पर एडवांस होता है उन लोगों का टाइम। तो चलिए ये गाना स्पेशली हम आपके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, आपके सभी दोस्तों के नाम जो इस वक्त दिल्ली से हमें याद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो 402-80-70 पर 402-80-70 पर कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहाँ पर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। यू मे ऑल्सो सेंड अस मैसेजेस हैपनिंग ऑन 5250 5062 00

अगर आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं सो ये गाने एक हल्की सी मुस्कान के साथ आप एंजॉय कीजिए और अपने जो अकेलेपन है उसको महसूस कीजिए। आंखें भी नम पड़ सकती हैं लेकिन उसके बारे में भी याद कीजिए, क्योंकि उसके बारे में उसके बिना आप जी नहीं सकते। क्या बात है, इट्स ओके, फाइनली जिंदगी आ गई, अभी बाकी है मेरे दोस्त।

दोस्तों इस एफ में जो साइन ऑफ ना, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करने के बाद, आप लोगों की फरमाइश को पूरा करने के बाद, आप लोगों के बारे में आपका जो दिन कैसा था उसके बारे में जानने के बाद, इसके लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट थर्सडे डेफिनेटली आएंगे और आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करेंगे और एंटरटेनमेंट भी करेंगे, नाम ही तो मनोरंजन है जी। सो दोस्तों इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ, टेक केयर एंड वी विल बी मीटिंग वेरी सून। अगर इस जिंदगी में चाहत ना होती तो कुछ भी नहीं होता। तो चलिए ये गाना खासकर आप लोगों के नाम, तब तक अभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आदाब, बाय बाय।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only
0: NBC
3: station.
0: TV programs की झलकी।
4: हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई तो जंग लड़ता है, मगर जब लड़ाई अपनी पहचान की हो, या तो वो सब कुछ हार जाता है, या अपना नाम।
0: गुरुवार 24 सितंबर को NBC One पर हिंदी फीचर फिल्म रसलान, रात के 8:20 पर 2024 की मूवी रसलान फिल्माई गई है आयुष शर्मा पर।

0: भोजपुरी की धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज की रात है 24 सितंबर 2026 बीफे के रात 9:04 होल बा और हम किरण आप सबको के स्वागत करत है। आप सबको के नमस्ते और अभी से रात के 11 बजे तक आपके अपन मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का चला

में भोजपुरी गीत भोजपुरी संगीत के तहलका मचे के शुरू हो रहा और आज ये जो रुझान बा जो जोश बा भोजपुरी गीत संगीत के वो और भी बढ़ ले जाता ऐसा ही गाना के दम से।

0: रात के 9:11 होलबा और आप सुनत हवा अपन मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का और जो अगला गीत चली ये गीत के फरमाइश करले हवन बेलिया से आत्माराम जी आत्माराम जी ये जो अगला गीत के मांग करले हवन वह सुना नोयान की आवाज़ में बाजा बाजे और आप ये गीत अपन चार गो बहिन के नाम करत हवा चार गो बहिन के नाम जानी ला सा सुदेवी प्रभावती छोटी और इगो के नाम अभी हमके याद नहीं आवा था लेकिन ये चारों नाम हमने अक्सर हम सुनाते रहिला था उ चारवा नाम हमके याद चला छोटी छोटी सुदेवी प्रभावती और ललिता त बेलिया से आत्माराम जी के फरमाइश पर ये गीत आप सब कोई के नाम भी जे लोग सुना नुयान के जबरदस्त फैन हो वजह
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

रात के 9:23 हो गल बा और अभी से 11 बजे तक हमने के साथ रही साथ सब कोई के एगो समय तक रहेला जन दुनिया बा यहाँ पर हमेशा खातिर कोई के साथ नहीं रहेला ऐसे ही दिखत है जा आज हमने के जन फिल्म इंडस्ट्री के एगो जानल मानल कलाकार मुश्ताक खान हवन उनकर देहांत हो गल बा उनकर इंतकाल कर गल हवन और लगभग 56 बरिस के रलन तो यही है दुनिया आना जाना लगल रहेला हमेशा खातिर कोई नहीं रहे होला बा ये खातिर जीवन के चाहे उतना सीरियसली उतना कठोर भी नहीं ले जाए के कि कहे कि कुछ भी हमेशा खातिर नहीं बा जोन भी अभी तोर सामने बा वो अगला बखत नहीं रही और ऐसन में जोन अच्छा पल बा वो भी थोड़े बखत खातिर रहेला जोन बुरा पल बा वो भी थोड़े ही बखत खातिर रहेला और जोन सुख दुख बा आना जाना बा वो लगल रहेला और

ऐसन में हमने के ये जो कलाकार अभी गुजरल हवन एक नाम हमने आज खुद हम आज देखा था इनका नाम, लेकिन शक्ल से ये बहुत मशहूर हवन और सोशल मीडिया पर ये जो मृत्यु बा ये जो इंतकाल बा उकर चर्चा हुई लगल बा तो आप सब चेक कर ले हुए और चाहे कोनो दुनिया रही, चाहे असली दुनिया रही, चाहे हमने के साहित्य के फिल्म जगत के संगीत जगत के जितना कोई भी बा सब कोई के जीवन आखिर में बुझे होला बा। तो अगला जो गीत चली वो ये दुनिया से थोड़ा हट के थोड़ा शिव के दुनिया में जाप जा, शिव के महिमा लीलो माथुर की आवाज़ में ये गीत सुने के चाह रखा था वन शीला जी। और ये गीत आप अपन सब लड़का लोग के नाम साथ में अपन पति सुरेन के नाम करत हवा, अपन बेटी लोग के नाम शशि किरण सब पोता लोग के नाम सोनम आपके बहू और उधर आपके पोता यौवन कबीर श्लोक रुद्राक्ष और हांसले इन सब के नाम करत हवा। और जितना कोई भी शिव की महिमा ये गीत खुशी रे हिला जा सुनने के और लीलो माथुर के आप लोग फैन हो जा, ता आप सब कोई के नाम ई अगला गीत

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: भोजपुरी तड़का किरण संगे एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना.
4: सिमरन ने तुम्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि जहां मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती.
5: जिस तरह राज के लिए फील करती हो वैसे मैंने कभी भी समीर के लिए फील नहीं किया.
6: तुम्हें आशा से शादी करनी होगी और हर हालत में करनी होगी.
5: जिसे मैं प्यार करती हूँ आज वो किसी और का होने जा रहा है.
7: कोई मेरे दिल में है.
3: 26 सितंबर शनिवार को NBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म कोई मेरे दिल में है. 2005 की मूवी प्रियांशु चैटर्जी और दिया मिर्जा पर फिल्माई गई कोई मेरे दिल में है.

क्रिश रिदोय के आवाज में मोर जानिको को ये खास तौर पर नील कुमार के नाम जे अभी हमनी के सुनत हवन और बहुत प्यार से हमनी के साथ भी देवत हवन तो नील आपके नाम और आपके पूरा टीम के नाम जेकर संगे अभी सफर करत हवा और साथ में ये गीत खास तौर पर बंतिया के जानवी के नाम लुडोविक के ओर से।

इजन अगला गीत के फरमाई शालबा ये गीत मंगले हवन हमने के नोवेल फ्रांस से राधा और राधा अपन भतीजी अंशी और उनकर भतीजी की बेटी याना फिर अपन बहन शिल्पा आतिश पूरा परिवार और सब दोस्त लोग के नाम अगला गीत करत हवन कहे कि आपके नाम राधा बा तो आप गीत भी राधा पर ही मांगत हवा तो चला राधा के सोभेला पूर्णिमा फोकिरा के आवाज़ में सब राधा लोग के नाम

आज तारीख है 24 सितंबर, और 24 सितंबर के जितना कोई अपन जन्मदिन मनावत हवा जा, आप सब कोई के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। और सामदी के 26 तारीख के आत्माराम जी के जन्मदिन बा, और उनकर बहिन ललिता, उधर उनकर बहिन सुदेवी जीवाक्वा से हवन, इनकर नाम अगला गीत मांगत हवा जा। और अगला गीत जन्मदिन गीत है बसंत सुपोल के आवाज़ में। तो जितना कोई के जन्मदिन अभी मनावल गल, आज मनावत है वजह इस सप्ताहांत के मनाई बजा, आप सब कोई के जन्मदिन के बहुत बहुत मंगल कामना। आपके जीवन में खुशी हमेशा बनल रही, हमेशा आप प्रगति की ओर बढ़बा, और आपके परिवार के साथ परिवार के प्यार, अपनों के साथ अपनों के प्यार हमेशा बनल रही। तो यही शुभकामना के साथ चला आप सब कोई के नाम ई अगला गीत।

जन्मदिन बा आप सबको एक के हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। और 10 बजे में अभी 10 मिनट कमती बा, मतलब कि एक घंटा से जस्ती समय बा हमनी के संगे आज के ई प्रोग्राम में। और आपके फरमाइश अले जाता और आपके गीत भी हम चुनने जाता है। अगला गीत चमेली चमेली सुनीता ननकू के आवाज़ में ई गीत सुने चाहत हवन फ्लिका फ्लाक से अनीता जी। अनीता जी हमेशा की तरह अपन बहन शोभा अनुराधा और लक्ष्मी के लिए और जितना कोई अभी रेडियो सुना था वजह आप सब कोई के नाम ये गीत करा था वन। उधर पीतों से अमृता गणेश अपन बेटी अपन बेटा पतो और नातिन लोग के नाम सोनिया परी मीनाक्षी विशान और पूनम के नाम ये गीत करा था वन। और फिर सेजिया मिल फॉरेस्ट साइड से शांता जी हवन शांता सुकारी जी जे हमेशा गीत सुनते रहलन और बोलत हवन कि उनकर घर में गर्ल सेमेन के एगो जन्मदिन रहल। त एक बार फिर शांता जी आपके लड़का लोग के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। और जितना कोई अभी हमने के सुनत हवा जा और चमेली चमेली के फैन हवा जा तो चला ये गीत आप सब

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: भोजपुरी तड़का किरण संगे MBC टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
4: अच्छा हुआ मिली वरना मेरा गेम खराब हो जाता।
5: Excuse me? आपको मेरा नाम किसने बताया?
4: आपका नाम मुझे क्या मालूम आपका नाम क्या है?
5: अभी अभी तो आपने कहा अच्छा हुआ मिली।
4: ओह, वो मैं अपने बॉल के लिए कर रहा था, अच्छा हुआ मिली। आप भी मिली है क्या?
5: जाइए यहाँ से। एक तो मेरी पेंटिंग खराब कर दी ऊपर से।
4: पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग?
6: कहता है बाबुल।
0: रविवार 27 सितंबर को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म बाबुल 2006 की मूवी सलमान खान और अमिताभ बच्चन पर फिल्माई गई बाबुल।

रात के 10 बजकर बा हमने के ई सफर के आधा जो साथ बा वो कट गल बा और 10 बजे के बाद अब एक घंटा में आप जितना कोई के फरमाइश आल बा वो सब चलावे के हमार पूरा कोशिश रही। अगला जो गीत चली ये गीत खास तौर पर शामोनी के विजय बेनी प्रसाद जी के नाम और आप ये गीत अपन बेटी अपन दोनों बेटी अपन धर्मपत्नी और अपन दोस्त गणेश जगनारायण के नाम करत हवा जे शामुनी से ही हवन और मोहताबा के अपन खास दोस्त शास्त्री बनोमाली के नाम और विजय जी बोलत हवन कि अब गरम करे के शुरू कर दिले बा लेते चल आलबा और जब गर्मी के मौसम चढ़े ला तो एक मतलब है बनाने चलाल। सच में गर्मी शुरू हो गल बा ई बखत भी जहाँ कहूँ कहूँ तो ठंडा करता लेकिन ढेर जगह अब गर्म करे के भी शुरू कर देले बा और यही गीत चली त्यागूज के शांति जी के ओर से। शांति जी ये गीत नाम करत हवन अपन भाई बलराम के जे पुलिस के काम करत हवन और ई बखत आप पुलिस स्टेशन में हवा साथ में आपके भगीना ओम के नाम जे अपन दागोचिया से हवन और दागोचिया के अपन सब मराठी परिवार के नाम और जितना कोई भी अभी हमने के सुनत हवा जा आप सब कोई के नाम ई अगला गीत

0: और चलते चलते जो न अगला गीत चली वो है छोर के मोरिसवा। और ये गीत सुनने के फरमाइश कर ले हवन भाई अब्बू अपन पूरा परिवार के नाम, और ई में बा अबू अफेज असलम अयाज जयर और रईस कलाचोटी।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

रात के 10:13 हो गल बा और अभी 24 सितंबर 2026 थोड़े घड़ी में और एक घंटा दो घंटा में समाप्त हो जाए, दो घंटा से कमती समय में। और अभी हम थोड़ा घड़ी आगे थोड़ा बोलत रही कि एगो ऐसन कलाकार के निधन हो गल जे हमने के बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एगो बहुत बड़ा कॉमेडियन रहन। उनकर नाम है मुश्ताक खान और हम ये भी बोलत रही कि नाम से इनकर परिचय कमती बा बल्कि चेहरा से इनकर जोन अदा बा अदाकारी ओकर से सब कोई इनकरा चिन्हेलन सा। और अभी हमके ख्याल आल कि हम थोड़ा कैसे समझाओ अब ये कौन स्टार है। आप देखले हो बा एगो फिल्म रहल हम है राही प्यार के, ये फिल्म में रहल आमिर खान और जूही चावला और तीन गो लड़का लोग। और आमिर खान के एगो सेक्रेटरी एगो असिस्टेंट रहल जे बार बार ये लड़का लोग के देखलवत रह घर में, लेकिन आमिर खान कबो भी ओकर पर भरोसा नहीं करे और वो बार बार जापान के नाम लेवत रहल कहे कि ओकर ट्रेनिंग हुआ पर होल बा। तो यही है वो कलाकार जिनकर इंतकाल हो गल बा और इनकर नाम रहल मुश्ताक खान। इनकर जन्म होल रहल 1969 में, 1969 में मतलब कि 56 बरिस के ई रलन सेकंड सीजन के। और कैंसर से इनकर मृत्यु हो गल। तो जैसे देखा था वह कैंसर एगो समय रहल जब खाली फिल्म में दिखत रही

बुझात रहल कि बहुत एगो दूर होला बीमारी है जौन कबो कबो कोई कोई के हो जाला, लेकिन अब देखा बात बात पर ये सब बीमारी सुनाता। इ खातिर बहुत ज़रूरी है कि आप अपन ख्याल रखबा और खाना पीना पर ध्यान देबा, साथ में अपन जो मिजाज बा ओकर पर भी ध्यान दा। और अगला गीत खास तौर पर बुआशेरी के धनी जी के ओर से, और धनी जी बोलत हवन कि उनकर हियाँ भी बुआशेरी में भी आज दिन के गर्म कर लेबा, मतलब कि सच में अब गर्मी के मौसम चलाल। और सबसे बड़ा पहचान गर्मी के ई है कि सांझ के बखत देखबा तो कीड़ा मकोड़ा निकले लगेला, और उ सब कीड़ा मकोड़ा के निकले के समय चलाल बा। और अगला गीत के आप आनंद उठावा शारदा सिन्हा के आवाज़ में, धनी जी के मनपसंद गीत।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only
0: NBC TV, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
4: एक सवाल हमेशा मेरे मन में टिक टिक टिक टिक करता है कि लोग मछली की तरह तैर कैसे लेते हैं। काश मैं भी तैर पाती।
5: तो अब तुम्हें तैरना भी नहीं आता? तुम्हें तैरना नहीं आता? अच्छा ठीक है, मैं जाके बिल देके आता हूँ, तब तक तुम तैरना सीख लो। मुझे हर बार धोखा नहीं दे सकते।
6: क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम।
0: 27 सितंबर रविवार को NBC 4 पर

रात के 10:30 होलबा और अगला जन गीत चली वह आशीष रामफल के आवाज में नया अंदाज में एगो सुंदर गीत सुहाना सफर जो उनकी रात के ई जुन बखत बा जुन वेला बा एकर से बहुत मेल खाला और एकर बात सुनब जा सत्यम गणपत जी के फिर कुणाल हीरालाल जी के और किशोर खिमिया के किशोर खिमिया कुणाल हीरालाल और रंभाराम तोहल और कितने भोजपुरी कलाकार लोग एगो कॉन्सर्ट करत हवन जा आवत 26 सितंबर के और ये बोलत हवन जा कि पहला भोजपुरी कॉन्सर्ट रही त आप सब कोई के आप पूरा टीम के बहुत बहुत शुभकामना और फिर बिस्वानी दीपवा के आवाज़ में सुनब जा लीलो सरिया और मीरा दीनू के आवाज़ में देसवा विदेशवा और ई गीत के संगे हमने के ई प्रोग्राम समाप्त हो जाए और फिर ई प्रोग्राम के बाद ई प्रोग्राम में भोजपुरी तड़का में हमने के मुलाकात फिर से हुई आवत लेंदी के और फिर बीफे के हमेशा की तरह और नहीं तो कल फजर के फिर मिलब जा भोजपुरी तड़का तो अभी चला था फजर के चली हमारी धरोहर और जैसे जैसे आपकी नींद आए वैसे वैसे आप अपन ये जो रेडियो सुने के सिलसिला बा वो भी भुला जाए बा सकेला अब अपन वॉल्यूम कम भी करके शुरू कर दे हुई बा लेकिन हम तोहरा याद दिला देवत है कि हमने के ई भोजपुरी तर का प्रोग्राम के बाद भी सुंदर सुंदर गीत चलते रही बॉलीवुड गीत जेकर से आपके मनोरंजन हुई और जे अभी आप काम करत हुई बा तो आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना ताकि आप अच्छा से सकबा अपन काम करें और अगला गीत जिसे थोड़ा बोली सुहाना सफ़र ई रात्रि के वेला से बहुत मेल खाला बहुत अच्छा से बैठेला एक साथ सुनी जा आशीष के

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ समस्त श्रोताओं को नीतू शाह का करजोर प्रणाम। इस समय आप रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं श्रोताओं। तो आइए एक बार फिर आपको ले चलते हैं इंडियन सिनेमा बॉलीवुड की दुनिया में। और आज एक ऐसी कलाकारा के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनको आपने बहुत ही प्यार किया 70s और 80s के दशक में। वो रही जयाप्रदा। जी हाँ, जयाप्रदा एक ऐसा नाम जो हिंदी सिनेमा के साथ साथ तेलुगु और भारतीय सिनेमा की दुनिया में भी अपनी खास पहचान रखता है। उनकी खूबसूरती, उनकी ग्रेसफुल पर्सनालिटी, उनकी क्लासिकल डांस की पकड़ और उनकी एक्टिंग ने उन्हें अपने दौर की सबसे यादगार अभिनेत्रियों में शामिल किया। लेकिन जयाप्रदा की कहानी सिर्फ एक फिल्म एक्ट्रेस की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कलाकारा की कहानी है जिसने सिनेमा के शिखर से लेकर टेलीविजन और फिर पब्लिक लाइफ तक अपना सफर तय किया।

जयप्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को राजा मुंद्री आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनका असली नाम ललिता रानी राव। बचपन से ही उनका रुझान कला और सांस्कृतिक एक्टिविटीज की तरफ रहा। उनकी मां ने उन्हें छोटी उम्र से ही डांस और म्यूजिक की ट्रेनिंग दिलाई। क्लासिकल डांस की इसी तालीम ने आगे चलकर उनके फिल्मी करियर में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके डांस में एक अलग नजाकत, ग्रेस और एक्सप्रेशंस नजर आते थे। कहते हैं कि एक स्कूल फंक्शन में जयप्रदा की डांस परफॉर्मेंस ने फिल्म दुनिया से जुड़े लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्हें तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में एक छोटा सा डांस अपीयरेंस मिला। ये छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे एक बहुत बड़े फिल्म सफर में बदल गई।

1970s के दौर में जया प्रदा ने तेलुगु सिनेमा में अपनी जगह बनाना शुरू किया। कई फिल्मों में उनकी एक्टिंग और डांस टैलेंट नजर आने लगे। खास तौर पर सिरी सिरी मूवा में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही पसंद किया गया। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जिसके एक्सप्रेशंस और डांस के जरिए इमोशंस सामने आते हैं। उनके परफॉर्मेंस ने उनकी वर्सेटिलिटी को साबित किया।

जयप्रदा की एक खास बात ये थी श्रोताओं कि उन्होंने सिर्फ एक लैंग्वेज के सिनेमा तक अपने आप को सीमित नहीं रखा। उन्होंने तेलुगु के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली और मराठी सिनेमा में भी काम किया। ये बहुभाषी सफर उनकी कला के प्रति डेडिकेशन और नए एनवायरनमेंट्स में खुद को ढलने की क्षमता को दिखाता है। हिंदी सिनेमा में जयप्रदा ने 1980s के दौर में कई यादगार फिल्में दी, कामचोर, तोहफा, शराबी, मकसद, संजोक, आखिरी रास्ता, सिंहासनम, मुद्दत, सिंदूर, आज का अर्जुन जैसे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अलग अलग तरह के रोल्स निभाए। कभी वो रोमांटिक हीरोइन के रूप में नजर आई, कभी इमोशनल कैरेक्टर में और कभी एक मजबूत महिला के किरदार में। तोहफा जैसे कमर्शियल सिनेमा में उनकी लाइवली स्क्रीन प्रेजेंस दिखी, जबकि शराबी में उन्होंने इमोशनल शेड्स को भी खूबसूरती से प्रेजेंट किया। आखिरी रास्ता और आज का अर्जुन जैसे फिल्मों में भी उनकी प्रेजेंस ने कहानी को एक अलग डायमेंशन दिया। उनका करियर इस बात का एग्जाम्पल है कि एक एक्ट्रेस कमर्शियल और सीरियस दोनों तरह के सिनेमा में अपनी जगह बना सकती है।

श्रोताओं, जयप्रदा की एक्टिंग स्टाइल में सबसे खास बात थी उनकी ग्रेस। उनके एक्सप्रेशंस बहुत कंट्रोल्ड और नेचुरल होते थे। उनकी आंखों में इमोशंस को एक्सप्रेस करने की खास क्षमता थी। और जब बात डांस की आती थी तो उनकी क्लासिकल ट्रेनिंग उनके परफॉर्मेंसेस को और भी खूबसूरत बना देती थी। वैसे उनकी

पर्सनालिटी में एक ट्रेडिशनल एलिगेंस थी। सारी हो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम या ग्लैमरस फिल्म अटायर, जया प्रदा हर अंदाज में ग्रेसफुल नजर आती थी। उनका फैशन बहुत ज्यादा लाउड नहीं था, उनकी खूबसूरती और पर्सनालिटी ही उनका सबसे बड़ा स्टाइल स्टेटमेंट थी।

इसके बारे में मशहूर फिल्म मेकर सत्यजीत रे की एक प्रसिद्ध तारीफ भी अक्सर कोट की जाती है, जिसमें उन्होंने जया प्रदा को इंडियन स्क्रीन के सबसे खूबसूरत चेहरों में से एक कहा था। लेकिन जया प्रदा की पहचान सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं थी, उनके करियर में अवार्ड्स और रिकॉग्निशन भी आए। उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड्स साफ में सीरी सीरी मूवा और अंटुलेनी कथा के लिए स्पेशल अवार्ड मिला और सगरा संगमम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगु का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। बाद में 2007 में उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ का लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया।

सिनेमा में सिर्फ एक्टिंग नहीं की बल्कि समय के साथ टेलीविजन पर भी अपनी प्रेजेंस बनाई। उन्होंने टीवी प्रोग्राम्स में होस्टिंग और एक्टिंग की और परफेक्ट पति जैसे शो का हिस्सा बनी। बाद में वर्षों में वो इंडियन आइडल, द कपिल शर्मा शो और ससुराल सिमर का जैसे टीवी प्रोग्राम्स में भी नजर आई। उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने सिनेमा की दुनिया से पब्लिक लाइफ और पॉलिटिक्स की तरफ कदम बढ़ाया। 1994 में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के साथ अपना पॉलिटिकल जर्नी शुरू किया। 1996 में वो राज्यसभा की मेंबर बनी। बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश के रामपुर से लोकसभा इलेक्शन लड़ा और 2004 से 2014 तक लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही। ये ट्रांजिशन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग रहा। एक तरफ वो सिल्वर स्क्रीन की ग्लैमरस दुनिया से जुड़ी रही तो दूसरी तरफ पब्लिक लाइफ में उन्होंने एक बिल्कुल अलग जिम्मेदारी संभाली। सिनेमा में कैमरा के सामने परफॉर्मेंस और पब्लिक लाइफ में लोगों के बीच काम करना दोनों अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं और जयाप्रदा ने दोनों फील्ड्स में अपनी पहचान बनाई।

जया प्रदा का फिल्मी सफर हमें एक और बात सिखाता है, टैलेंट के साथ अडेप्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी होती है। तेलुगु सिनेमा से शुरुआत करने वाली एक यंग डांसर ने हिंदी सिनेमा में अपना नाम बनाया, कई रीजनल लैंग्वेजेस में काम किया, टीवी पर आई और फिर पब्लिक लाइफ में भी एक्टिव रही। तो बस श्रोताओं, आज का ये खूबसूरत सफर यहीं पर समाप्त हो चला। अपनी दुशा को आज्ञा दीजिए। प्रणाम, शुभ रात्रि।